मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56:20 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमारी मातृभूमि भारत पवित्र धरा है, जहां विविधता में एकता की अनोखी मिसाल मिलती है। इसकी मिट्टी में वीरों का बलिदान, संतों की वाणी और संस्कृति की खुशबू बसती है। आइए हम इसकी रक्षा, सम्मान और उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहें। स्वच्छता, सद्भाव और कर्तव्य निभाते हुए देश को गौरवशाली बनाएं। यही सच्ची सेवा और हमारा धर्म है।

कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत मीराबाई के जीवन और भगवान कृष्ण के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम और समर्पण को प्रकट करता है। इस गीत में बताया गया है कि किस तरह मीराबाई सारी दुनिया के शुद्ध बुद्ध खोकर श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई थी। भजन में भक्ति की शक्ति का महत्व भी बताया गया है और मीरा की प्रेम लगन भी।

0: देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे आप तीनों लोकों को तारने वाली हैं। शुद्ध तरंगों से युक्त महादेव शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हैं। हे माँ मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे।
1: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के

0: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार जीत का असली कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की स्थिति है। यदि मन हार मान ले तो जीतते जीतते भी पराजय हो जाती है, और यदि मन दृढ़ विश्वासपूर्ण और सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थितियों में भी जीत संभव है। मनुष्य की हार या जीत उसके मन की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि मन में भय, निराशा और असफलता का भाव आ जाए तो व्यक्ति पहले ही हार जाता है। इसके विपरीत यदि मन में आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मन ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और मन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब मन कमजोर पड़ता है तो बाहरी साधन और क्षमता होते हुए भी व्यक्ति असफल हो जाता है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता संभव हो जाती है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए शरीर से अधिक मन को विजयी बनाना आवश्यक है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य ही सच्ची जीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम अक्सर कठिन परिस्थितियों, असफलताओं या चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली हार तो बाहर की परिस्थिति में नहीं हमारे अपने मन में होती है। जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं तभी हम हारते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम कठिनाइयों के बावजूद अपने मन को मजबूत रखें, अगर हम खुद पर भरोसा बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमारी जीत को रोक नहीं सकती। जिस प्रकार एक लड़का दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था लेकिन वह बार बार सोचता रहा कि वो जीत नहीं पाएगा, डर के कारण वो ठीक से दौड़ भी नहीं पाया और हार गया। परंतु अगले साल उसने मन में ठान लिया कि वो पूरी मेहनत करेगा। इस बार उसने आत्मविश्वास और मन की सकारात्मकता के साथ दौड़ लगाई और प्रतियोगिता जीत ली। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, चाहे वो खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या कोई सामान्य व्यक्ति। उनकी सफलता की शुरुआत उनके मन के अडिग विश्वास से हुई। सोचिए उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। क्या उन्होंने कभी आसान रास्ता चुना? नहीं, उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह थी उनका अडिग मन, उनका विश्वास और लगातार मेहनत करने का जज्बा। असफलता केवल तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। मनुष्य के जीवन में हार और जीत का निर्णय बाह्य परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अंतःकरण में स्थित मन से होता है। मन जब भय, संशय और निराशा से भर जाता है तब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाता और बिना संघर्ष किए ही पराजय स्वीकार कर लेता है। ऐसी अवस्था में साधन, योग्यता और अवसर होते हुए भी सफलता हाथ से निकल जाती है। इसके विपरीत जब मन उत्साह, आत्मविश्वास और अधिक संकल्प से आलोकित होता है तब विषम से विषम परिस्थितियां भी साध्य बन जाती हैं। दृढ़ मनोबल के सहारे मनुष्य असफलताओं की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है और निरंतर प्रयत्न से विजय प्राप्त करता है। मन की यही शक्ति उसे कर्मरत बनाए रखती है और लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। जीवन में असली जीत वही है जो मन की शक्ति से हासिल होती है। अगर आपका मन जीतता है तो आप हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। इसलिए हमेशा इस मंत्र को याद रखें, अपने मन को कभी हारने ना दें। हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखें, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन संघर्ष करें। संत कबीरदास जी ने भी यही कहा है, दुर्बल मन न डरिए, जो करत अभ्यास, जीत आपकी निश्चित है, साहस रखो पास।
0: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का था, वाचक स्वर था रूपाली चौहान का। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दे रही हैं बिंदु भाटे। विषय है गर्मी के मौसम में पानी का प्रबंधन कैसे हो।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अपन बात करेंगे खेती के बात में कि उन्हाड़ा के बखत में अपना खेत में जो पानी अपन वाला उसको प्रबंधन कसो हो। उन्हाड़ा के बखत चली रही खेती में अपन पानी वाला का लेना छे तो फसल का बचावना का लेना उसको उत्पादन बढ़ाना का लेना ये जरूरी भी है कि हम बखत बखत से पानी देता रहा। अभी जबकि बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ी रोज तो उतनोज हम जसो पानी देवन उसको वाष्पीकरण ज़्यादा हुई जाए जेका से खेत की माटी छे तो जल्दी जल्दी सूखी जाए। उन्हाड़ा के बखत में कुछ ऐसा तरीका छे जेका से हम पानी की बचत करी सकें। आधुनिक सिंचाई की जो तकनीक न छे वो छे जैसे ड्रिप की सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में ये बहुत अच्छो कुशल तरीको छे। एम छे तो पानी सीधा पौधा की जड़ में पहुँचे और छे तो 70% तक पानी की बचत हुई जाए। स्प्रिंकलर एको उपयोग करना से एक फवारा विधि है जेका से छे तो पानी की बर्बादी नहीं होती, पानी फालतू नहीं जातू है अना चारे तरफ से तो एकासी फसल में जो भी हमने लगे रखी ऊपर सिंचाई हुई जाए। सेंसर वाली जो पद्धति है जैसे मिट्टी में जो सेंसर का साथ में पानी दियो जाए तो एमां वाष्पीकरण कम से कम हो और 40% तक अपन पानी की बचत करी सकें। आम एक बाद में आवज कि अपनी जो माटी है ओम नमी बनेल रहे एका लेना काय करनू चाहिए। एका लेना सबसे पहले हम मल्चिंग करा। मल्चिंग को मतलब ये छे कि जो अपनी फसल की पराई छे ओख सूखे घास होए या फिर प्लास्टिक की शीट होए ओको उपयोग अपन करी सकें। एकासी अपनी जो माटी छे ओके ढाकी करना रखा ताकि माटी ठंडी भी रहे और उमा नमी बनेल रहे। एम छे तो 40-50% तक वाष्पीकरण कम हो। ओका बाद में आवज गहरी जुताई। गहरी जुताई करना से वावणी का पहले अपन गहरी जुताई करें और गहरी जुताई करना से पानी सोखना की जो क्षमता छे वो बढ़ी जाए। तो हम जब खेत तैयार करा ओका पहले गहरी जुताई ओका करी देवा। सिंचाई को जो तरीको छे आना बखत छे वो भी हमका ध्यान में रखनु पड़ेगा। सुबह नश संजा की बखत सुबह छे तो 5-9 बजे का बीच में आना संजा की बखत में 4-7 बजे का बीच में अपन पानी वाई देवा तो कम से कम भाप बनी ख ये पानी उड़ागा। एम छे तो एक बात को ध्यान रखा कि दोपहर की बखत में छे तो पानी नहीं देनु चाहिए क्योंकि दोपहर में छे तो खूब घाम पड़े और हम जब पानी देवंगा तो जल्दी से भाप बनी के ना उड़ी जाएगा। एका बात छे गहरी और कम आवृत्ति मतलब कि बार बार हल्को पानी देना का बजाय कम बार लेकिन अच्छो ज़्यादा पानी दे देवा है नी जेका से जड़ तक पानी पहुँची जाए ओमा नमी बनेल रहे और जड़ न स्वस्थ रहे। एका अलावा भी आरू भी प्रबंधन का कुछ उपाय छे जैसे कि खेत का खेत में छे तो मेड़बंदी अपन कर देवा। खेत के चारे तरफ अपन ऊँची मेड़ न बनाई देवा जेका से पानी बिल्कुल बाहर नहीं जाओ। एको आरू एक तरीको छे कि अपन शेड लगावन ऊपर छे तो हरी चद्दर बांधी देवन जाड़ेदार जेका से छे तो उन्हाड़ा के बखत में अपनी जो फसल छे वो सुरक्षित भी रहे और लू नहीं लगती है। एका बाद आवज वरसात को पानी को संचयन। वरसात का पानी का अपन बचे ही न रखा ओका छोटा छोटा तालाब बनाई ना ओमा इकट्ठो करी लेवा एकासी भी अपन पानी की बचत करी सकें। ऐसी फसल न लगावा जेमा छे तो कम से कम पानी लगा जैसे मूंग बाजरा रागी ये तरीका से अगर खेती बाड़ी हमारा किसान भाई बहन करेगा बहुत अच्छो उत्पादन लेगा और पानी की बचत भी करी सकेगा। आज हमारा किसान भाई बहन से योज कहनु छे।
0: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी जानकारी दे रही थी बिंदु भाटे। विषय था गर्मी के मौसम में पानी का प्रबंधन कैसे हो। मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं? उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

आकाशवाणी दौर से अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का, जानकारी लीजिए आज दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र, प्रस्तुति राजेश की रहेगी। 8:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:00 लोक संगीत में कलाकार होंगे सुंदरलाल मालवीय, इनसे आप सुन सकते हैं मालवी लोकगीत। 9:15 सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे चंदन दास की गाई गजलें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 आज आप सुन सकते हैं पद्मा तलवलकर का गायन, राग होगा जौनपुरी। 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 से श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के गीत, कार्यक्रम होगा MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसमें 11:00 होगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 फिल्म संगीत, संग्रहालय से दिन में 12:30 महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1:00, लोक संगीत 1:30, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत दिन में 2:00 और 2:30 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ। युववाणी में आज का आकर्षण रहेगा क्रम एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं वेलकम फिल्म के गीत। 5:45 पर आनंद लीजिए का फिल्म संगीत का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकते हैं 6:00। 6:30 सुगम संगीत में कलाकार होंगे चंदन दास और 6:45 पर लोक संगीत में आपको सुनवाएंगे सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता, भेंट वार्ता, घरेलू व्यंजन के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही लोकगीत सुनवाए जाएंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:00 से हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा 8:15। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत आप सुन सकते हैं 9:15। आज 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:00 आपको सुनवाएंगे नाटक एक नाव के हम सफर। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन, राग होगा मारवा। 10:00 आपको पुनः याद दिला दें 10:00 आप सुनेंगे नाटक एक नाव के हम सफर और 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और 7:20 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आपका पत्र। ये रूपरेखा थी आज दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: द्वितीयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना टो लैम इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु अपि च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विस्तृतं चर्चां करिष्यतः। वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य त्रिदिवसीया यात्रायां ह्यः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। तेन सह वियतनाम सर्वकारस्य अनेकेषां मन्त्रिणां वरिष्ठाधिकारिणां च उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलम् अस्ति। सहैव एकं प्रबलं वाणिज्य प्रतिनिधिमण्डलमपि समूहेन सह अस्ति। अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचनानन्तरं राष्ट्रपत्युः टो लैम वर्यस्य भारतस्य एषा प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। भारतस्य कर्पास क्षेत्रस्य बाधायाः निवारणाय, विकासे न्यूनतायाः समाधानाय, गुणवत्तायाः चिन्तायै च केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कर्पास उत्पादकता अभियान कपास कान्ति इत्यस्य कृते 6,500,000,000,000 रूप्यकाणि स्वीकृतानि। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इदम् अभियानं सर्वकारस्य फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.5 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारत सेमीकण्डक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतम् इतोऽपि द्वे सेमीकण्डक्टर परियोजने अनुमोदिते।
1: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो एलईडी प्रदर्शन सौविध्यम् अन्तर्भवति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20/26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोऽपि स्वीकृतः। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 29/56 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्याग पत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्। पश्चिमबंगस्य निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इत्यस्याः व्याख्यायाः प्रतिक्रियारूपेण भाजपेति दलेन उक्तं यत् भारतं लोकतन्त्रमस्ति तथा च सर्वदा तस्य सम्मानं करणीयम्। श्री संबित पात्रा अवदत् यत् एतत् भाजपेति दलस्य उपरि आक्रमणं नास्ति, अपि तु लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च उपरि आक्रमणमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् 8 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये हैदराबादे स्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कसगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित होता है विविध भारती चैनल पर प्रत्येक रविवार सुबह 9:30 बजे। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को दी मंजूरी, नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना भी स्वीकृत। प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन। मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क जाँच, उपचार और टेली परामर्श की सुविधा मिलेगी और प्रदेश के 28 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी। वहीं श्री वैष्णव ने गन्ना किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की जानकारी भी दी।
1: गन्ना किसानों के लिए 365 रुपए अप्रूव किया है कैबिनेट ने, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। करीब करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% अधिक देने का जो मिशन रहता है, उसके कंपैरिजन में ये करीब 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल इंडिया वेटेड को। करीब 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों को इस पूरे प्रोग्राम में मिले।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस परियोजना से बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन और कूनो राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क और अधिक सुगम होगा। लॉजिस्टिक्स टूरिज्म क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रदेश के व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए इस कदम का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के व्यापारियों और सरकार के बीच एक सीधा संवाद तंत्र स्थापित करना है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र की बाधाओं को दूर कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। बैठक में 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी पारित किए गए। मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है, जिससे आगामी 5 वर्षों में 2,442 करोड़ रुपए व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2,242 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे।
0: इंदौर में 9 से 13 जून तक 5 दिवसीय ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और भू राजनीतिक संवाद को बढ़ाना है। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया और इंडोनेशिया सहित 21 देशों के मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों के साथ हुई बैठक में बताया कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से MOU किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनकी शीघ्र पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करना तथा

दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों को बेहतर सहयोग प्रदान करना है। प्रबंध संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि यह पहल विशेष रूप से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से लोगों को उनके क्षेत्र में ही निशुल्क जांच, उपचार और डॉक्टरों से टेली परामर्श की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को WOW लाइव अवार्ड्स की टीम भोपाल में विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष मिले गोल्ड और सिल्वर अवार्ड प्रदान करेगी। नई दिल्ली में आयोजित शोज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव 2026 में विक्रमोत्सव 2026 को कल्चरल लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड अवार्ड तथा लाइव इवेंट में सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। जबलपुर स्थित बरगी डैम पर हुए क्रूज हादसे को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक और अन्य क्रूज सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस घटना में प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 30 अप्रैल को हुए इस हादसे में 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथियों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। छात्र स्वयं या अध्ययन केंद्रों दोनों माध्यमों से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। शैक्षणिक कैलेंडर एवं शुल्क संरचना मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की वेबसाइट mpmb.org.in पर देखा जा सकता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज 28 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, जबलपुर और कटनी समेत प्रदेश के 28 जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा और खरगोन सहित प्रदेश के 28 जिलों में दिन में भी गर्मी का असर बना रहेगा। प्रदेश में कल लगातार पांचवें दिन भी आंधी और बारिश का दौर बना रहा। ग्वालियर, छतरपुर, धार, बड़वानी, डिंडौरी और बालाघाट समेत कई जिलों में सुबह से ही आंधी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं रात में भी भोपाल समेत कई जिलों में तेज आंधी चली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुरहानपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। विदिशा में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त शिकायत पर प्रशासन ने 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी बालिका का बाल विवाह रुकवाया। मंडला जिले के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में कल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 70 दिव्यांग विद्यार्थियों ने सहभागिता की। आगरमालवा के सोयत कला स्थित शासकीय महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान के तहत आज विकासखंड स्तरीय प्रवेश मेले का आयोजन किया जाएगा। रायसेन के जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। फायर सेफ्टी सप्ताह 10 मई तक चलेगा। रतलाम में 4 लेन सीसी रोड निर्माण कार्य की जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत बैतूल जिले के ग्राम चंदौरा में कल सामूहिक विवाह सम्मेलन में 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सिंगरौली जिले में जनगणना 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में 30 मई तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य संपादित किया जा रहा है। झाबुआ जिला कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने कल पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में क्षीरधारा और हिरण्य गर्भ अभियान का सफल संचालन करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को दी मंजूरी। नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना भी स्वीकृत। प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन। मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूरस्थ क्षेत्रों में निशुल्क जांच, उपचार और टेली परामर्श की मिलेगी सुविधा। और प्रदेश के 28 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: या
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। पेश है प्रोग्राम आपका पत्र।

0: आपका पत्र कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को महिमा शर्मा
1: और राजेश पाठक का
0: नमस्कार। श्रोताओं, आपके बहुत सारे खत हमारे पास आते हैं, ईमेल भी आते हैं और इस कार्यक्रम में हम उन्हें शामिल करते हैं, क्योंकि आपकी चिट्ठियां ही हमारी पहचान है और आपके शब्द ही हमारी प्रेरणा है। लफ्जों में जो दिल की बात उतर आती है, हर चिट्ठी एक नई सौगात लेकर आती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लेते हैं ये पहला मेल, किसका आया है
1: जी। मेल लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को एक बात बता दें
0: जी
1: कि पत्र जो है, अपने विचार जो है, किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारा मेल है, मेल का पता आप बता दें।
0: हमारा मेल का पता है आपका पत्र, आपको लिखना है स्मॉल लेटर में AAPKAPATRA आपका पत्र @gmail.com। फिर से एक बार बता देती हूँ, ईमेल एड्रेस हमारा है AAPKA आपका PATRA पत्र @gmail.com। तो श्रोताओं, आप इस पर हमें तुरंत इस वक्त और भी मेल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम लाइव है
1: जी। और जो पत्र नहीं भेजे हैं, मेल नहीं भेजे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर
0: जी
1: 9993290063, एक बार पुनः सुन लें 9993290063। इस पर इस लाइव पत्रोत्तर कार्यक्रम में हम आपसे सीधे बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं
0: जी
1: कार्यक्रमों के बारे में।
0: तो राजेश जी, लेते हैं हम पहला मेल जो हमें भेजा है। दुर्गेश नागपुरे, राधेश्याम नागपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने
1: क्या लिखा है?
0: इन्होंने अपना हमको नमस्कार भेजा है और लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम हमको बहुत अच्छे लगते हैं। 3 मई को कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों से शिखा जी की जो बातचीत थी वो बहुत अच्छी लगी और शिखा जी ने वर्ल्ड सन डे पर जो जानकारी दी थी बहुत ही लाभदायक थी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेल द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। देखिए हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, दिवस का भी बिल्कुल ख्याल रखते हैं। तो जहाँ तक दिवस की चर्चा हुई तो आज 6 मई है महिमा जी, 6 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल सर,
1: और जितने भी अस्थमा रोगी हैं उनको एक अलग संदेश जाता है। आप देखते होंगे कि गाजर घास पूरा होता सभी जगह पाया जाता है
0: और सबसे
1: और उसके जो स्पोर होते हैं हवा में उड़ते रहते हैं और इसके कारण अस्थमा बहुत होता है
0: जी।
1: तो जैसे ही बारिश का समय आए आप सीधे इसे उखाड़ कर फेंक दें, इससे अस्थमा का काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है। आज राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है, 6 मई को मनाया जाता है और देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स का कितना बड़ा योगदान होता है,
0: बहुत बड़ा योगदान।
1: तो आपने जब दिवस की बात की तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं इसका हम अपने श्रोताओं से साझा करना हम मुनासिब समझते हैं। अगला पत्र किनका है?
0: तो सर ये इस नागपुरी जी ने जो हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा लिखी थी और इन्होंने शिखा जी की भी काफी तारीफ लिखी है और वर्ल्ड सन डे पर इनको जानकारी बहुत अच्छी लगी थी।
1: बहुत तो, बहुत धन्यवाद। एक बात हम और बता दें, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस भी ये अभी तो बाद में मनाए जाएंगे लेकिन इसके बारे में भी कुछ श्रोताओं का पत्र आया है, हम बाद में चर्चा करेंगे
0: जी।
1: फिलहाल अगला मेल किनका है?
0: सर इन्हीं के, इन्होंने आगे भी लिखा है कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बेहद पसंद हैं और कार्यक्रम आपका पत्र बहुत वर्षों के बाद पुनः शुरू किया गया, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। कार्यक्रम आपका पत्र में आकाशवाणी इंदौर के प्रमुख राजेश पाठक जी की आवाज़ और श्रोताओं के पत्रों के उत्तर उनकी मधुर वाणी में सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें दिनांक 27 अप्रैल सोमवार का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में सुषमा जी द्वारा जानकारी बहुत अच्छी लगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास अब पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से आया है लिखने वाले हैं आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से। लिखते हैं 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व अस्थमा दिवस के विशेष इस कार्यक्रम दिया गया, इन विषयों पर प्रीति जी द्वारा दिया गया और बहुत उपयोगी लगी। और 5 मई को कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी द्वारा विविधा कार्यक्रम में जो कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट जो प्रसारित की गई, काफ़ी अच्छा लगा, दिल को छू लिया। और रविवार को युवानी कार्यक्रम में जयती जी की ये जो रेडियो के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये काफ़ी अच्छा लगा। और
0: इस कार्यक्रम को सर कई सारे श्रोताओं ने सराहा है।
1: हम 90 वर्ष पूर्ण होने पर हम कई कार्यक्रम कर भी रहे हैं
0: जी,
1: और यूनिवर्सिटी में भी करेंगे, और इसके बाद जो है विभिन्न जो हमारे विशेष प्रोग्राम होते हैं, खेती गृहस्थी होते हैं, महिला सभा होता है,
0: युवानी कार्यक्रम,
1: युवानी कार्यक्रम होता है, सभी पर हमारे जो उद्घोषक भाई बहन हैं चर्चा कर ही रहे हैं। और जब 9 दशक जब रेडियो का होता है तो एक लंबा
0: बहुत लंबा अरसा होता है, और सर काफी
1: लंबे अरसे न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से, पहले तो हमारा आकाशवाणी केंद्र जो होता था,
0: ट्रांसमीटर के
1: जो मीडियम वेव जो होता था, करीब 300 किलोमीटर के रेडियस में ये आकाशवाणी इंदौर को सुनते थे, लेकिन आज जो है न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में हमारा केंद्र को सुन रहे हैं। विविध भारती भी है और हमारा मीडियम वेव भी है, दोनों चैनल इंदौर के सुन रहे हैं। और यहाँ पर मालवी और निमारी दोनों बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। ये जो कार्यक्रम पूरे विश्व फलक पर सुना जा रहा है, और देखिए इन्होंने कबीर की जिक्र की है, तो हमने जो कार्यक्रम जो कृषि महाविद्यालय में जो आयोजित किया गया, काफी अच्छा कार्यक्रम था। इसमें वर्तमान समय में कबीर की जरूरत, इस विषय पर प्रकाश डाला गया था। और मुख्य वक्ता जो थे कुलाधिपति रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, और ये चेयरमैन के आईसेक्ट के भी चेयरमैन हैं, ये मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष चौबे जी, और इनके साथ सरस्वत अतिथि के रूप में मौजूद थे 3 विभूतियां थे, पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, पद्मश्री भैरव सिंह चौहान जी और पद्मश्री कालूराम बामनिया जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। और इसके अलावा वरिष्ठ कवि श्रीकांत नीलोसो जी के जो स्मृति शेष में भी ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया, काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें याद किया गया। और कबीर का जो स्वरांजलि के रूप में जो प्रस्तुत किए थे प्रीति सिंगार, प्रियांशी, हंसिका साथी और कबीर के युवा समूह, देखिए हमारे युवा समूह भी जुड़े हुए हैं। और आज जो है वर्तमान में जो एक तीसरा वर्ग मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ने भी जो समूह था मेरा कुनबा ये प्रस्तुत किया था, और जुगाड़ शिक्षा केंद्र के बच्चों द्वारा भी गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। योग मुद्राएं एवं योग नृत्य भी प्रीति बामनिया, वंदना सुमेश और साथियों द्वारा प्रस्तुत की गए। और कबीर गायक विक्रम बोरोदिया, लाखन मंडलोई जी ने भी ये प्रस्तुत किए। तो देखिए वर्तमान समय में जो कबीर की जो प्रासंगिकता है
0: जी,
1: ये इसको जो जन जन तक पहुंचाना जो है
0: इसका उद्देश्य
1: हमारा कर्तव्य है। और एक एक दोहा उनको सटीक उतरता है वर्तमान संदर्भ में। आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना, सराहा, गुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
0: सर, अगला मेल आया है अनिल बामनिया जी का, और ये लिखते हैं कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके केंद्र से सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु आपके यहाँ से पूर्व में आज हमारी बारी है। ये सर एक प्रोग्राम आता था हमारा पहले
1: जी,
0: और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था, उसे बंद क्यों कर दिया गया?
1: देखिए जब हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे थे
0: जी,
1: तो इसके पहले अस्थाई बिंदु तालिका जो हम बनाने जा रहे थे, हमने अपने श्रोताओं को बोला था कि आप जो है अपना सुझाव भेजिए, अब जो है 6 महीना कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका सुझाव हम नोट कर लिए हैं, और अगले जो हम अस्थाई बिंदु तालिका बनाएंगे उसमें बिल्कुल हम वादा करते हैं कि आपका सुझाव उस पर अमल करेंगे। आपने इतनी अच्छा
0: आगे और भी लिखा है सर,
2: शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या लिखे?
0: आगे लिखा है कि आपका पत्र कार्यक्रम आपने जब से इसका समय बढ़ाया है बड़ा सराहनीय कदम है, और इसी प्रकार से अन्य श्रोताओं के भी पत्र अधिक से अधिक शामिल किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम में।
2: बिल्कुल, देखिए हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी सुधी श्रोता हैं उनके विचार और उनके पत्र शामिल करें।
0: हाँ, और सर उनकी समीक्षा,
2: क्या लगता है कि एक अपनापन लगता है हमारे पूरे इसमें। अब चूंकि न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमारे काफी वैश्विक श्रोता जुड़ गए हैं, ये केवल मालवा निमार जो हमारा ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र है, उज्जैन और इंदौर संभाग, इसकी सीमा को भी लांघ गया है। और हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों से और पूरे विश्व से भी पत्र आते रहते हैं और विचार साझा करते हैं। देखिए भेरूलाल बख्तरिया जी उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से ये लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को उन्होंने नमस्कार किया है, और न्यूज ऐप के माध्यम से हम कोई सा भी कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र को, किसी भी आकाशवाणी केंद्र को कहें सुन सकते हैं। इन दिनों हम उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा पर हैं और यहाँ पर हम आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। अभी हम हनुमान पट्टी से यमुनोत्री की पैदल चढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं, आगे गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। कल हम हरिद्वार और ऋषिकेश में थे, ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ से ही चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और नीचे बहुत गहरी नदी है, और पहाड़ों के टेढ़े मेरे सर्पिले मार्गों से हमारी बस पहाड़ के सबसे ऊपर तो कभी सबसे नीचे उतर जाती है। यहाँ पर अत्यधिक ठंड है, क्या बात है, आप जो है ठंड का आनंद ले रहे हैं और हम लोग इधर गर्मी का आनंद ले रहे हैं, और इससे गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस यात्रा में हमारे साथ अन्य कई यात्री हैं जो आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, और इन्होंने यात्रा के दौरान इन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, हम आपको सुना रहे हैं किस प्रकार इनकी जो बस है पहाड़ से नीचे उतर रही है और किस प्रकार ये अपने यात्रा कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक जो लाइव पत्रोत्तर करते हैं महिमा जी, इसमें एक अलग आनंद आता है, और हम अपने श्रोताओं से सीधे बातचीत करते हैं और पूरी बस भरी सवारी आनंद कर रहे हैं। हमारे केंद्र का ये चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं
0: और
2: उस समय हमारा केंद्र सुन रहे हैं, हमें भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैरूलाल बख्तरिया जी। अगला
0: मेल हमारे पास आया है प्रवीण शिमाली का, और बढ़वा से ये लिखते हैं कि 30 अप्रैल को 7:20 पर सुनहरे पल कार्यक्रम में साइकिल शीर्षक पर बहुत अच्छे गीत सुनवाए गए और बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। और आगे लिखते हैं 2 मई को 8:30 कंपेयर फिल्म संगीत कार्यक्रम, 40 से 50 दशक की कुछ जानी पहचानी फिल्म अभिनेत्रियाँ नलिनी, शकीला, कामिनी कौशल, नादिरा, गीता बाली, शशिकला पर फिल्माए गीत, हमें बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम, पेशकश थी पद्मश्री जी की, उनको बहुत धन्यवाद। 3 मई को वसुंधरा के अंतर्गत वार्ताकार सिमरन मोरिया की वार्ता अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी सुनने को मिली, बहुत पसंद आई,
2: क्या बात है,
0: और
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे लिखते हैं 3 मई को प्रसारित गुड मॉर्निंग कार्यक्रम विश्व अस्थमा दिवस पर, विश्व रेडक्रॉस दिवस पर बहुत पसंद आया, और प्रस्तुति प्रीति जोशी जी की थी, और मिडवाई दिवस पर इन विषयों पर प्रसारित जानकारियां बहुत रोचक लगी। 5 मई को कार्यक्रम के लिए लिखते हैं कि 7:20 पर सुनहरे पल कार्यक्रम अमृता जी द्वारा पेश किया गया, जिसमें नावों में सैर कराई गई, मतलब नावों पर फिल्माए सुमधुर गीत थे इस कार्यक्रम में। और 5 मई को 8:30 विविधा के अंतर्गत इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर के प्रमुख राजेश पाठक की थी, बहुत ही रोचक लगी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए साइकिल की इन्होंने बात की है, तो वर्तमान समय में एक पर एक वाहन मौजूद हैं, उसमें साइकिल का जिक्र करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और देखिए वर्तमान समय में अगर प्रदूषण को हम ध्यान में रखते हैं तो वास्तव में साइकिल का काफ़ी महत्व है, और कई मायने में साइकिल जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद है। जिंदगी कैसे दो पहियों पे चलती है, बता दिया था तुमने जब पहली बार गिरे थे ना, तभी उठना सिखा दिया था तुमने, पीठे पीछे बैठा शख्स कभी बोझ नहीं लगता, साथी का असली मतलब बता दिया था तुमने, हर पैडल के बाद कम होती दूरी, मेहनत और मंजिल का रिश्ता समझा दिया था तुमने, आएगा जो कुछ जिंदगी में काम मेरे, वो सब कुछ बचपन में ही सिखा दिया था तुमने।
0: तो साइकिल पे बहुत अच्छी पंक्तियां सर आपने भी
2: बिल्कुल पढ़ी। और देखिए ये मानव जीवन से जुड़ी हुई है
0: बिल्कुल,
2: और हम बातचीत कर रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, कभी हमारा बोझ श्रोता उठा लेते हैं, कभी श्रोता का बोझ हम उठा लेते हैं, तो इस तरह से
0: एक कोऑर्डिनेशन इस तरीके से बना हुआ है हमारा संबंध श्रोताओं के साथ,
2: एक साइकिल की भांति चलती है और बिल्कुल समन्वय बना के चलती है और चलना भी चाहिए, तभी हम अगर हम सभी वर्गों चाहे उच्च स्तर के लोग हैं या जिनकी जो बोलने में कमजोर हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं या लेकिन वे भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं और वो भी परिस्थितियों से सीखते रहते हैं, तो इस तरह से जो समन्वय होता है वास्तव में जीवन के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला,
0: और सर ये बात मैं हमेशा पत्र में अपने एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं हमको पर्यावरण से जुड़ा हुआ, तो मन की बात करके एक लिखते हैं, ये इसमें लिखते हैं कि जल का संरक्षण करें, जल है तो कल है और स्वच्छता ही सेवा है, ऐसा एक छोटा सा संदेश ये हमेशा बनाकर लिखते हैं, तो
2: इन्होंने लिखा
0: प्रवीण श्रीमाली जी ने,
2: क्या बात है, बहुत श्रीमाली जी
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे पास एक व्हाट्सएप संदेश आया है, चौखड़ा धाम कुलनी सनावत, कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान लिखते हैं, आपका पत्र कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंदौर शहर साफ सफाई के मामले में सबसे अव्वल है, हर तरफ से सफाई देखने को मिलती है और वहाँ हरियाली भी कम नहीं है, रविवार सुबह की सभा में इसी पर आधारित प्रोग्राम सुना, वास्तव में इंदौर स्वच्छता में सबसे आगे है। बिल्कुल आपने सही कहा, और 4 मई को मुकाम सिंह चौहान जी ने इंदौर के बारे में स्वास्थ्य वर्धक जानकारी और सुंदर प्यारे गीतों से संयोकर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया काफी अच्छा लगा,
0: उसको भी पसंद किया जी।
2: और गुड मॉर्निंग कार्यक्रम जो इंदौर कार्यक्रम है, गुड मॉर्निंग इंदौर, ये भी काफी अच्छा लगा,
0: हमारे बिना गोली
2: दवाई शल्य चिकित्सा के फिजियोथेरेपी बहुत उपयोगी रही, और विविधा कार्यक्रम में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें लिखा। और देखिए कबीर की जब बात आती है तो इसके जितने भी दोहे हैं, जैसे पोथी पढ़ी परी जुगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे
0: दुख काए का होए जी, बहुत
2: और निंदक नियरे राखिए, आगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, जब पत्रोत्तर कार्यक्रम में शिकायत नहीं हो तो हम अपने कार्यक्रम में निखार कैसे ला पाएंगे
0: जी, बिल्कुल हम सभी श्रोताओं से ये
2: लेकिन
0: अपेक्षा करते
2: शिकायत
0: हैं कि वो
2: ऐसी होनी चाहिए, एक रचनात्मक शिकायत होना चाहिए और इस प्रकार का जो शिकायत हो ताकि हम सुधार कर सकें,
0: तो कुछ समीक्षा पत्र भी हमें लिखें,
2: पत्र भेजें, और शिकायत बहुत अच्छी चीज है, जब तक
0: शिकायत
2: अच्छे
0: नहीं
2: काम करेंगे तभी
0: तो
2: शिकायत होगी, और शिकायत जब होगी तब अपने आप को सुधारेंगे
0: जी बिल्कुल,
2: और जब हम अपने आप को सुधारेंगे तब पूरे समाज अपने आप सुधर जाएगा, जैसे एक मकान बनता है जब एक एक ईंट से बनता है, जब एक एक ईंट अपने आप को सही ढंग से लग जाएगा तो बिल्डिंग ही पूरी मजबूत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला
0: मेल हमें भेजा है सुदर्शन शाह ने
2: जी,
0: ये लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता समस्त साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और दिनांक 3 को युववाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा के वरिष्ठ श्रोता साथी श्री आनंद जोशी जी की वार्ता सुनी, आकाशवाणी के प्रति लगाव समर्पण और कब से आकाशवाणी से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, इस विषय पर उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, सफल प्रस्तुति हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी को हृदय की गहराइयों से आभार और अभिनंदन। दिनांक 5 को प्रातः 7:20 पर प्रसारित होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा में इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुनी, वो भी बहुत अच्छी लगी। और प्रस्तुतकर्ता साथी कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश पाठक जी का बहुत आभार, इतनी शानदार रेडियो रिपोर्ट हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी को हृदय से धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों को सराहा। और देखिए जिला खरगोन मध्य प्रदेश से
0: सर छोटी सी बात और लिखी इन्होंने, आपके केंद्र से नियमित रूप से सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल जो प्रसारित होता है वो हमें काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें रोजाना विविध विषयों को समायोजन करके गीतों की प्रस्तुति दी जा रही है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अच्छे विचार हैं। और देखिए ये होना भी चाहिए, जैसे हम जब आपके पत्र प्रस्तुत कर रहे थे तो उसमें भी जो आज के दिवस हैं चर्चा कर लिए और हम अपने श्रोताओं को तरोताजा कर दिए। और देखिए जिला खरगोन मध्य प्रदेश से भी कई बार से पाए हैं लिखने वाले हैं, हुकुमचंद कटारिया जी, पिंटू सेन जी, हरि निवास खेरे जी, बाबूलाल चौधरी जी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान और दीपक सचिन कटारिया, कृष्ण बिराज, अर्णव काव्यांशी, कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया जी। ये लिखते हैं, राजेश पाठक जी और महिमा जी को सादर प्रणाम। 1 मई को इंदौर परिक्रमा के अंतर्गत इंदौर शहर और आसपास की गतिविधियों को सुना। 5 मई को सुनहरे पल कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश किया गया और MH हॉटलाइन में कहीं कई श्रोताओं के खत भी शामिल किए गए और अमृता सिंह जी ने इनकी जो प्रस्तुति थी बहुत लाजवाब लगी। चॉइस टाइम हम प्रतिदिन सुनते हैं, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। और 3 मई को मुकाम सिंह चौहान जी की जो प्रस्तुति थी लाजवाब थी और कार्यक्रम को इन्होंने पूरा मनोरंजक बना दिया था, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है शाहजी बोड़खे ने
2: जी।
0: ये सबसे पहले लिखते हैं नमस्कार हमें, और लिखते हैं आकाशवाणी इंदौर के और विविध भारती के सभी कार्यक्रम हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम। अगर संभव हो तो मन भावन कार्यक्रम दिन में भी चालू किया जाए और विविध भारती से चॉइस टाइम और आपकी पसंद कार्यक्रम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लिखते हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, मन भावन के लिए कई श्रोताओं का हमें सुझाव प्राप्त हुए हैं। हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं कि आने वाले अगले महीनों में 6 महीने के बाद जो है हम इस कार्यक्रम को अवश्य ही अधिक से अधिक स्थान देंगे। आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं, हम इंदौर के नए श्रोता हैं और स्मिता रेडियो ग्रुप से हम लिख रहे हैं और हमारे कई साथी ये कार्यक्रम को सुनते हैं, आपके खास करके गीत संगीत कार्यक्रम विविध भारती हो या आपके जो इंदौर PC के जो कार्यक्रम हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये लिखने वाले हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जी, सोहन जोशी जी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। और इसके अलावा व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जय जवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी। ये सब लिखे हैं कि आपका जो खास करके इंदौर से जो गीत संगीत फिल्म संगीत मनभावन वगैरह ये जो कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं,
0: आपकी पसंद चॉइस टाइम
2: काफ़ी अच्छे लगते हैं। आगे हमारे पास एक और दुर्गेश नागनपुरे जी लिखे हैं, गर्मी और लू से बचाव के लिए इन्होंने लिखा है, एक संदेश दिया, खूब पानी पिए, खाली पेट बाहर ना निकलें और शराब और कैफीन के सेवन से बचें, ठंडे पानी से नहाएं, सर ढकें, हल्के रंग के ढीले और पूरे बाह के कपड़े पहनें, बच्चों को बंद वाहनों में अकेला ना छोड़ें, दिन दोपहर 12 से 4 बजे के मध्य बाहर जाने से बचें, धूप में नंगे पाँव ना चले, बहुत अच्छी जो है भारी कार्य ना करें। बहुत ही इन्होंने गर्मी के दिनों में अच्छा सुझाव शेयर किया है अपने श्रोताओं के साथ
0: जी।
2: ये ग्राम जसवारी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से लिखे हैं और आगे भी लिखा है कि गर्मी और जो लू होता है, हीट स्ट्रोक होता है, इससे बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही है और नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब का सेवन बिल्कुल करें। और आपका जो कार्यक्रम है, हम सुन रहे हैं आदरणीय राजेश पाठक जी, मेरे पास सुनने के लिए रेडियो नहीं है, क्या आप मेरे लिए इंदौर से एक रेडियो भेजेंगे ताकि मैं आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम सुन सकूं। अब देखिए हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है
0: जी।
2: ये व्हाट्सएप हमें किए हैं, आप इस पर न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और हमारा दोनों कार्यक्रम जो है इंदौर पीसी का कार्यक्रम है
0: और विविध भारती चैनल, दोनों कार्यक्रम आप उस पे सुन सकते हैं जी।
2: हाँ बढ़िया सुनिए और सुन भी रहे होंगे तभी तो ये हमारे पास। और जहाँ तक रेडियो भेजने की बात है तो हमारे ढेर सारे स्रोता हैं, लाखों में स्रोता हैं, जब आप मांगेंगे तो दूसरे भी डिमांड करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा व्यवहारिक नहीं लगा।
0: सबसे अच्छा साधन है सर के मोबाइल हर व्यक्ति के पास रहता है, और आप न्यूज ऑन AIR को आप अपने उसमें सेव कर लीजिए और इस पर हमारे सभी कार्यक्रमों को आप आराम से सुन सकते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
0: मेल हमें लिखा है बाबू दिव्यांश सूरज कुमार ढाकसे ने, बहुत सुंदर छोटा सा संदेश लिखकर भेजते हैं ये
2: जी।
0: सपनों की दुनिया को कह दें बाय बाय, हुई है सुबह चलो सब जाग जाएं, सूरज को करें वेलकम तैयार हो जाएं, चलो इस दिन की खुशियां मनाएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, सुंदर पंक्तियों के साथ आप अपने विचार व्यक्त किए हैं। और मेल किनका किनका और आ रहा है, अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, एक बार मेल और बता दें।
0: बिल्कुल सर, लाइव कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और हमारा मेल एड्रेस है कार्यक्रम आपका पत्र, यानी AAPKA स्मॉल लेटर्स में आप लिख सकते हैं PATRA@gmail.com पर आप हमें अपने संदेश पहुंचा सकते हैं,
2: और कहीं से भी आप लिख सकते हैं
0: जी।
2: पूरा विश्व सुन रहा है,
0: और देखिए इस समय ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है और ये लाइव ही हमारे पास संदेश लगातार आ रहे हैं।
2: क्या बात है।
0: ये अगला है
2: जी
0: संजय पंचोलिया का, ये लिखते हैं कि कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट परिक्रमा और स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता के साथ विचार नियमित रूप से सुनने को मिल रहे हैं, सभी प्रस्तुतियां बेहतरीन रहती हैं, बहुत बधाई। 22 मई आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर श्रोताओं को आमंत्रित कर एक रंगारंग प्रोग्राम रखा जाए। सर याद दिला दी इन्होंने हमें स्थापना दिवस की।
2: बिल्कुल आपका सुझाव जो है हमने नोट कर लिया है, लेकिन देखिए हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि अब चूंकि इंदौर जो है ढेर सारे यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं और स्टाफ की कमी के कारण जो है
0: कार्यक्रम कई बार बहुत बड़े विस्तृत कार्यक्रम
2: जो है
0: बड़े स्तर पर कार्यक्रमों को करना संभव नहीं होता है,
2: लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कार्यक्रम करें। हमारे पास सीता मऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर से दशरथ सेन जी ने व्हाट्सएप किया है और लिखे हैं आकाशवाणी इंदौर से मनभावन कार्यक्रम बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है, पत्र पर आधारित कार्यक्रम होता है और उसका जो सिग्नेचर धुन है उससे पता चलता है कि आकाशवाणी इंदौर का कार्यक्रम मनभावन हो रहा है। इनका सिग्नेचर टून बहुत अच्छा लगता है मनभावन का। आपने विचार व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पत्र है व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला
0: मेल हमें लिखा है धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी ने
2: जी।
0: आपने भी हमें 5 तारीख को प्रातःकालीन बेला में प्रसारित होने वाला सुनहरे पल कार्यक्रम की बहुत हमें वो लिखी है, तारीफ लिखी है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, यातायात और सैर सपाटे के अति प्राचीन साधन नाव पर केंद्रित गीतों को सुनकर मजा आ गया
2: जी। बहुत
0: अमृता जी को बहुत धन्यवाद भेजा है, साथ ही आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली थी, नावों पर केंद्रित गीत भी मधुर थे, कर्णप्रिय थे, ऐसा इन्होंने लिखा है।
2: अब देखिए बरसात आने वाली है, कुछ महीनों में बरसात आएंगे और ऐसे में नाव पर चर्चा ना हो तो कैसे हो सकता है
0: जी।
2: बिल्कुल आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे पास इंजीनियर अशोक मेहता जी ये लिखे हैं, व्हाट्सएप किए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी से व्हाट्सएप किए हैं, ये लिखे हैं नमस्कार आपका पत्र, ये कार्यक्रम हम पूरे हफ्ते बेसब्री से इंतजार करते हैं और विशेषकर आपकी प्रस्तुति का विशेष अंदाज अच्छा लगता है। 4 मई मंगलवार को मैं बेटी के घर सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हूं और यहां पर रहते हुए आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम सुनता हूं। परदेश में भी हमें ऐसा ना लगता है कि हम इंडिया से बाहर हैं। और इन्होंने लिखा है, देश की यादें मन को लुभाती है और प्रयास करता हूं कि हम अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकूं और कर ही रहे हैं। आपका पत्र हमने शामिल किया और हमें भी गर्व रहता है कि भारत के लोग विदेशों में जाते हैं और वहाँ काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और वहाँ से रहकर भी हमें याद करते हैं, हमारे केंद्र को याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी।
0: और अगला मेल हमारे पास आया है दशरथ सेन का।
2: जी, क्या लिखते हैं?
0: सीतामऊ रोड से, मंदसौर से लिखते हैं कि आकाशवाणी इंदौर से मनभावन कार्यक्रम बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है। पत्र पर आधारित कार्यक्रम ये होता है और इसकी सिग्नेचर धुन से ही हमें पता चल जाता है कि ये कार्यक्रम आ रहा है। इस कार्यक्रम में पत्र के साथ साथ आप ईमेल को भी शामिल कीजिए।
2: देखिए, श्रोताओं के पत्र, मेल और जितने भी शामिल करते हैं, कई कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, फिर भी अगर कमी महसूस हो रही है तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम मनभावन कार्यक्रम बिल्कुल शुरू करेंगे और अधिक से अधिक इसकी संख्या बढ़ा देंगे।
0: जी,
2: रंजीत सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर से सन 2018 से न्यूज़ ऑन एयर ऐप एप्लीकेशन, ये ऐप से मैं जुड़ा हूँ और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। 2026 में ये 7:20 पर कार्यक्रम, जो गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सुना, काफ़ी अच्छा लगा। और सुबह में व्हाट्सएप द्वारा आधे घंटे का फिल्म संगीत कार्यक्रम रखें, इन्होंने ऐसा कहा है। तो फिलहाल ये तो संभव नहीं है, हम पत्रोत्तर के माध्यम से आपसे जुड़ ही रहे हैं और आप भी जो है हमारे कई कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे आपकी पसंद हो या पत्र हो, इससे जुड़ते ही रहते हैं।
0: जी,
2: आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
0: मेल हमारे हमें प्राप्त हुआ है दुर्गेश नागपुरे का। ये इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। सुबह सुबह ही खुशियों का मेला, न लोगों की परवाह, न दुनिया वालों का झमेला,
2: क्या बात,
0: पंछियों का संगीत और मौसम खूबसूरत, मुबारक हो आपका ये प्यारा सा सवेरा।
2: बहुत खूब।
0: और आगे लिखते हैं कि कबीर पंथी गायक विक्रम जी से मिला हूं और उनके भजन को सुनता हूं और पसंद करता हूं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा कार्यक्रम लोग सुन भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर। ये सोहन जोशी जी ने भाटापारा से भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला,
0: और ये आगे लिखते हैं कि पाठक जी, कार्यक्रम मनभावन के लिए भी कोई ईमेल या आईडी बना दीजिए।
2: बिल्कुल, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। और ऐसा इसमें लगता है कि पूरा मनभावन ही मनभावन चलेगा। हमारे पास और कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं
0: जी।
2: ये लिखते हैं कि चॉइस टाइम बहुत अच्छा लगता है और तपस्वी जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया काफ़ी अच्छा लगा, और एक बार मुस्कुरा दो, ये भी कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा। और आगे इन्होंने लिखा है कि हर एक रिश्ता यहाँ पर कीमती है, कोई अपना मिले राह में जो खपा है, हम उन्हें चलकर मना लें, जहाँ तक हो सके रिश्ता निभा लें। ये लिखने वाले हैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज उबेद, रजिया जुनेद, अलीना आयात।
0: सर, जैसे कि इन्होंने रिश्ते की बात लिखी है तो मैं भी दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि दूरियों के बीच भी रिश्ते जुड़ जाते हैं, यही तो डोर है जो दिलों को पास लेकर आता है,
2: और ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम जुड़ ही रहे हैं। और एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य प्रदेश पेंशनर संघ, सिटीजन संघ, ये लिखते हैं, और क्या लिखा है इन्होंने ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा पढ़िए कार्यक्रमों के बारे में लिखे हैं।
0: हाँ सर, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इनकी और
2: तो
0: सुधार
2: हम निवेदन
0: करके,
2: करना
0: निवेदन
2: चाहते
0: करते
2: हैं कि जो भी लिखें बिल्कुल साफ सुथरा लिखें,
0: स्पष्ट
2: लिखें। हनुमंत सिंधे जी, ऋषिकेश सिंधे जी, ग्राम सिरटे, जिला सांगली से ये लिख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम सांगली में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है। और नाउ इस विषय के बारे में जानकारी दी गई, रोचक लगी, गीत कर्णप्रिय लगा, और बहुत बहुत इन्होंने धन्यवाद इन्होंने कहा है। और श्रीमाली जी ने एक संदेश दिया है, श्रोताओं से अपील किया है, जो मेल कर दे वो व्हाट्सएप न करे, जो व्हाट्सएप कर दे वो मेल न करे।
0: बहुत अच्छा सुझाव है,
2: बिल्कुल आपका सुझाव बहुत
0: ताकि अच्छा हमारे है। सभी श्रोताओं को मौका मिले, सभी जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं,
2: संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड क्रमांक 1 पोफाली जिला यवतमाल इथुन जयशंकर सिंघनकर और दिशांत कुमार सिंघनकर और वंदना धूले हरपित और समस्त सिंगरकन परिवार महाराष्ट्र से लिखते हैं, आपका जो कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें आपकी पसंद और मनभावन कार्यक्रम जो है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे पास ये जिला बुरहानपुर ग्राम मोहद से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी ये लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और इन्होंने एक लिखा है कि बज में सुखन कार्यक्रम जो है अगर आप प्रसारित करते हैं
0: जी, बिल्कुल
2: तो अच्छा लगता है।
0: उर्दू कार्यक्रम बहुत अच्छा हमारे यहाँ से प्रसारित होता
2: नोट
0: है,
2: कर दिया है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है जाने माने शायर को भी बुलाएं
0: जी
2: और अपनी शायरी से अपने क्षेत्र को पूरी बुलंद करेंगे और अपने श्रोताओं में भी एक अलग उनमें उत्साह और ऊर्जा भरेंगे।
0: बिल्कुल
2: हमारे पास कुछ और पत्र हैं, इन्होंने राजेश जी, राहुल जी को, मनीष जी को, सभी को इन्होंने नमस्कार भेजा है और लिखा है आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: तो
2: बहादुरपुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गाभनकर और सुमित गाभनकर जी और अभिजीत गाभनकर जी और संपूर्ण परिवार लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा लगता है, हम ये कार्यक्रम आपका महाराष्ट्र में सुनते हैं, खेती गृहस्थी भी अच्छा लगता है, ग्राम लक्ष्य भी कार्यक्रम भी अच्छा लगता है और जो श्रोताओं पर केंद्रित कार्यक्रम है मनभावन वगैरह आपकी पसंद काफ़ी अच्छा लगता है। और इन्होंने एक और जो है छोटी बलिया से लिखने वाले हैं अहमद भाई फूलवाले जी और कापसहेड़ा नई दिल्ली से आमना नसरीन जी ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम हम न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से दिल्ली में सुनते हैं, कबीर का कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा लगा और चॉइस टाइम कार्यक्रम जो है आपका बहुत अच्छा लगता है।
0: अनंत चुपले जी लिखते हैं
2: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिखने वाले हैं हरदेव मिका जी, बलविंदर जी और जयतेग बिरक और मीका बिरक जी ये लिखते हैं आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और इसी प्रकार कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये मुकेश बत्ता जी, नीलम बत्ता जी, नितिन पलक जी और सारे लोग ये पूरे परिवार लिखते हैं आपका कार्यक्रम जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी प्रकार जसपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से ये लिखते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी जी, नाजमा बेगम सिद्दीकी जी, रियाज जी और मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर जी ये लिखते हैं आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते
0: और
2: हैं।
0: और अनंत चितले जी ने हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम को काफी पसंद किया है। और देखिए सर बातों बातों में हमारा पूरे 40 मिनट पूरे होने को
2: कैसे निकल गया कुछ जी, पता नहीं चला और पत्र श्रोताओं के जो पत्र आते हैं और न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से कितने श्रोता देश विदेश के श्रोता हमसे जुड़ गए हैं विगत ये कार्यक्रम महीने चंद महीने शुरू हुआ है तो इससे हमारे कार्यक्रमों की सार्थकता तय होती है, इस केंद्र को कितने लोग सुनते हैं
0: जी।
2: और आपने विचार व्यक्त किया और हम कोशिश करेंगे कि और अधिक से अधिक कार्यक्रम एक पर एक कार्यक्रम बढ़कर लाएं और घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है
0: कि हम आज इस कार्यक्रम से विदा ले लें तो महिमा को और
2: राजेश पाठक को नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
4: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
5: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं दें।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉ मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
6: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
3: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
7: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और

0: क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रूपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, 2 others in ISIS-linked bioterror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period

0: श्रोताओं, उस ठंडी हवाओं के गीत ने तो वाकई वातावरण को थोड़ा सा ठंडा तो बनाया होगा, क्योंकि ठंडी हवाओं के गाने जब हम सुनते हैं तो ठंडक का एहसास होने लग जाता है। तो काश हम भी यही सोचते हैं कि जल्दी से इस तरह का कुछ मौसम आए अच्छा, और इस गर्मी से हम सभी को राहत मिले। गर्मी का जब प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर आना, ये सब आम समस्याएं हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हम इनसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात पानी की। गर्मी में हमारे शरीर में पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है, इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद ज़रूरी है। कोशिश करें कि हर एक दो घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर लें। इसके साथ ही नारियल पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, आम का पना, बेल का शरबत जैसे पेय पदार्थ भी हमारे शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं।
1: ए बाबू, ले लो ना नारियल।

तो श्रोता, हम बात कर रहे हैं गर्मी में हम क्या खाएं, क्या पिएं ताकि हमारे शरीर की तासीर थोड़ी ठंडी बनी रहे। बात है खान पान की, तो गर्मी में हल्का और सुपाच्य भोजन करें। ताजे फल जैसे तरबूज है, खरबूजा है, यानी पानी वाले फल, खीरा, ककड़ी का सेवन बढ़ाएं। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना खाने से बचें, क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाता है। ज़्यादा खाना, क्योंकि हर किसी का पाचन शक्ति एक जैसी नहीं होती है, तो अपने शरीर की पाचन शक्ति को देखते हुए आपको भोजन करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके शाम का भोजन जल्दी ले लें, 6 या 7 बजे के बीच ले लें तो बहुत ही अच्छा है, ताकि उसको पाचन में थोड़ी मदद मिले। और थोड़ा सा खाने के बाद आप शाम को टहलने ज़रूर जाएं, ताकि आपका पाचन दुरुस्त हो। और हल्की हल्की सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, रोटी थोड़ी कम खाइए। तो इस तरीके का अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे खाने का, तो आपको निश्चित ही स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो बात गर्मी की चलती रहेगी, सुनते हैं खाने की बात हुई है तो ये गीत।

तो श्रोताओं, खाओ पियो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर कि हमें कैसा खाना खाना है, हल्का खाना है और थोड़ा सा तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना है। हर व्यक्ति चिंतित है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बाहर निकलते ही धूप एकदम जैसे आक्रमण करती है। धूप से बचाव करना बहुत ज़रूरी है।

दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप बहुत तेज होती है, इसलिए इस समय बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना भी हो तो ज़रूरी भी हो तो सिर को ढक कर निकलें। टोपी, छाता या दुपट्टा इसका इस्तेमाल करें, साथ ही हल्के रंग के और ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हम बात कर रहे हैं आज गर्मी के मौसम में क्या सावधानियां बरतें। तो अगर किसी को तेज़ सिर दर्द है, जैसा कि आम तौर पर गर्मी में हो जाता है, तेज़ सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी या दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, तो ये लू लगने के संकेत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में तुरंत ठंडी जगह पर जाएं, खूब पानी पिएं और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, और ठंडे पानी से नहाना भी इसका एक कारगर उपाय है।

जी हाँ श्रोताओं, ठंडे पानी से तो ज़रूर ही नहाना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो नहाकर थोड़ा सा अपना टेम्परेचर कम हो जाएगा शरीर का भी। घर के अंदर भी ध्यान रखें कि कमरा हवादार हो, दिन में पर्दे बंद रखें और सीधी धूप अंदर ना आए। पंखे, कूलर, एसी का संतुलित प्रयोग करें। सावधानी में ही छुपी है हर मौसम की जीत, जो खुद का ध्यान रखे वही रहता है अजीत। गर्मी हो या सर्दी फर्क नहीं पड़ता, अगर जीवन में अपनाई जाए समझदारी की रीत। तो हमें उम्मीद है कि गर्मी से आप भी डरेंगे नहीं, बल्कि इससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। थोड़ी सी जागरूकता और सही आदतें आपको इस मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती हैं। इसी के साथ महिमा को दीजिए विदा और सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी दौर से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, और लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय के गाए मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल मालवीय के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, अब पेश है सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें।

इसरार अंसारी का कलाम अभी आप सुन रहे थे चंदन दास के स्वर में। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मा तलवलकर का गायन, राग है जौनपुरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पद्मा तलवलकर का गायन, राग था जौनपुरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे शाजापुर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शाजापुर जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कल दोपहर तक तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे, लेकिन दोपहर के बाद मौसम का रुख बदलने लगा। शाम को जिले के कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मौसम पर्यवेक्षक सत्येंद्र धनोतिया के अनुसार जिले में अगले दो दिनों तक दोपहर बाद आंधी तूफान, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। शाजापुर जिले में भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रगणक और पर्यवेक्षक डोर टू डोर पहुंचकर मकानों का सत्यापन और सूचीकरण कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्येक मकान पर निर्धारित नंबर अंकित किए जा रहे हैं, ताकि आगामी चरण में परिवारों की गणना व्यवस्थित ढंग से की जा सके। एसडीएम मनीषा वास्कले के अनुसार इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन आधारित प्रणाली से संचालित की जा रही है। शाजापुर जिले में रवि विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है। जिला कलेक्टर रिजु बाफना ने सभी केंद्रों पर भंडारण व्यवस्था, किसानों के बैठने, पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने कल शाजापुर जिले का दौरा कर बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शहरी, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति, मेंटेनेंस, उपभोक्ता सेवाओं और शिकायत निवारण व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने मझानिया स्थित 8.15 एमवीए की क्षमता और एबी रोड पनवाड़ी स्थित 13.15 एमवीए की क्षमता वाले सब स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने फीडरों, ट्रांसफार्मर और सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को रखरखाव और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में श्यामा गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्था तथा किसानों को ओटीपी के माध्यम से किए जा रहे भुगतान की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्र पर किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से कहा कि वे चिंता न करें, उनकी एक एक उपज खरीदी जाएगी, हमारी सरकार प्रत्येक किसान के साथ खड़ी है। उच्च शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर के मां शारदा सहंदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया। श्री परमार ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व क्लासरूम का है, उतना ही खेलों का होता है, इसलिए हमें हर विधा में भागीदारी करना आवश्यक है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा गांधी हाल शाजापुर में बीते दिनों लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं की साक्षरता और सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। विधायक श्री भीमावत ने लाडली उत्सव में सम्मानित की गई 40 बालिकाओं को विधायक निधि से 2500-2500 रूपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। इस आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, आशीष नागर और कक्षा 12वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में नवा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा रानी जैन और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नवीन वर्मा भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 50 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत नगरपालिका परिसर शाजापुर और आयुष विभाग के अंतर्गत बीते दिनों जिले के समस्त आयुष केंद्रों में की गई। जिला आयुष अधिकारी डॉ. गिरिराज बाथम ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामान्य योग अभ्यास के माध्यम से अधिक लोगों को योग से जोड़ना है। नोडल अधिकारी डॉ. सीमा बड़िया ने योग के महत्व को रेखांकित किया। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग के तहत पहला चरण 4 मई से 29 मई तक ऑनलाइन पंजीयन का रहेगा। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य विपुल परमार्थी ने बताया कि कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में प्रवेश उपलब्ध है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बीते दिनों की। कॉन्फ्रेंसिंग में शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। शाजापुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: नमस्कार, आदाब और स्नेह भरा अभिवादन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर और मैं हूं आपके साथ महिमा। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है MH हॉटलाइन। आपकी आवाज ही हमारी पहचान है, तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमसे। हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो लेते हैं पहला फोन कॉल, देखते हैं किसका है। हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते महिमा जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?

0: आप जाना पहचाना चेहरा देखा हाँ, मैं भंडारे बोल रहा हूँ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, नमस्कार भंडारे जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
0: आज हम आशा बस एक सुरीला गीत है फिर मेरे सनम का।
1: मेरे सनम फिल्म का गीत?
0: हाँ, ये दिल को कोने घबर आई है।
1: अच्छा अच्छा, ये
0: आ जाइए।
1: हाँ जी, बहुत ही
0: एक गाना मैं खासियत बताऊंगा आपको मैं कि इसमें आशा भोसले का आई ओ ई हंसना बहुत जोरदार इस गाने में।
1: हाँ हाँ,
0: और इसी गाने को मुमताज ने इतना सुंदर ढंग से प्ले किया है कि जो देखते बनता है, बस नकेला बना दिया गाना मुमताज ने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और पहले के गीतों की बात ही अलग होती थी जो मुर्कियाँ आशा जी लेती थी। मेरे ख्याल से शायद ही लता जी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं थी कि इतनी शिद्दत से किसी गीत को निभाया जाता था पहले।
0: बिल्कुल सही बात है, पर एक बात देखा गौर के किस नायिका को कौन सा गाना देना, ये ओपिनियर शंकर
1: बखूबी जानते थे। जी हाँ, तो और
0: रफी को भी आवाज, मोहम्मद रफी को भी आवाज उसी को मिलती थी जिनको प्रेरता था, यही बात देखा गया।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही, और आप तो काफ़ी जानकारी रखते हैं, हमेशा हमारे साथ साझा करते हैं अच्छी अच्छी फिल्मों से जुड़ी जानकारियों को। तो आपकी पसंद पर आज हम सुनवाते हैं आपको मेरे सनम फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। तो सुनिए आपके लिए ये गीत।

0: तो कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज में अनिल भंडारे जी की फरमाइश पर हमने सुनवाया। लेते हैं अगला फोन कॉल, देखते हैं कौन श्रोता है हमारे साथ। हेलो, MH हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं?

0: जी हाँ,
1: हाँ, क्यों सुनना चाहते हैं ये गीत, क्यों पसंद है आपको, बताइए।
0: एक तो इस गीत के माध्यम से मैं आशा जी को श्रद्धांजलि चाहूंगा, उसको
1: बिल्कुल,
0: तो ये गीत अच्छा भी लगता है।
1: हाँ। और क्या करते हैं आप?
0: मैं हम खेती बाड़ी करते हैं।
1: खेती बाड़ी करते हैं अशोकनगर में ही।
0: हाँ,
1: और
0: गांव में
1: रेडियो
0: रहते हैं
1: आप
0: हम।
1: कहाँ सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं क्या?
0: नहीं, रेडियो है मेरे पास।
1: रेडियो पे सुनते हैं आप, कब से
0: हाँ,
1: सुन रहे हैं इंदौर आकाशवाणी को?
0: इंदौर आकाशवाणी लगभग मुझे 2015-16 से सुन रहा हूँ मैं।
1: अच्छा, काफी समय हो गया, 10-11 साल हो गए आपको सुनते हुए।
0: जी
1: तो चलिए, सूर्य प्रताप जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत कुमार सानू आशा भोसले के साथ।

0: सजीव फोन इन प्रोग्राम एमएच हॉटलाइन। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं कामिनी दसवंती बोल रही हूँ, ठिकरी से, ग्राम जिला बड़वानी।
0: बड़वानी से कामिनी जी बोल रही हैं
1: जी? मैं ठिकरी गांव है, जिला बड़वानी है।
0: अच्छा अच्छा, बताएं कैसी गर्मी पड़ रही है बड़वानी में?
1: बहुत बहुत गर्मी दीदी, इधर तो ज्यादा ही तापमान बहुत ज्यादा रहता है।
0: अच्छा हाँ, इसीलिए हमने पूछा कि आप क्या बचाव कर रहे हैं गर्मी से वहाँ पर।
1: जी जी, बचाव ऐसा है कि बस दिन भर दरवाजा लगा के रहते हैं और ऐसे ठंडाई के लिए सब करते हैं, बाहर जाते हैं तो पानी वानी पी के जाते हैं और कपड़ा वपड़ा बांध बुन के जाते हैं, अपनी सुविधा कर जाते हैं।
0: अच्छा कामिनी जी, कौन सा गीत सुनेंगे हमारे इस कार्यक्रम में आज?
1: दो चार दिन पहले दादी बनी हूँ, इसकी खुशी मुझे बहुत है। मेरे घर गुड़िया हुई है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है, इसलिए मुझे वो गाना सुनना है, अनाड़ी फिल्म का। छोटी सी परी सी नन्नी सी।
0: अच्छा अच्छा, हाँ तो परी आ गई है आपके घर में?
1: हाँ जी जी जी।
0: अच्छा, क्या क्या स्वागत किया उसके आने के बाद?
1: उसका वेलकम इतना अच्छा किया।
0: हाँ
1: बढ़िया किया।
0: अच्छा
1: हाँ, वेलकम किया उसका मन।
0: तो आप उसके पास हैं क्या अभी इस वक्त?
1: जी जी, मैं उसके पास ही हूँ।
0: हाँ तो उसको आप ये अपनी आवाज में ये गीत सुनाइए ना एक लाइन, फिर हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे।
1: जी जी जी, वो मैं उसके पास ही बैठी हूँ।
0: बिल्कुल,
1: उसको मिलाया, वो पास में ही है मेरे।
0: गा के बताइए एक लाइन।
1: जी जी जी जी, रुको दो मिनट। कहाँ है मेरी गुड़िया बता? छोटी सी प्यार।

0: मुस्कुराती।
1: बहुत बढ़िया गीत गाया आपने अपनी परी के लिए, तो चलिए आपको बड़वानी में भेजते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी दौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हमारे नंबर्स बता देते हैं 2710223 और 2710224। लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, देखते हैं अगले श्रोता कौन है। हेलो MH हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: हेलो हॉटलाइन
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं कारूंडा छोटी सादड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, राजस्थान से बोल रहे हैं आप, नाम बताएं अपना।
1: रतनलाल सुथार।
0: रतनलाल सुतार जी, जी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: मैं गीत, पहले मैं गीत तो बताता हूँ। मैं हमारे गांव में भागवत की इसका भागवत गंगा बह रही है हफ्ते के लिए।
0: अच्छा, भागवत जी का आयोजन हो रहा है?
1: बिल्कुल जबरदस्त हो रहा है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। भागवत सुने तो फिर कहना ही क्या।
1: भक्तिमय हुआ हुआ है गांव।
0: हाँ, माहौल पूरा भक्तिमय बना हुआ है आपके आसपास।
1: जी जी,
0: हाँ तो बहुत अच्छी बात है। रतनलाल जी, गीत बताएं कौन सा सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता, और गाने का बोल है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम सुनाएंगे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है। और जब
1: नाम ले लूं मैं?
0: हाँ बिल्कुल लीजिए नाम।
1: हाँ, मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे हर दिल अजीज है कृष्णदा के रहने वाले उदयलाल जी आजना, मनोज जी आजना, और हमारी बेटियां हैं नया गांव केसरपुरा में, भारती सुथार, हिमांशु सुथार, पंकज जी सुथार, मनोज जी सुथार।
0: बहुत सारे लोग मिलकर रेडियो सुनते हैं।
1: रेडियो तो मैं बहुत पुराना सुनता हूँ। हाँ, ये समझ लो उस समय लाइसेंस बनते थे।
0: हाँ हाँ,
1: उस जमाने का।
0: हाँ, काफी पुराने श्रोता हैं आप। कितने साल हो गए लगभग आपको रेडियो सुनते हुए?
1: रेडियो सुनते हुए लगभग ये समझ लो अभी मेरी 76 की साल है, तो कम से कम इसमें से 8-9 साल निकाल लो जब से रेडियो सुन रहा हूँ मैं।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। मतलब इतना लंबा
1: अभी भी मेरे पास में 4-5 रेडियो पड़े।
0: अरे वाह, तो रेडियो के पक्के शौकीन है आप, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज
1: बहुत भारी, और मैं दिव्यांग हूँ मैम।
0: अच्छा अच्छा,
1: नहीं रेडियो के बिना रह नहीं सकता मैं बिल्कुल।
0: तो बहुत अच्छी बात है ना, जीवन जीने का इससे अच्छा साधन क्या है, गीत संगीत मनोरंजन रेडियो के साथ।
1: और चीज है कि सरकार के साधन दूसरे वायरलेस वगैरह फेल हो जाते हैं, लेकिन रेडियो फेल नहीं होता।
0: रेडियो फेल नहीं होता, बिल्कुल सही कहा। और अब तो हमारे पास मोबाइल ऐप आ गया है, तो उसके जरिए भी आप रेडियो सुन सकते हैं।
1: और ये मौसम है, इसमें बारिश वगैरह में ये रेडियो काम देता है, अगर सभी लाइनें फेल हो जाती तो रेडियो के जरिए तो जाती है।
0: हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि रेडियो हमेशा साथ रहता है और हमेशा हमारा मनोरंजन करता रहता है।
1: और कहीं पे भी पहाड़ी पे चले जाओ, ऊंचा से ऊंचा, तो फिर भी ये रेडियो चलेगा,
0: रेडियो चलेगा, आपका नेटवर्क नहीं फेल होता है। तो बहुत अच्छी बात है। रतनलाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप चल रहा है और आप सभी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं फोन कॉल्स के साथ, अपनी पसंद के गीत के साथ। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो हेलो आकाशवाणी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं नवग्रह नगरी से मीना दसौंधी बोल रही। दीदी
0: मीना दसौंधी जी कहाँ से?
1: नवग्रह नगरी खरगोन।
0: खरगोन से जी, बताएं कैसी हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया हूँ। आप रोज मैं हॉटलाइन सुनती हूँ, फोन लगाती हूँ पर लगता ही नहीं। आप बड़ी मुसीबत परेशानी से आज लगाया दीदी, बहुत प्रयास करने के बाद।
0: हमारे लगभग सभी श्रोताओं का ये कहना है कि हमारा फोन कॉल बड़ी मुश्किल से लगता है। चलिए आप भाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में आपको मौका मिल गया।
1: बिल्कुल दीदी, कोशिश करना नहीं बंद करी मैंने, कोशिश कामयाब होती है।
0: हाँ बिल्कुल, कामयाब तो होती है। बताएं कौन सा गीत सुनेंगी आज इसमें?
1: दीदी मेरी बहन के बेटे की या बेटी का आगमन हुआ है लक्ष्मी का, तो मुझे उस खुशी में गाना सुनवा दीजिए कभी कभी फिल्म का।
0: अच्छा कौन सा गीत?

0: परी।
1: बिल्कुल मीना जी, तो अभी जिन्होंने गीत सुना था वो कौन है आपके?
0: वो मेरी छोटी बहन है दीदी, उन्हीं के यहाँ बेटे के यहाँ बेटी आई
1: हाँ,
0: है।
1: तो आपने भी ऐसा ही गीत चुना, तो इसके पीछे मेरे को लगा कि कुछ राज तो है।
0: दीदी बहुत खुशी है, पहले हमारे यहाँ बहन है लेकिन हमारे बच्चों में अपने अपने ही समझते हैं, किसी का ऐसा नहीं कि बहन का बेटा है कि
1: चलिए,
0: भाई का
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी बात है ना, और लक्ष्मी के आने की खुशी जाहिर की आपने, ये बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी
0: दीदी,
1: बात
0: वो
1: है।
0: तो मतलब सौभाग्य से आती है ना लक्ष्मी तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य से ही लक्ष्मी मिलती है, और सौभाग्य से ही आज आपका फोन कॉल भी लगा है। तो लीजिए अपनी पसंद का गीत सुनिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो,
1: हेलो दीदी जान।
0: हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा रेडियो सेट से दूर होके बात करिए।
1: जी, आवाज आ रही है।
0: हाँ बताएं, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं बता दूँ, कहते हैं रंग हजारों हमने देखे और रंग कोई ना भाए, और प्यार का रंग है सबसे प्यारा, दिल से कभी न जाए।
0: बिल्कुल, प्यार का रंग तो होना ही चाहिए सबसे प्यारा।
1: और खुशबुओं के साए में क्या क्या गुल बूटे हैं, और प्रेम रंग सच्चा है बाकी सब रंग
0: झूठे
1: झूठे हैं। दीदी
0: हैं
1: जान मैं
0: प्रेम।
1: बता दूं, अब हिंदुस्तानी कलाकार ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान ईदम गाता अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ, मजनू दीवाना।
0: अरे मजनू दीवाना जी, आपका पहले भी फोन कॉल लग चुका है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, पहले तो अपने गाने फिल्म का नाम बताइए और गाने के बोल बताइए।
1: हाँ फिर थोड़ी सा भाभी जान से बात कर लेना, क्योंकि लैला दीवानी इनसे बात नहीं होगी तो
0: हाँ
1: हमारे घर में क्या खराब हो जाएगा।
0: तो आप पहले अपना गीत तो बताइए मुझे पहले।
1: हाँ फिर उनका नाम है दीदी जान, कुदरत का कानून।
0: हाँ कौन सा
1: और इस
0: गीत?
1: गाने में हम लोग तहलका मचा देते थे, इतना नाचते थे झूम झूम के अलका याग्निक जी की आवाज में। और गीत के बोल हैं, मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे शराब के प्याले, जब
0: वाह भाई,
1: जहां देखे मुझे मर जाए दिलवाले,
0: वाह।
1: मर
0: देखिए
1: जाए
0: थोड़ा सा,
1: मर जाए दिलवाले। नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप दोनों मिलके रेडियो सुनते हैं, दोनों मिलके गाना भी गाते हैं।
1: अरे अब दीदी जान, हम दोनों लोग अगर ना गुनगुनाएं और रेडियो ना सुने और कोई भी काम करते हैं मिलजुल के करते हैं। अभी हम जो है तो दाल बना रहे थे, चावल बना रही थी, फिर ये शर्ट बनाती हैं, हम पैंट बनाते हैं।
0: अच्छा, चलिए
1: आपसे
0: बहुत
1: कितनी
0: अच्छी, आप
1: बार
0: दोनों
1: मिलकर
0: की
1: सारे
0: गाड़ी
1: काम मिलजुल के अगर ना करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी हम दोनों की।
0: तो दोनों जने मिलके काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी
1: जी
0: तरह से जीवन का पहिया चलते रहना
1: आपकी
0: चाहिए।
1: आवाज आ कट रही दीदी जान जी, बता दो।
0: हाँ
1: और फिर इंदौर के तो हम मजनू दीवाने हैं,
0: बिल्कुल, आप इसी तरीके से दीवाने बने रहिए।
1: और आपकी आवाज बता दूं दीदी जान कि भोपाल में जो है सुनीता सिंह, और लखनऊ में दीप्ति जोशी, और आपसे बढ़कर कोई अनाउंसर नहीं। आपकी आवाज बहुत ही स्वीट है, बहुत ही शबनम है।
0: चलिए बहुत अच्छी, शुक्रिया आपको इस बात के लिए। और देखिए
1: जी
0: आपकी पसंद का गीत आ रहा है आप तक, है ना, सुनिए आप दोनों मिलकर।
1: जैसे ही प्ले करेंगे हम ठुमका लगाएंगे।
0: बिल्कुल लगाइए, ठुमका लगाने के लिए तैयार हो जाइए। जी
1: नमस्कार दीदी जान,
0: नमस्कार
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: कार्यक्रम है MH हॉटलाइन। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो MH हॉटलाइन प्रोग्राम। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी देवास से बोल रही हैं। नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू, आपके क्या हाल
0: चाल? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। आप श्रोताओं से जुड़े हैं और इस वक्त अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: मूवी का नाम है लुका छुपी और गाने के बोल हैं मैं देखूं तेरी फोटो।
0: लुका छुपी फिल्म का गीत सुनेंगी आज
1: जी।
0: किसका फोटो देखना चाह रही हैं बताइए।
1: मुझे तो अपनी फोटो अच्छा लगता है, ये तो हम सबके लिए रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा, अपने से बेहतर कुछ नहीं है, है ना भाई?
1: हाँ बिल्कुल।
0: हाँ तो अपने ही फोटो देखिए, अपने कोई आईने में देखिए, सबसे अच्छी बात ये। और क्या पसंद करती है अपने बारे में आप,
1: मतलब
0: आप खुद के बारे में क्या पसंद करती?
1: देखिए मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने ड्रेसेस पहनी है वो बेस्ट है, मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
0: देखिए कितनी अच्छी कितनी बड़ा संदेश दे दिया आपने सबको कि जो हमारे पास है हमको उसी में खुश रहना चाहिए, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
1: और जी, लेकिन मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ
0: जी।
1: मेरे घर में चार आईने लगे हुए हैं, ठीक है।
0: हाँ,
1: अब उसमें एक आईना ऐसा है कि जिसमें बड़ा मतलब अजीब सा फेस दिखता है, बाकी तीन आईने में एक जैसे दिखते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता आईने में भी डिफरेंस रहता है क्या?
0: हाँ कई बार लेंस का रहता है डिफरेंस।
1: हाँ मतलब मैंने सोचा मैं पूछूंगी, जरूर वीडियो पर शेयर करूँ।
0: कई आईने तो ऐसे भी होते हैं जिसमें आप पतले दिखते हो, तो मोटे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो आज तो मैं पतला हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो आप हाँ ऐसा हो जाता है लेंस की वजह से कभी कभी, पर चलिए अच्छा है, अपने आप को देख कर खुश हो जाइए, ये सबसे अच्छी बात है, है ना
1: जी। और ये सॉन्ग आपको डेडिकेट रहेगा।
0: अरे मुझे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए आपने गीत चुना।
1: कम से कम मुझे याद तो करेंगे।
0: बिल्कुल, अब आईने में देख के आपको जरूर याद करूंगी। तो रानू जी सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो MH हॉटलाइन
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ।
0: इंदौर से बोल रही हैं
1: जी,
0: नाम बताएं।
1: जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, बताएं कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज कार्यक्रम में?
1: जी, मुझे चांदनी पिक्चर की सुनवाती है।
0: चांदनी फिल्म।
1: पानी लेके सीए आग लगाई,
0: पर्वत से काली घटा, बिल्कुल सुनवाएंगे। ये गीत क्यों पसंद करती हैं आप?
1: बहुत अच्छा लगता।
0: बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: हाँ, चांदनी फिल्म देखी थी आपने?
1: जी।
0: चांदनी फिल्म की कुछ खासियत बताएंगी आप, क्या अच्छा लगा इस फिल्म में आपको?
1: फिल्मों में हीरो अच्छे थे।
0: हीरोइन अच्छी थी, कहानी अच्छी थी।
1: हीरोइन तो अच्छी अच्छी है, श्रीदेवी जी।
0: हाँ।
1: और ऋषि कपूर भी।
0: अच्छा जीनत जी, ये बताएं क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ हैं मैम।
0: हाउसवाइफ हैं। और रेडियो सुनती हैं हमारा?
1: जी रेडियो।
0: आकाशवाणी इंदौर या और भी कहीं से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब सुनती हूँ।
0: अच्छा, तो आपका फोन कॉल लगा और आपने अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाया। सुनिए, हम आपको पहुंचाते हैं ये गीत कार्यक्रम में। हाँ, फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमें गीत थोड़े कम बजाने पड़ते हैं क्योंकि आप लोगों के फोन कॉल्स हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा शामिल किए जाएं। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो, एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं हीरू बाग से बोल रही।
0: हीरू बोल रही हैं?
1: हीरू पड़ियार बाग से।
0: हीरू पड़ियार बाग से, धार से बोल रही हैं?
1: बाग जिला धार लगता है।
0: हाँ हाँ हाँ, धार जिले से बोल रही हैं। बताइए क्या सुनेंगी आज इस कार्यक्रम में?
1: वो दिल दीवाना अपने पगला है समझाने से समझते नहीं, वो वाला गाना हमको
0: तो गाना आपने पसंद किया है तो उसके बोल तो बताइए हमें अच्छे से।
1: मैम इतना तो मालूम नहीं है, पर ये गाना हम
0: गाना सुनते हैं, बस
1: सुनते रहते हैं। हाँ, सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, फिल्म का नाम मालूम है आपको?
1: फिल्म का नाम नाम तो नहीं मालूम, पर आप देख।
0: हाँ, मैं देख रही। मैंने प्यार किया फिल्म का गीत है ये।
1: हाँ,
0: दिल दीवाना गा के बताएंगी?
1: हाँ, मैं कोई आता नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं, क्या करती हैं वहाँ पर, क्या करती हैं आप?
1: फुटबॉल पे हम यहाँ पे रोड पे दुकान है हमारी छोटी सी। तो देती हूँ चॉकलेट बिस्कुट लीड पेन।
0: अच्छा,
1: यहाँ पे।
0: हाँ, अच्छा, धार में। हाँ, तो वहाँ पर आप छोटी सी दुकान चला रही हैं अपनी।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है कि आप स्वावलंबी हैं और अपना एक छोटा सा अपना एक
1: जीवन सुधार रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, नहीं सही बात है, औरतों को तो आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ
1: सही मैम,
0: है ना, जीविका के अर्जन।
1: धतूरा है, मैं धतूरे की रहने वाली हूँ, मेरे बाग ससुराल मेरा बाग में है।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो आप पहले से काम कर रही हैं और इस तरीके से अपने घर को चला रही हैं।
1: हम किसान लोग हैं, नहीं हम तो किसान की बेटी हैं, नहीं कोई वाने बामन की तो है नहीं, तो अपन को शर्म आती है।
0: नहीं नहीं, आजकल तो किसी को कोई काम करने में शर्म नहीं है, हर कोई कुछ भी काम कर रहा है, बस काम होना चाहिए। हाँ, आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में, सुनिए।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। लेते हैं कार्यक्रम में आखिरी फोन कॉल। हेलो, एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: जी नमस्ते मैम, मेहमान जी को नमस्कार दो।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, सीनगा जिला महोबा से।
0: अच्छा, महोबा से बोल रहे हैं, पहले भी आपसे मेरी बातचीत हो चुकी है
1: जी।
0: हाँ बताएं, कैसा चल रहा है मौसम वहाँ का?
1: अभी थोड़ा आंधी पानी सा आ जाता है, थोड़ी पानी सुनपना जाता है, आंधी चल जाती है तो ठंडा है, थोड़ी ज्यादा गर्म नहीं है।
0: तो लगभग सभी जगह मौसम एक जैसा है
1: जी।
0: और बताएं, रेडियो में कौन कौन से प्रोग्राम सुन रहे हैं आजकल आकाशवाणी इंदौर के?
1: जी केवल यही सुनता हूँ, फोन इन, चाहे जहाँ से
0: फोन इन प्रोग्राम ही सुनते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा अपराधी।
0: अपराधी फिल्म का कौन सा गीत?
1: ये प्यार बड़ा बेदर्दी है।
0: अच्छा, ये किसके लिए सुनना चाह रहे हैं गीत?
1: आपके लिए।
0: अरे ऐसा क्यों भाई, आपका कोई भी होगा उसके लिए आप? हाँ बिल्कुल, उसके लिए सुनवाइए ये गीत
1: जी। समझ जाएगा जिसके लिए है।
0: अच्छा, तो महोबा में। और बताइए, और आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं इस वक्त आप? केवल एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम
1: जी, अभी तो एमएच हॉटलाइन केवल।
0: और दूसरे आकाशवाणी केंद्र भी सुनते हैं
1: जी? छतरपुर है पास में, तो उसमें बनना सुन लेते हैं सुबह 6 बजे। भोपाल सुन लेते हैं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश लग जाएगा अभी 11 बजे।
0: तो आप मोबाइल पे सुनते हैं कि रेडियो पे सुनते हैं?
1: रेडियो खराब हो गया, पहले रेडियो पे सुनते थे, अब मोबाइल से सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो बहुत सारे लोग मोबाइल पे जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा हमको मिला है कि बहुत सारे पूरे भारत देश से हमारे पास फोन कॉल्स आने लगी हैं और लगभग सभी जगह के श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। बेहद खुशी होती है और हम उनकी फरमाइशों को पूरा करते हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है। इसी तरह से आप सभी अपना प्रेम बनाए रखिए, सुनिए अपने पसंद का गीत।

0: तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें पत्र द्वारा जरूर सूचित कीजिएगा। और अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। आज जिन भी श्रोताओं के फोन कॉल्स लगे उन सभी का एक बार फिर शुक्रिया। इसी तरह का प्रेम बना के रखिए। आज के इस प्रोग्राम से महिमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: 88.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, साथ जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। जब कोई साथ होता है तो रास्ते आसान लगते हैं, खामोशियां भी बातें करने लगती हैं और दिल मुस्कुरा उठता है। कभी कोई अपना एक सच्चा सा दोस्त, कभी एक अच्छी सी किताब, तो कभी मनपसंद काम। ये छोटे छोटे से साथ ही तो हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं, उसे जीने लायक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साथ ऐसा भी है जो बिना कुछ कहे दिल की हर भावना को छू लेता है, जो उदासी में सुकून और खुशियों में रंग भर देता है। वो साथ है संगीत का। संगीत जो कभी आपका हमसफर बन जाता है, कभी आपकी आवाज और कभी आपकी कहानी बन जाता है। तो फिलहाल एक ऐसा ही खूबसूरत सा, सुरीला सा समय हम आपके लिए संजो रहे हैं संगीत के साथ, आपकी ही पसंद पर, जहां आपके दिल की धड़कनों से जुड़ेंगे आपके पसंदीदा गीत, जहां आपकी एक कॉल बना देगी इस महफिल को और भी खास और भी खूबसूरत। तो सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, फोन करें गीत सुने। मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: नमस्कार फूलचंद जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लगता है कि सुनीता सिंह जी बोल रही हैं आप।
0: हाँ जी। कैसे हैं और क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है सुनीता जी, बहुत अच्छे हैं। और बस आपका कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने का आनंद ले रहे हैं।
0: तो ये बताइए, गीत तो हम सुनवाएंगे आपको, मौसम के क्या हाल हैं, गर्मी कैसी है, उसके तेवर कैसे हैं?
1: मौसम तो सुनीता जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में बहुत तेज जो है, अभी रात्रि में बहुत पानी गिरा और बहुत तेज आंधी आई। तो उस आंधी में जो है काफी पेड़ भी उखड़ गए, पानी भी गिरा है, तो नुकसान तो है ही है। मतलब जो है खेती किसानी का तो खैर नहीं है, खेती वो निकल गया है गल्ला, लेकिन फिर भी पेड़ पे जो पेड़ लगे हैं वो उखड़ गए, खम्भे गम्भे टूट गए, तार लाइन जो है खराब है सब बिल्कुल। वही और बता दें कि हमारे यहाँ खजुराहो का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि खजुराहो में मंदिर जो बने हैं ना, पत्थर के मंदिर बने हैं, तो शायद अगर आपने देखा हो कभी खजुराहो।
0: देखा है।
1: हाँ, तो खजुराहो के मंदिर जो है इतनी कलाकृतियां हैं और पत्थर की बने हैं, तो वहाँ जो है और आसपास पहाड़ भी हैं बहुत सारे, तो ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है,
0: तो इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। तो अपना ख्याल रखिए। और फूलचंद जी, अभी ये बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: सुनीता जी, फिल्म का नाम है लोहा।
0: लोहा, गीत के बोल।
1: गीत के बोल है कि तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, जिसने पैदा किया वो बचाएगा।
0: तो पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति। हाँ, चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, नाम बताएं।
1: हरदयाल जाटा, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: हरदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बढ़िया जी, आप कैसी मैडम जी?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। रेडियो लगातार सुना जा रहा है, इसका ये मतलब है ना?
1: हाँ जी।
0: कितनी देर चलता है आपका रेडियो?
1: ये मान लीजिए कि सवेरे से लेकर शाम तक चलता है।
0: और क्या करते हैं आप
1: इस टाइम? तो अभी शादी में बिजी है, आजकल शादी चले, शादी में घूम रहे हैं।
0: शादी में व्यस्त है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
1: हाँ।
0: देखिए, गर्मी बहुत तेज है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके खाना पीना करना, बाहर निकलना है ना, थोड़ा सा
1: हाँ जी,
0: एहतियात
1: हाँ
0: बरत
1: जी।
0: के अपना सब काम करना चाहिए। तो बताइए, आज
1: ओके।
0: कौन
1: राजा
0: सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म, कभी दिन बनूंगी राजा की मैं रानी।
0: किसी दिन बनूंगी राजा की मैं रानी, राजा फिल्म का गीत। तो चलिए,
1: हाँ
0: आपकी
1: जी।
0: पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत
1: नमस्ते
0: धन्यवाद,
1: मैडम जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, मान के चलिए कि अब बहुत डर लगता रहता है आकाशवाणी भोपाल में फोन करने के लिए।
0: क्यों क्यों क्यों, डरने की क्या बात है इसमें?
1: इसलिए कि जब देखो, जब आप लोग इतना बड़ा अंकुश लगा दिए हैं कि हम लोग डरते रहते हैं, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है मैडम जी। इतना
0: देखिए,
1: बड़ा पाबंदी और अंकुश ना लगाएं।
0: नहीं, ये डरने की बात नहीं है। आप बस एक हफ्ते का इंतजार करके बेधड़क होकर फोन कीजिए, आपका फोन उठाएंगे, शामिल
1: अरे मैडम जी, एक
0: करेंगे।
1: हफ्ते का 15-16 दिन हो रहे हैं, ये मान के चलिए, कहते हैं दिल क्या लगाया है आपसे, दिल क्या लगाया आपसे, जीना दुश्वार है। इतना नहीं किसी से जितना मैडम जी आपसे और आकाशवाणी भोपाल से मेरा प्यार है।
0: नाम बता दीजिए।
1: कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: भाई इतना दुखी मत होइए। देखिए, सिर्फ इसलिए एक अंकुश लगा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हों और आपका भी जो श्रोता परिवार है वो बड़ा हो, है ना,
1: नहीं
0: इसलिए
1: तो
0: फोन।
1: हमें तो मैडम जी कोई दुख नहीं है, हम तो सोचते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे, और फोन लगे अथवा ना लगे, सभी श्रोताओं के फोन लगे, हम ही सभी श्रोताओं से दिल से जो है प्यार करते हैं। और कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियो चारी, तो धीरज से काम लेना ही चाहिए।
0: तो इस धीरज के साथ आपने काम लिया है और कुछ दिन रुक कर आपने फोन किया है। बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हाँ मैं बता रहा हूँ, गीत भी बता रहा हूँ, थोड़ी अपनी भाभी जी से बात कर लो, अब जान लगाना बंद कर दिया हूँ, भाभी जी से बात कर लो।
2: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, नमस्कार, कैसी हैं?
2: अरे बहुत अच्छे मैडम जी, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: ये
0: और
1: थोड़ा दुबली पड़ गई है आपसे बात
2: आपसे
1: नहीं।
2: बात नहीं भाई, बहुत दिन से दीदी जान आपसे नहीं भाई बात।
0: इसलिए दुबली हो गई है? अरे ऐसा
2: जी आज हो
0: नहीं।
2: गई तो एकदम बाहर आ गई।
0: तो चलिए,
1: और गाना बता दूं जल्दी से? अरे जल्दी से काय को, अब बात हो ही गई तो बात ही मायने रखती, गाना हमारा भले काट दीजिएगा, बीवी हो तो ऐसी।
0: बीवी हो तो ऐसी।
1: हाँ उसका गीत है मेरे दू

0: सामने आ जा। नमस्कार मैडम जी।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो आपके दूल्हे राजा तो आपके सामने ही हैं। फिलहाल आपकी पसंद का गीत हम आप तक भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है ये। हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
1: जी मैं मैडम जी सिंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ। मैडम जी,
0: देवीदास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ मैडम, मैं बहुत बढ़िया हूँ मैडम जी। और अभी जरा गर्मी का आनंद चल रहा है तो मैं सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है तो जो पशु पक्षी है उनके लिए कुछ छत के ऊपर दाने और पानी की व्यवस्था अवश्य करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि हम तो अपना ख्याल रख सकते हैं लेकिन पशु पक्षी का ख्याल भी हमें ही रखना है, वो खुद अपना ख्याल कैसे रखेंगे, है ना?
1: तो आपका ख्याल कर रखते हो, उनका भी ख्याल रखना जरूरी है मैडम जी।
0: जी जी, बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी संदेश आपका, अपना भी ख्याल रखें, गर्मी से बचें और पशु पक्षियों के लिए कुछ दाना और पानी की व्यवस्था हम जरूर करें।
1: तो मुझे विश्वास है श्रोता मेरी बात का पालन करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो अपील है हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंची है। अब आप ये बताएं कि गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: जी मैं वो फिल्म का नाम है रोटी।
0: रोटी,
1: गीत के बोले पब्लिक ये सब जानती है।
0: ये पब्लिक है, ठीक है। चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है, मैं महर्षि गर्ग श्रीनगर जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: महर्षि गर्ग महोबा से, क्या उम्र है आपकी? छोटे लग रहे हैं आवाज से आप।
1: हाँ।
0: क्या उम्र है आपकी, किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: सिक्स्थ क्लास में।
0: सिक्स्थ क्लास में, ओहो। और रेडियो का शौक रखते हैं, घर में सब सुनते हैं क्या रेडियो?
1: नहीं, हम और पापा सुनते हैं बस।
0: तो पापा के साथ आप सुनते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं महर्षि?
1: इंदौर भोपाल।
0: इंदौर केंद्र के कार्यक्रम, भोपाल केंद्र के कार्यक्रम। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप रेडियो से अपना प्रेम रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। रेडियो लगातार सुनिए, मनोरंजन तो होगा ही, आपका ज्ञानवर्धन भी होता है ना? कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: दीवाना पिक्चर का।
0: गीत के बोल बताइए।
1: सोचेंगे तुम्हें प्यार करें।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की आपने। तो महर्षि, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और रेडियो से अपना साथ भी बना कर रखिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से सुनीता दीदी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: मांगीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या बात है,
1: जी
0: आपका अंदाज ही अलग होता
1: बहन जी,
0: है।
1: और आपकी आवाज सही पहचान जाते हैं। हम भी कॉलर भी आपकी आवाज सही पहचान जाते हैं कि हमारी बहन जी आ गई सुनीता जी। और
0: तो
1: अच्छा लगता है आप जब प्रोग्राम पेश करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी कॉलरों को,
0: जी,
1: सब खुश रहती हैं, आप आती हैं तो सब खुश रहते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मांगीलाल जी,
1: जी,
0: क्या हाल चाल है, मौसम के क्या हाल
1: हाल
0: है?
1: चाल तो कुछ नहीं है, बढ़िया है। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बदल हो जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, आंधी तूफान चल जाता है 2-4 दिन से।
0: और फिर
1: ऐसा ही
0: तेज
1: मिला
0: गर्मी।
1: जुला, मतलब ये गर्मी से राहत है। कहने का मतलब जो है कि 2-4 रोज से गर्मी नहीं पड़ रही, थोड़ी नमी बनी हुई है, तो बढ़िया राहत मिल रही
0: लेकिन
1: है, ठंडक
0: ध्यान ये
1: मिल
0: रखना
1: रही
0: है कि जैसे ही तेज गर्मी होती है तो सुबह 11 बजे
1: है।
0: से
1: जी
0: लेकर शाम को 3-4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, है ना। कोशिश करें
1: आ
0: कि बाहर ना निकलना हो, और अगर
1: जी
0: निकलें तो सीधे

0: धूप के संपर्क में ना आए, नहीं तो लू लग सकती
1: जी
0: है। तो मांगीलाल जी, मौसम का तो आपने हाल बताया ही, अब आप ये
1: जी
0: बताएं कि आप गाना कौन सा सुनेंगे?
1: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा धूल का फूल।
0: धूल का फूल। अच्छा,
1: जी,
0: गीत
1: और
0: के बोल।
1: गाने के बोल हैं, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, बपा कर रहा हूँ, बपा चाहता
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत, महेंद्र कपूर और
1: हूँ।
0: लता मंगेशकर की आवाज में। बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बात करके मांगीलाल जी, बहुत ही प्यारे से
1: जी
0: गीत की आपने फरमाइश भी की
1: जी
0: आपके
1: अच्छा,
0: साथ
1: मैं
0: मिलकर।
1: तुमको याद कर सकता हूँ बहन जी?
0: हाँ, जल्दी से जी।
1: बेटा सिंह यादव जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, इन सभी को यह गाना डेडिकेट रहेगा बहन
0: बहुत अच्छी बात, तो आप सभी
1: जी।
0: दोस्तों तक हम भेजते हैं ये गीत। आपने हमें फोन किया
1: जी
0: मांगीलाल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैडम जी, जिंदगी में पहली बार फोन लगा है मेरा आकाशवाणी भोपाल पर।
0: ओहो
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में। जी मैडम
0: जी जी जी, नाम तो बता दीजिए, बहुत खुश हैं आप।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम बापू छितीपुर, ग्राम पंचायत छितीपुर, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपका रेडियो का नियमित श्रोता मित्र सिरनाम सिंह रजक।
0: अच्छा
1: जी जी मैडम जी,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम सिरनाम जी। हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैडम जी आकाशवाणी के जितने कार्यक्रम सभी सुनता हूँ मैडम जी मैं तो।
0: तो पसंदीदा, सबसे अधिक पसंदीदा कौन सा कार्यक्रम है?
1: जी फोन करेंगे सुने सुनता हूँ पार्टी।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है कि गीत संगीत में आपकी रुचि है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है आगे की सोच, तो गीत के बोले सपना हो सपना हो सपना, मुझे बना ले अपना, शहर में क्या रखा है गोरी, गांव गांव में आके बसना, ओ मेरी प्यारी सपना।
0: बहुत ही खूबसूरत आपने गाया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: मैडम जी कुछ शुभ विचार है?
0: हाँ जी
1: पेश करना चाहता हूँ शुभ विचार।
0: अच्छा अच्छा जी बिल्कुल।
1: छल करोगे छल मिलेगा, छल करोगे छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से, अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा।
0: बहुत अच्छी बात। तो छल कपट छोड़कर सच्चाई का जो रास्ता है उसको अगर हम अपनाते हैं तो जिंदगी हमारी बहुत खुशनुमा बीतती है। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से गुनगुनाया और एक अच्छा सा विचार रखा, हमें बहुत अच्छा लगा सरनाम जी आपसे बात करके। जुड़े रहिएगा हमसे, रेडियो से ये प्रेम बनाकर रखिएगा, आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: थैंक यू।
2: सपना

0: हेलो,
1: हेलो,
0: अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं?
1: जसराम जाटव बोल रहे हैं,
0: जसराम जाटव जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला सिकरी से।
0: शिवपुरी से। कैसे हैं जसराम जी?
1: हाँ, बहुत बढ़िया है मैडम।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस मैडम कुछ नहीं, गर्मी पड़ रही है तो घर पे ही बैठे हैं हम लोग।
0: तो आप क्या सावधानियां बरतते हैं गर्मी के इस मौसम में बचाव के लिए?
1: बचाव के लिए क्या मैडम, ठंडी चीजों का उपयोग करना चाहिए।
0: हाँ, तरल चीज़ों का है ना, डिहाइड्रेशन ना हो,
1: हाँ
0: इसलिए हमें बहुत पानी पीना चाहिए और जो रसीले फल हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, है ना?
1: हाँ हाँ हाँ मैडम,
0: जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल रखते हैं। और जाहिर सी बात है, बाहर निकलते होंगे तो ढक कर निकलते होंगे, पेट भर पानी पी कर निकलते होंगे, है ना?
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: मैम,
0: ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं तो मौसम का विपरीत असर गर्मी का नहीं पड़ता है। तो
1: हाँ
0: जसराम
1: हाँ
0: जी, बताएं आप कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: कयामत फिल्म का,
0: कयामत फिल्म का गीत। कौन सा गीत?
1: वो लड़की बहुत याद आती है।
0: वो लड़की बहुत याद आती है। तो चलिए, आपकी
1: हाँ
0: पसंद का
1: मैम,
0: गीत आप तक भेजते हैं। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे?
1: जी मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: मैडम मैंने तो पहली बार लगाया तो मतलब कई बार, लेकिन लगा नहीं, आपसे बात नहीं हो पाई।
0: ओहो, तो आज
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है आपका
1: जी पहली बार
0: तो।
1: फोन लगा है। कार्यक्रम आपका हम रोज सुनते हैं,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: ध्यान
0: हाँ
1: से।
0: क्या बात है, चलिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका फोन लगा, आपसे बात हो रही है। क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं कारपेंटर हूँ,
0: अच्छा, और काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता होगा।
1: रेडियो सुनता हूँ जब मैं घर पर रहता हूँ तो डीटीएच के माध्यम से सुनता हूँ,
0: हाँ,
1: और अगर कहीं साइट पर निकल जाए तो काम पर तो अपने मोबाइल ऐप EIRF के माध्यम से
0: बहुत अच्छी बात है, तो रेडियो पल पल साथ रहता है
1: पल पल साथ। दोस्तों
0: ना।
1: जब तक घर पे है तो बराबर चालू रहता है, और बाहर निकल जाए तब भी चालू रहता है।
0: हाँ।
1: कोई कार्यक्रम आपका मिस नहीं करती, और आपका कार्यक्रम जबलपुर आकाशवाणी से भी आता है तो उस पर भी सुन लेती हूँ
0: क्या बात है।
1: जी।
0: तो मनोज जी, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि रेडियो को पल पल आप साथ रखते हैं और गीत संगीत का शौक है, जाहिर सी बात है। तो कौन सा गीत आज सुनेंगे बताइए?
1: आज उमराव जान का सुना दीजिए मैडम, इन आंखों की मस्ती।
0: उमराव जान का, वाह क्या बात है, इन आंखों की मस्ती के
1: बहुत ही
0: मस्ताने
1: अच्छा
0: हजारे
1: गाना
0: हैं,
1: लगता है मैडम मुझे,
0: बहुत ही
1: आता है
0: खूबसूरत
1: सीता
0: गीत।
1: साहब आते हैं पाए।
0: हाँ, आशा जी की आवाज में ये गीत है। हालांकि आशा जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन
1: जी जी
0: उनकी आवाज
1: और
0: हमेशा हमारे साथ रहेगी।
1: जी और मैं तो मैडम मैं इतने मतलब आकाशवाणी सुनता हूँ कि मैं आवाज से पहन जाता हूँ किसी किसी आकाशवाणी केंद्रों की,
0: हाँ
1: कौन से उद्घोषक से बात हो रही है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: आपसे
0: जी
1: मेरी पहली बार बात हुई है
0: हाँ
1: थोड़ा पहचान नहीं पाया।
0: कोई बात नहीं, आप लगातार सुनते रहिए, ये दोस्ती बनाकर रखिए आकाशवाणी के साथ। हमें बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके, आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

तो श्रोताओं, संगीत वो एहसास है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। कभी ये हमारी यादों का हिस्सा बन जाता है तो कभी हमारी भावनाओं की आवाज बन जाता है। और शायद यही कारण है कि जीवन के हर पल में, जीवन की हर परिस्थिति में संगीत अपनी एक खास जगह बना ही लेता है। तो श्रोताओं, आज आपकी पसंद से हमने ये महफिल सजाई। ये महफिल हमें तो अच्छी लगी ही, जाहिर तौर पर आपको भी अच्छी ही लगी, क्योंकि इसमें शामिल थी आपकी ही पसंद। अब इस महफिल को यहीं विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके दिल में अपनी एक प्यारी सी छाप छोड़ गया होगा। चलते चलते आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को सुबह 10:30 बजे। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड 0755। जुड़े रहिएगा हमसे, आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। बस एक छोटी सी गुजारिश कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, वो एक सप्ताह के बाद ही दोबारा कॉल करें, ताकि जो हमारे दूसरे श्रोता हैं, उन्हें भी मौका मिले इस कार्यक्रम में शामिल होने का। तो श्रोताओं, आपके लिए यही कामना कि संगीत का ये साथ आपके जीवन में सदा यूं ही बना रहे, आपका जीवन चहकता महकता और खिलखिलाता रहे। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को और असम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मंत्रिपरिषद ने कल मिशन वात्सल्य

के लिए 606 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये योजना प्रदेश में बेसहारा, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए संचालित की जा रही है। प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य के लिए MOU किया गया है, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से लोगों को उनके क्षेत्र में ही निःशुल्क जाँच, उपचार और डॉक्टरों से टेली परामर्श की सुविधा मिलेगी। इंदौर में 9 से 13 जून तक 5 दिवसीय ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत और चीन सहित 21 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। भोपाल जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि राजधानी में शॉर्ट टर्म कार्य जैसे रोड मार्किंग, साइनेज, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, पेंटिंग और स्पीड कंट्रोलर जैसे दृश्यता बढ़ाने के उपाय एक माह के भीतर पूरे किए जाएं। प्रदेश के 28 जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और IPL में आज पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म कश्मीर की गली से। गीत लिखा SH बिहारी ने, संगीतकार OP नैयर। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगली फरमाइश हमें आई है शाजापुर से, श्रोता हैं मनमोहन, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया और रीत। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: ये चांद का रोशन चेहरा।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म श्री 420 से। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, मुश्तबा, शाहिद और रऊफ। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म हम दोनों से। गीतलिकार साहिर ने संगीतकार जयदेव, इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गौरी नगर इंदौर से। श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा। अगले श्रोता सपना संगीता रोड इंदौर से हैं। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म कन्यादान से। इस गीत को सुरों से सजाया मोहम्मद रफ़ी ने। इस प्यारे से खूबसूरत गीत को लिखा है नीरज ने। गीत को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है रतलाम मध्य प्रदेश से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं बलवंत कुमार, राजू बाई, माया शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें आई है घंटागढ़ चौक खंडवा से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से। श्रोता हैं प्रवीण, मीना, आदित्य, शिवानी और मीनूराज। अगले श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश ताबले, राजदीप, राजेश, राशि, श्रीमती, शीतल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं,
5: अंगवा की डार पे जी।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
3: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान
7: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
6: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
6: क्यों क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
6: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
6: ये हुई ना बात।
8: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
9: क्या?
8: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
9: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
9: पर सुनेंगे कैसे?
8: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का सातवां भाग।
1: प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धारावाहिक की सातवीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी विचित्र होली। ये कहानी स्वर्ग की देवी तथा अन्य कहानियां दरवाजा और कहानी संग्रहों में संकलित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का रेडियो रूपांतरण।

0: अंग्रेजों के जमाने की बात है। होली का दिन था। मिस्टर ए बी क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। सभी लोग होली के रंग में मस्त थे। इधर मिस्टर क्रॉस निकले, उधर सभी ने गहरा नशा कर लिया और लगे भाग कबीरा गाने। बगीचे में बैठकर सभी मदमस्त हो गए थे और बीच बीच में साहब ना गए हों झांक लेते थे।
1: भैया आप सब मस्त रहिए, हमारा तो जी भर चला।
2: अली भाई ऐसे क्यों बोलते हो? होली तो रंगों का त्योहार है और ये रंग जाति धर्म की जागीर तो है नहीं। खान सामा जी, अरे ये तो बताओ अपने साहब कब तक आएंगे?
1: अरे साईस भाई ये बात नहीं, रंग तो जी बहलाते हैं, उनसे भला किसका मन भरा है। और साहब की नौकरी अब मुझसे नहीं होती भैया, वो जब चाहे आए, मेरा इस्तीफा आज पक्का।
3: अरे ऐसी नौकरी फिर नहीं मिलेगी, ऊपर की आमदनी अलग से है, बेकार छोड़ते हो।
1: अजय लानत, ऐसी नामदनी पे ये गुलामी अब अपने बस की नहीं। भला ये कोई बात हुई है? ये हमें जूतों से ठुकराए और हम इसकी गुलामी करें? क्यों करें भाई हैं? अरे भाई इज्जत की सूखी रोटी बेइज्जती के पकवानों से कहीं बेहतर है, अपनी तो खानगी पक्की समझो। आओ आज होली के शुभ अवसर पर तुम सबकी दावत कर देता हूँ, चले आइए कमरे में और डट जाइए आराम से मेज पर, वो बोतले पिलाऊंगा कि आज कलेजा ठंडा हो जाएगा।
2: लेकिन नूर अली भाई अगर साहब आ गए तो?
1: साईस मियां क्या बात कर रहे हो, वो अभी नहीं आने वाले, शिकार पर गए हैं, शिकार पर। सभी अंदर चले आओ।
2: चलो भाई। आओ भैया यहाँ आ जाओ, साहिब का माल तनिक हमको भी दिखाइए।
4: हाँ भैया अब देखो ना, सारा साल हम दूध ही पिलाते, हमका भी कुछ इंग्लिश पिलाई दियो, होली का कुछ तरंग आ जाए। आ जाओ अली भैया, आज तुम्हार के चेहरे पे फूल खिलाइए। थोड़ा पानी डालना भैया।
5: सब जने अंदर आ जाओ, होली है भैया होली।
1: पिया जा भाई, सब इंग्लिश माल है, और पीकर हो जाओ निडर बिंदास।
3: हमारी औकात कहाँ अली भाई, अब तक हम तो देसी ही पीते रहे, इंग्लिश का मजा तो कभी चखा ही नहीं। ये तो एकदम अलग चीज है।
6: अली भाईजान आप ही हम सब में समझदार हैं, मैंने ये तो बताइए।
1: हाँ हाँ पूछो भाई पूछो, क्या पूछना है?
4: हाँ भाई पूछो।
6: भाई ये बोतल बड़ी अच्छी चीज है, तनिक ये तो बताओ ये सबसे पहले बनाई किसने? ये बोतल बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी।
1: वाह कई बड़ी मीठी चीज है, ये साहिब लोग इसी को पीकर लोगों पर राज करते हैं। लेकिन आज हमने पी ली है और आज हमारा राज है।
6: तो हो जाए इसी बात पर होली की तार। अरे वो देखो सामने से सेठ उजागर मुल जी आ रहे हैं।
1: आने दो भाई, क्या फिक्र है, देखकर सेठ जी चक्कर खा जाएंगे।
6: यहाँ का माहौल देखकर तो सेठ जी चक्कर ही खाएंगे।
1: अरे आने तो दो, जल्दी अपने रंग में ढाल देंगे।
7: मुरली, मुरली, ये सब क्या है? अरे साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे?
1: अरे सेठ जी, साहब का हुक्म ही कुछ ऐसा है, आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है। और यही नहीं, होली खेलने को भी कहा है। ऐसा सुनने में आया कि ये आदेश लाट साहब के यहाँ से आया है, और जनता के त्योहारों में शामिल होना और सबके संग भाईचारे का व्यवहार करना और कुछ इस किस्म की बातें आदेश में हैं, तभी तो यह हुक्म दिया है। आइए ना, आप भी तशरीफ रखिए। निकालूं कोई मजेदार चीज है? अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है जनाब का।
7: क्या बकरा है?
3: अरे साहब, आप दो क्रास साहब के खास दोस्त हैं। अंग्रेजों की महफिल की रौनक तो आपसे ही होती है।
6: आप भी ऐसे साहब हैं कि जो चाहे हो जाए, जिलाधीश आवे जावे, आपकी हर हाल में छनती है। यही तो आपकी तारीफ है साहब, तभी तो आप शहर के सहयोगी समाज के नेता हैं।
4: शहर का कौन सा ऐसा ठेका है जो आपके पास नहीं है साहब?
1: यूनियन क्लब के कर्ता धर्ता भी तो आप ही हैं साहब। ये तो हमारा धन्य भाग है जो होली के अवसर पे आपके दर्शन हो गए। बोलो भैया, होली है।
7: बस बस, बहुत हो गया। अब ये बताओ कि कुछ माल वाल है या सब उड़ेल गए?
1: अरे साहब, है ना, आपके लिए बहुत माल है।
7: अरे है तो निकाल ना, बातों में ही उलझाए रखेगा क्या? और दे कुछ मजेदार सी चीज, और ये गजल भी हो जाए तो अच्छा रहेगा।
1: हुजूर, आपके लिए सब कुछ हाजिर है।
7: अरे नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे।
1: जी हाँ।
7: लेकिन भाई, मैं रंग वंग तो लाया नहीं, किसी को फटाफट मेरी कोठी पर भेज दो, वहां से रंग पिचकारी वगैरह लेकर आ जाएगा। क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है तेरी, है?
3: हाँ साहब, बड़ी बहार है, बहार होली की।
7: हाँ साहब के संग मेरी होली मनेगी, ना हो पिचकारी चलाऊंगा। अरे मैं
1: अच्छा, सब लोग समझ जाओ, साहब की मोटर आ रही है। सेठ जी, ये लीजिए, मैं रंग पिचकारी सब ले आया हूँ, बस एक चौताल छेड़ दीजिए, और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए। तुम सभी लोग भी उनके मुंह पे गुलाल मलो, हाँ साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। और अरे बोलो, मोटर हाथे में आ गई है, होशियार।
8: न्यू रैली जैसी छे ओडली साइज, इधर आ, की दौड़ गया सब लोग, बगले में कौन गौड़ है, कैसे शोर है, क्या मामला है,
7: होली है साहब, होली है, होली है।
8: उजागर में आओ, तुम क्या कर रहा है, सारा कपड़ा भी गो दिया, तुम ये सब क्या कहा,
1: कार्लिक और पाउडर का तेल जरा सा आपके चेहरे पर तो लगा। पूरा चेहरा कैसा लगता है रे? काले का पाउडर का तेल जरा आपके चेहरे पर तो लगा। कितने अच्छे लग रहे हैं
3: इडियट।
9: जरा मुझे भी तो दे रंग साहब के सुनहरी बाल काले।
3: छोड़ो छोड़ो मुझे तुम्हारी ये मजाल। यू अभी अभी झुमको बना रहा है, अभी बना रहा है। फ्लोरिंग साहब का देखिए तुम बोतल जूती पड़ी है। मेरा वाइन, मेरा वाइन तू हंसर की जा रहा है। अभी एक एक को मजा चुका रहा है।
0: बेचारे सभी लोग खुश थे कि साहब होली के रंग में मस्त होकर कुछ इनाम विनाम देंगे, लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए। पीठ पर हंटर पड़ते ही सारा नशा हिरन हो गया। कोई इधर भागा तो कोई उधर। सेठ उजागर मल का तो और भी बुरा हाल था, उन्हें काटो तो जैसे खून ही नहीं।
10: अरे बाप रे बाप, जरूर ये नूर अली ने झांसा दिया है। ये पश्चिम का सूरज पूरब में से कैसे निकल सकता है? साहिब लोगों को होली पसंद हो ये मुमकिन नहीं। नहीं, ये तो भोले भाले लोगों का शोषण ही कर सकते हैं, उनका खून पी सकते हैं। इनके लिए तो वही सबसे बड़ी होली है। अरे ये क्या, मिस्टर क्रॉस हंडल ये मेरी तरफ चला रहा है। कुछ हो के रहेगा उजागर मल, कुछ तो हो के रहेगा। आज मेरी खैर नहीं। अगर जरा भी इज्जत का ख्याल है तो सरपट भाग चलो। अरे भागो भागो भागो।
11: तो ये बात है, तो उजागर तुम भी इनके साथ मिला है, तुमको भी आज सजा मिलेगा।
10: अरे बाप रे बाप, राम बचाए इस यमदूत से। अरे भागो भागो भागो भागो भागो।
11: ठहर जा, भागता क्यों जा रहा है?
10: अपने फिटन तक पहुंच जाऊं तो इस जालिम से छुटकारा मिले। नूर अली तुमने आज कहां फंसवाया? सारी होली का मजा किरकिरा हो गया और मेरी बुद्धि भी कहां घास चरने चली गई थी। अरे ये क्या, ये क्या, फिटन तो भागी जा रही है। शायद मिस्टर क्रॉस की हंटर बाजी और इस भाग दौड़ से घोड़ा भी दक गया है। अरे रुको, अरे कोई रुको से, अरे रुको कोचवान, अरे कोचवान ठहरो। भाई मैं भी जाता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ भाई, मुझे भी लेकर चलो। देखो तो मेरे पीछे ही यमदूत पड़ गया है। भागो भागो भागो भागो।
11: हम तुमको नहीं छोड़ेगा, आज नहीं छोड़ेगा, आज तुमको नहीं छोड़ेगा। किधर भागेगा, कहां तक भागेगा?
10: जय भारत मैया की, ये तो प्राण लेकर ही छोड़ेगा आज। अरे कोचवान, अरे कोचवान ठहरो।

0: बड़ा ही विचित्र दृश्य था। आगे आगे फिटन दौड़ रही थी, उसके पीछे हांफते करहाते सेठ उजागर मल, और सबके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों सरपट दौड़े जाते थे। हंटर की आवाजों से बिचल गया। अहाते से सड़क तक खूब घुड़दौड़ हो रही थी। अंत में मिस्टर क्रॉस को रुकना पड़ा। कालिक लगा चेहरा जानकर और आगे जाना अब उन्हें हास्यजनक लगा, और यह भी विचार हुआ कि सेठ जी को काफी सजा अब मिल चुकी है, अपने नौकरों की खबर लेना भी जरूरी था। इसलिए मिस्टर क्रॉस लौट गए। सेठ उजागर मल की जान में जान आई। वो बैठकर हांफने लगे। घोड़ा भी ठिटक कर रुक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और सहारा देकर गाड़ी पर बैठा दिया। फिटन चल पड़ी।
1: बच गया, अब जान में जान आई। अवश्य ही नूर अली ने मुझे धोखा दिया है। असहयोगियों से उसकी मिली भगत है। ये लोग होली नहीं खेलते हैं, तो इतना इनका क्रोधित होना और क्या समझाता है कि ये हमें जानवरों से बेहतर नहीं समझते। इतना घमंड, मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े, जो सम्मान मेरा करते थे। वो एक धोखा था। हमें ये नीच ही समझते हैं। लाल रंग कोई बाण तो नहीं है। हम इनके आगे गिड़गिड़ाते हैं और ये हमें गालियां देते हैं। माना कि ये

होली इनका त्योहार नहीं, पर ये जरा सा रंग लगा दिया तो इतना बिगड़ उठे, इतना अपमान। मुझे भागना नहीं चाहिए था, इसके सामने ताल ठोक कर खड़ा रहना चाहिए था। इसी से तो ये सब शेर हो जाते हैं। इनकी सज्जनता और विनयशीलता केवल अपना मतलब साधने के लिए है। अवश्य ही ये असहयोगियों को दबाना चाहते हैं, इसमें अब कोई संदेह नहीं। मेरी ये अधोगति, हाय कितने शर्म की बात है। ये मेरे अंग्रेजों को सहयोग करने का फल है, मैं इसी योग्य हूं। मैं इनकी मीठी मीठी बातों में जो फंस गया, मेरी मंदबुद्धि को इतना भी नहीं सूझा कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल हो ही नहीं सकता। मैं अब तक असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता रहा, अब मालूम हुआ कि वो हास्यप्रद नहीं है। मैं तो स्वयं ही निंदनीय हूं। हाँ, मैं स्वयं ही निंदनीय हूं। मैं स्वयं ही निंदनीय हूं।

0: सेठ उजागरमल अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छोटे बड़े सभी लोगों को होली का उत्सव मनाने के लिए निमंत्रित किया था। हिंदू मुसलमान सभी साथ साथ बैठे प्रेम से होली खेल रहे थे। साथ में खाने पीने का भी पूरा प्रबंध किया गया था। इस समय कोई सज्जन व्याख्यान दे रहे थे।
1: देवियों और सज्जनों, मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी भाई बहनों, माताओं और बच्चों को होली के इस पावन उत्सव पर बधाई देता हूं। बीती पुरानी बात थी वो आग की होली, नए रंगों की पात है ये फाग की होली। तुम जिंदगी को जैसा रंगोगे वो दिखेगी, आओ मिलके मनाए अपने भाग की होली।
2: अरे सेठ उजागरमल, अंग्रेजों के पिट्ठू आज यहाँ कैसे? ये खुशी के आचार्य यहाँ आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
3: हाँ, इन्हें तो आज किसी अंग्रेज की चाकरी पर होना चाहिए था।
4: शायद हमारा भेद लेने आए हैं कि हम लोग यहाँ क्या योजनाएं बना रहे हैं।
5: कांग्रेस की जय, कांग्रेस की जय, कांग्रेस की जय,
6: असहयोग की जय, असहयोग की जय,
7: खुशामदियों की जय,
6: जी हुजूरों की पराय, जी हुजूरों की पराय।
8: सज्जनों, मित्रों, मैं उजागरमल आप सभी उपस्थित सज्जनों से अपने किए हुए कृत्यों के लिए आज क्षमा याचना करता हूं। मैंने आज तक केवल आपसे असहयोग किया था और हुकूमत की सदैव प्रशंसा की थी। मुझे मेरे इस कार्य के लिए क्षमा कीजिए। मैं सच्चे हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण मत समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं खुले दिल से आप सभी से गले मिलने आया हूं। अपनी विशाल उदारता का परिचय दीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल चुका है। जिलाधीश एबी क्रॉस ने आज मेरा घोर अपमान किया है। मैंने हंटरों की मार खाई है। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं देशद्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया। खूब कांटे बोए। उन सभी कार्यों को याद करके ऐसा जी चाहता है कि अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूं।
3: हाँ हाँ, अवश्य कर दीजिए, और आपसे ना बनता तो मैं तैयार हूँ।
1: ये कड़वी बातें कहने का अवसर नहीं है मित्र। सेठ जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है। हमें इन्हें गले लगाना चाहिए और दिल से इन्हें स्वीकार करना चाहिए।
8: प्रधान जी, इन्हें कहने दीजिए। अरे मैं हूं ही इसे योग्य। यही मेरे प्रायश्चित का आरंभ है। नहीं बंधुवर, आपको यह कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं ही यह काम भली भांति कर सकता हूं। पर अभी मुझे और भी बहुत कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूं कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित को करने में और मुंह के कालीमा धोने में काटूं। आप सभी से
0: हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मुझे आत्म सुधार का एक अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब कुछ आप पर अर्पण करता हूं। आशा है कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया है, ऐसा समझ आप मुझे आत्म सुधार का ये अवसर देंगे और मुझे कृतार्थ करेंगे।
5: कांग्रेस की जय! कांग्रेस की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की सातवीं कड़ी विचित्र होली। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, मनोज कुमार शर्मा, माधवा अनंत, हीरेंद्र झा और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 7। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ब्रिक्स समूह की दूसरी बैठक आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जा रही है। दो दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को और असम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राज्य सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले मंत्री अपने विभाग और अपने प्रभार के जिलों की उपलब्धियां, नवाचार, आगे की कार्य योजना और चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। बैठकें 8 से 10 मई के बीच की जाएंगी। सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स नीति के तहत मेट्रो कोच और चुनिंदा स्टेशन क्षेत्रों में बर्थडे, प्री वेडिंग शूट, फिल्म शूटिंग और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। नीति के अनुसार खड़ी और चलती दोनों तरह के मेट्रो कोच में इवेंट की अनुमति होगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें उच्च शिक्षा और शोध उपाधि उपरांत अध्ययन, पीएचडी, स्नातकोत्तर करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश के 28 जिलों में आज तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज महिलाएं हाउस वाइफ तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार की आय में योगदान देना चाहती हैं, लेकिन बाहर जाकर नौकरी करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में सखियों, घर बैठे जॉब करना एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। खास बात यह है कि आज कई ऐसे घर बैठे काम उपलब्ध हैं जिनके लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सीखने की इच्छा, स्मार्टफोन और लैपटॉप ही काफी है। अपने खाली समय में आप क्या करना पसंद करती हैं, किन विषयों की ओर आपका झुकाव है, उन्हें पहचानें। यदि आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो आपका ये साइड बिजनेस आपके सपनों को पूरा कर सकता है। सखियों, सैलरी ही सब कुछ मायने नहीं रखती। आप कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि आपको अपने भीतर खालीपन महसूस ना हो। अब तो सरकार के द्वारा भी वर्क फॉर होम स्कीम शुरू की गई है। सखियों, यदि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है और आप डाटा एंट्री जॉब करना चाहती हैं, तो इसमें जानकारी को कंप्यूटर में फीड करना होता है। ऐसे ऑनलाइन काम भी बहुत किए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग भी आप कर सकती हैं। कोरोना काल के समय से ऑनलाइन टीचिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। सखियों, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही करवाएं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, योगा की क्लास जो आपकी रुचि के अनुसार हो वो आप ले सकती हैं। यदि आपको लिखने का शौक है तो फ्रीलांस लेखन भी आपके लिए अच्छा विकल्प है। इसमें आप खुद का अपना ब्लॉग्स बना सकती हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट बनाना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने जैसे कई अवसर उपलब्ध हैं। सखियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकती हैं, जैसे हस्तनिर्मित शिल्प आइटम या फिर कुछ और भी। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग, सखियों, यदि आप बारीकियों पर ध्यान देती हैं और लेखकों और प्रकाशकों के लिए कंटेंट की प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग करने पर भी आप विचार कर सकती हैं। यदि आप एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखती हैं, तो ट्रांसलेटर का भी काम आपके लिए उपलब्ध है। यदि आपकी आवाज स्पष्ट है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों, एनिमेशन या अन्य के लिए वॉइस ओवर सेवाएं भी प्रदान कर सकती हैं। सखियों, ये तो कुछ विकल्प हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बस इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, घर से काम शुरू करने से पहले सही जानकारी इकट्ठा करें, जॉब की विश्वसनीयता जरूर जांचें, जल्दबाजी में कोई ऑफर स्वीकार ना करें, हमेशा भरोसेमंद और जाने माने प्लेटफॉर्म से ही जॉब सर्च करें। सखियों, शुरुआत में छोटे काम से अनुभव लें और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। समय के साथ साथ अच्छी कमाई और बेहतर मौके पाए जा सकते हैं। आप कोई भी काम करें, बस एक चीज का ध्यान रखें, वो काम आपकी रुचि के अनुरूप हो।

0: सखियो, समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते हैं काव्य पाठ, कहानी, वार्ता। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता। शीर्षक है वित्तीय प्रबंध खुद कैसे करें। वार्ताकार है सुबी सक्सेना। तो सखियो, आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: आम तौर पर ये समझा जाता है कि महिलाएं बचत तो कर सकती हैं, लेकिन पैसों का प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट उनके बस की बात नहीं है। पूरे घर का बजट संभालने वाली महिला यदि अपने घर के वित्तीय प्रबंधन में भी अपनी भागीदारी निभाए, तो ना सिर्फ अर्जित किए धन का सही निवेश हो सकता है, बल्कि वित्तीय मामलों में महिला का दखल होने के कारण आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर भी हो सकती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और जागरूकता महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। इस मामले में भी किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। चाहे आप जीवन के किसी भी चरण में हों, प्रत्येक चरण का अपना एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है। आप कभी भी नहीं चाहेंगी कि वित्तीय चिंता आपकी जिंदगी को प्रभावित करे। महिलाओं के लिए बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं। बैंक खाता होने से महिला अपनी वित्तीय मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकती हैं। इससे उन्हें वित्तीय निर्णय लेने, पैसे बचाने और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपने भविष्य की योजना का अधिकार मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। बैंक खाता होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT जिसे हम कहते हैं, जो कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में आती है, उसके जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ सकती है। अगर हमारा खाता बैंक में हो तो हमें बीमा कवरेज भी मिलती है। सरकार की बहुत सी अच्छी योजनाएं हैं। एक है जिसमें आपको प्रतिवर्ष सिर्फ 20 रुपये देना है और आपको किसी भी दुर्घटना होने पर सरकार से आपको 2 लाख की मदद मिलेगी। ऐसे ही एक है प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा, जो कि सालाना मात्र 436 रुपये की है और आपके मर जाने पे आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की मदद देगी। खाता संचालित कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा हो। आप पैसों का लेन देन ब्रांच जाकर कर सकते हैं। ब्रांच जाने में असमर्थ हो तो ATM कार्ड बनवाइए, ATM से लेन देन करें। ATM के यूज से आप अपने फ़ोन में UPI भी रजिस्टर कर सकते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं छोटे छोटे सब्जी वालों के पास भी QR कोड रखा रहता है। अगर आपके पास ATM कार्ड हो तो उससे आप अपनी UPI ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं बैंक अकाउंट, और स्कैन करके बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग या बैंक के मोबाइल ऐप से पैसे का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप किसी और बैंक के खाते में भी अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक की ऐप से आप बहुत सारी और भी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में FD बनवाने के लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बैंक की मोबाइल ऐप खोलिए और FD और RD आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि खाता खुलवाएं कैसे। आज के समय में खाता खुलवाना एक बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है। आप अपने घर के पास किसी भी अच्छे बैंक शाखा में जाएं, जहां आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ले जाना है। एक फॉर्म भरना होता है और मिनिमल बैलेंस रख के आप अपना आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तब भी आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो सिर्फ आधार कार्ड और फोटो से खुल जाएगा। उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि बचत कैसे करें। सही जगह निवेश करें, समृद्ध बने। संपत्ति निर्माण का रास्ता काफ़ी लंबा होता है, और अगर आप इस पर चल रही हैं तो आपको केंद्रित होते हुए सही दिशा में चलना होगा। इसके लिए मंत्र है बचाएं, निवेश करें और समृद्ध बने। बचत करने की बहुत सी योजनाएं उपलब्ध हैं। अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो बैंक में FD

0: मार्केट रिस्क लेने की स्थिति में हैं तो आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी भी कर सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसका अर्थ है कि आप किसी भी समय एसआईपी शुरू या समाप्त कर सकती हैं। यदि आपके पास एक मुश्त पैसे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक मुश्त पैसे नहीं हैं तो हर मंथ आप 1,000, 2,000, 5,000 कितने का भी SIP, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, उसमें कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP में मार्केट रिस्क है, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप पब्लिक प्रोविडेंट खाता भी खोल सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कीम का खाता है जिसमें आपको 1.5 लाख तक आयकर राहत मिलती है। आपके द्वारा अर्जित ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता और 15 वर्षों के बाद मिलने वाली परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है। उसमें से 5 साल बाद भी आप 50% राशि निकाल सकते हैं। जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए इनकम टैक्स देना अनिवार्य है। देश के प्रति यह नागरिक का कर्तव्य भी है कि वह टैक्स चुकाए, क्योंकि यह देश के विकास में योगदान देता है। ITR भरने के कई फायदे हैं। बैंक लोन मिलने में आसानी रहती है। ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सरकारी एवं प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप अधिक लेन देन करते हैं तो ITR आपके लिए मददगार साबित होता है। समय पर ITR फाइल करने से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़ी राशि इन्वेस्ट करने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का कोई खतरा नहीं होता। जब हम कोई बड़ा बीमा कवर या जिसे हम टर्म प्लान भी कहते हैं, तो बीमा कंपनियां आपकी आय का स्रोत जानने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं। वीजा के लिए भी जरूरी है। अगर आप किसी और देश में यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका ITR जो है जरूरी रूप से लगता है। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं में एक झिझक है। उन्हें झिझक है बैंक में जाने से कि उसके अंदर कैसे होता है, क्या होता है, पैसे का लेन देन कैसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत आसान है। आप किसी भी अपने पास की शाखा में जाएं, सरकारी बैंक में, वहाँ पे आपके जैसी ही, हमारे जैसी ही महिलाएं बैठी हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आपको अटेंड करती हैं, आपको हर चीज़ अच्छे से समझाती हैं कि आप अपना पैसा कहाँ निवेश करें। और आप बिल्कुल मत झिझकिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता। आप बैंक में घुसेंगी, आपके लिए मदद करने के लिए हर कदम पे कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जैसा बैठा है। आप बैंक में आइए, हमसे पूछिए, अपने पैसे के निवेश का डिसीजन खुद लीजिए और आगे बढ़िए। यदि इन तकनीकी बातों की महिला को पूरी जानकारी हो, वो अपनी झिझक तोड़ के बैंकों और वित्तीय प्रबंधक के पास पहुंच सके, तो विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने परिवार को, आर्थिक समस्या को संभाल सकती हैं।
1: सखियो, अभी हमने सुनी वार्ता। शीर्षक था वित्तीय प्रबंध खुद कैसे करें। वार्ताकार थी सुबी सक्सेना। सखी, उम्मीद है कि इस वार्ता को सुनने के बाद आप वित्तीय प्रबंधन और भी अच्छे से कर पाएंगी। सखियो, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, प्रजातंत्रवादी, वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत, शोषित वर्ग के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध रहे राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज। भारतवर्ष की भूमि महापुरुषों की भूमि रही है, जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया। ऐसे ही एक युग पुरुष थे छत्रपति शाहू महाराज, जो कि मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। सखियों, शाहू महाराज बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, विवेकशील, न्यायप्रिय स्वभाव के थे। शिक्षा के दौरान उन्होंने जातिवाद, भेदभाव को नजदीक से देखा, जो उनके भविष्य के कार्यों की नींव बनी। सखियों, शाहू महाराज जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें शिक्षा के लिए विदेश भेजने हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उनका मानना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान ही भारत में सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। साहू जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होने के बावजूद दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और उनसे हमेशा निकटता बनाए रखी। साहू जी महाराज ने दलित

वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने गरीब छात्रों के लिए छात्रावास प्रदान किए। सखियों, उनकी मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने जो बीज बोए थे समानता, शिक्षा, न्याय और सामाजिक समरसता के, वे आज भी हमारे समाज में प्रेरणा बनकर खड़े हैं। सखियों, छत्रपति शाहू महाराज एक राजा के रूप में नहीं बल्कि जन जन के राजा, सामाजिक न्याय के प्रतीक और दलितों के संरक्षक भी थे। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। आज का दिन हमें हर साल यह याद दिलाता है कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक सच्ची स्वतंत्रता अधूरी है।

सखियों, गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में जब शरीर की एनर्जी खत्म होने लगती है, तब हर कोई प्रयास करता है कि तापमान को कम करने का, चाहे फिर शरीर का हो या घर का। ऐसे में सत्तू, जो प्राकृतिक रूप से शरीर का तापमान कम करता है, पारंपरिक ड्रिंक सत्तू किसी वरदान से कम नहीं है। सखियों, सत्तू सिर्फ गर्मी में ठंडक देने वाला पेय या कम खर्च में मिलने वाला प्रोटीन ही नहीं है, बल्कि इसमें भरपूर पोषण तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम शामिल है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। सखियों, गर्मी के मौसम में सत्तू खाने से दोपहर की तेज धूप से शरीर को आराम मिलता है और पेट को भी ठंडक मिलती है। सत्तू मुख्य रूप से भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाता है। सत्तू की तासीर ठंडी होती है। गर्मी के दिनों में इसे पीने से शरीर का आंतरिक तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे हमें लू नहीं लगती। सत्तू में हाई प्रोटीन और फाइबर होता है। इसे पीने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे यह वजन घटाने में सहायक है। पता सखियों, सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता, साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। अब तो आप जान ही गई होंगी कि सत्तू हमारे लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं है, तो आज से ही सत्तू को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। सखियों, आप सत्तू का नमकीन शरबत भी ट्राई कर सकती हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप एक जग में 4 बड़े चम्मच सत्तू डालें। इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि कोई गांठ ना रहे। फिर इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस, बारीक कटी प्याज, धनिया डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसे ग्लास में डालें और पुदीने की पत्ती से सजाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। यदि आप मीठा पसंद करती हैं, तो आप सत्तू में चीनी या गुड़ का पाउडर मिलाकर चुटकी भर इलायची के साथ इसे तैयार कर सकती हैं। यह बच्चों के लिए एक बेहतरीन हेल्दी ड्रिंक है। सखियों, आप सत्तू और गुड़ के लड्डू भी बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में 200 ग्राम सत्तू, आधा कप देसी घी, 400 ग्राम पिसा हुआ गुड़ डालें। सभी को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर छोटे छोटे साइज के लड्डू बनाकर खाइए और परिवार को भी खिलाइए। सखियों, हम तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी नीलम को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
5: अंगवा की रान पे जी।
3: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी, धीरे धीरे।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
7: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
6: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
7: अरे काहे का मजा,
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
6: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
7: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
6: ये हुई ना बात।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
10: इस समय आप हैं हमारे साथ।
11: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। आपको सुनवाते हैं दिनेश कुमार अहिरवार के गाए लोकगीत। पहले सुनते हैं चौघड़िया गीत।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे दिनेश कुमार के गए लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। पहले सुनवाते हैं स्वाति पाराशर का गाया ये भजन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं,
5: अंगवा की रार पे जी।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
3: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
6: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
6: क्यों क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
6: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
6: ये हुई ना बात।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। अंजन के बोलों को संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ सूरज फिल्म से लिया है। मोहम्मद रफ़ी का ही साथ दिया सुमन कल्याणपुर ने। हसरत जयपुरी का गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में सूरज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 3 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन पर करीब 23,437 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नागदा मथुरा गुंडकलवाड़ी और बुढ़हल सीतापुर रोड पर थर्ड और फोर्थ लाइन बिछाई जाएगी, जिससे रेलवे नेटवर्क में करीब 901 किलोमीटर का इजाफा होगा। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करेंगी और 83 लाख की आबादी वाले 4,000 से ज्यादा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज अपने पहले भारतीय राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के संबंध और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात कर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बुरहानपुर के श्री परमानंद गोविंद जी वाला सभागृह में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया और इस साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया, व्यापारियों के हित में सरकार राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला कर चुकी है।
1: निर्माण की इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके आधार पर भविष्य में और बड़े टारगेट्स के अपन चलेंगे। आज उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। सोलर के माध्यम से भी बिजली के जो प्रबंधन हो जाए, 2-3 डिपार्टमेंट का तालमेल चल रहा है। हमारा सबका प्रयास है, घर घर में लोग रोजगार अगर खड़ा कर रहे हैं तो रोजगार के लिए हमारी मदद होना ही चाहिए। खड़कोर के पहुंच मार्ग की भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ये मार्ग भी बनाया जाएगा।
0: प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा कल से शुरू हो रही है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए जो मुख्य परीक्षा में फेल हुए हैं या अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं। छात्र अपना एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में 2 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से आज 28 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर समेत कई संभागों के जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। भोपाल के मौसम विभाग के मुताबिक शाम को मौसम का मिजाज बदलेगा। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत करीब 27 जिलों में दिन में गर्मी का असर बना रहेगा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू घोषित कर दिया है। 26 मई को धर्मशाला में क्वालिफायर 1, 27 और 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जबकि 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। वहीं लीग स्टेज मैच का आखिरी

शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज बैराड के समीप स्थित गेहूं उपार्जन केन्द्र पचीपुरा का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ कलेक्टर ने कल पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शीरधारा और नस्ल सुधार अभियान की प्रगति, पशु टीकाकरण और पशुपालकों को मिल रही सेवाओं की समीक्षा की गई। जबलपुर में कल आंशिक रूप से बारिश हुई और ओलावृष्टि से हवा में नमी खुल गई है। नम हवा से गर्मी का असर कम हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, ये स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
1: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवी के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियूर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
4: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
5: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म पाप से। राहत फतेह अली खां के बोल हैं, माफ कीजिए, राहत फतेह अली खां ने इस गीत को गाया है। अमजद इस्लाम अमजद ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया शशि ने। और सुनना चाहा है छतरपुर से चंद्रभान और मंजू नामदेव, इंदौर से जीनत परवीन, शेख अब्बास अली, महजबी और नकवी ने इसी गीत की पसंद हम तक पहुंचाई है। बिहार से अंकित परिहार, भावना अजीम, गुरमुख सिंह यादव और प्रकाश यादव ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

अगला गीत केके का गाया हुआ है, सईद कादरी के बोल, संगीत है प्रीतम का। इस गीत को हमने लिया भूल भुलैया फिल्म से। पसंद हम तक पहुंचाई है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। ये सभी श्रोता हैं प्रमिला गंज आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश के।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी गाने। अगला गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद का है। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिशा, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया और ऋषभ राजावत, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है राहत फतेह अली खां का गाया आजा नचले फिल्म का गीत। धुन बनाई सलीम सुलेमान ने और इस गीत को लिखा जयदीप साहनी ने।

मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से पत्राए अभिजीत गवाणकर रही, सरिता प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता वैशाली शैलेश श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर का। इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है। समीर का लिखा आदेश श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया राजनीति फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ दी कविता सेठ ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आरक्षण फिल्म से पंडित छन्नूलाल मिश्र और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत है। सुनना चाहा है रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा नेपाल, पेले सागर से पत्राया, तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन का।

0: आरक्षण फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 3 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन पर करीब 23,437 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज अपने पहले भारतीय राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बुरहानपुर के श्री परमानंद गोविंदजीवाला सभागृह में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया। उन्हें कहा कि सरकार ने पिछले साल को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया और इस साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा कल से

है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए जो मुख्य परीक्षा में फेल हुए हैं, अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं। प्रदेश में दो मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से आज 28 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर जबलपुर समेत कई संभागों के जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। और बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू घोषित कर दिया है। 26 मई को धर्मशाला में क्वालिफायर 1, 27 और 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जबकि 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आपको शाम की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आज शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा, आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। 6:30 पर फिल्म संगीत, कुछ और फिल्मी नगमे सुनेंगे शाम 5:33 पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज सुनिएगा बुंदेली समाचार और बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुर्खियों में, ये कार्यक्रम रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम, रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। जीवन साथी, सतीश मेहता का लिखा ये नाटक हम आपको सुनाएंगे आज रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 सुनिएगा पंडित VG जोग का वायलिन वादन राग झिंझोटी। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:45 हुए हैं। अब हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। कार्यक्रम DTH पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर पुनः सुन सकेंगे।

मीडियम वेव 465.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा और लेकर आई हूं आपके लिए आज का स्पेशल सेगमेंट। और दोस्तों, हम बिना देरी किए आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके साथ ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने वाली हूँ और उसके साथ ही आपको स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ भी दूंगी। लेकिन उसके साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है बुधवार और आज हम लेकर आते हैं आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और वहां पर हम बात करते हैं किसी एक फिल्म की और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास फिल्म लेकर आई हूं। आप उस फिल्म के बारे में सोच कर रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूं आज के कार्यक्रम के दो प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि GDP का फुल फॉर्म क्या है, और आज का दूसरा प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मैं अपने प्रश्न दोबारा दोहरा देती हूँ। GDP का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर रखिए और कार्यक्रम के अंत में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ साझा करूंगी। अब चलिए, आप सोचते रहिए कि आज मैं आपके लिए कौन सी फिल्म लेकर आई हूं, और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

दोस्तों, आज 6 मई है और आज के अवसर पर हम स्मरण कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता पंडित मोतीलाल नेहरू को, जिनका योगदान देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को आगरा में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण परिवेश से की, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर इलाहाबाद में एक सफल वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। हालांकि उनके पास एक समृद्ध और सुविधाजनक जीवन था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने अपने विचारों और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। उनका निवास आनंद भवन केवल एक घर नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिन्होंने भारत के भविष्य को प्रभावित किया। सन 1928 में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यह रिपोर्ट भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रारूप थी, जिसमें स्वशासन और नागरिक अधिकारों की बात की गई थी। यह उनके दूरदर्शी विचारों और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोतीलाल नेहरू जी का जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपने कार्यों से समाज को प्रेरित किया, बल्कि अपने परिवार में भी देशभक्ति और सेवा की भावना को विकसित किया। उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनकी जयंती पर हमें उनके आदर्शों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और देश के हित में योगदान दे।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में प्यार बहुत ही सिंपल तरीके से आता है और कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड कि सामने वाले के घर वालों से मिलते ही आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लगने लगता है। आज की हमारी ये कहानी ऐसी ही है। आज हम एक ही फिल्म से में लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म वेलकम। तो दोस्तों, राजीव एक सीधा साधा शरीफ और थोड़ा सा डरपोक लड़का जिसकी पूरी जिंदगी उसके अंकल आंटी के फैसलों पर टिकी हुई है। वो जो भी करता है उनसे पूछ कर करता है। बचपन से ही उसने वही किया है जो उसे कहते हैं। पढ़ाई, व्यवहार, जीवन के फैसले सब कुछ तय किया हुआ। उसके अंकल की एक ख्वाहिश है कि उनका भतीजा एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसका परिवार बिल्कुल साफ सुथरे बैकग्राउंड से आता हो, कोई दाग नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। और इसी सोच के कारण राजीव हर रिश्ते में बहुत ही सावधानी बरतता है और खुद भी किसी तरह की परेशानी से दूर रहना चाहता है।

ऑन होती तो वेलकम फिल्म ही नहीं बनती। अब जरा आते हैं पहले असली ट्विस्ट पर। संजना के दो भाई हैं, उदय शेट्टी और मजनू भाई। नाम सुनकर ही अंदाजा लग गया होगा, ये लोग वो तो बिल्कुल नहीं है जो बाहर से दिखते हैं। उदय शेट्टी एक डॉन, लेकिन अंदर से एकदम इमोशनल। अपने बहन की शादी किसी अच्छे शरीफ लड़के से करना चाहता है ताकि उसकी जिंदगी उसकी दुनिया से अलग और सुरक्षित हो जाए। और मजनू भाई, ये तो अपने आप में एक यूनिवर्स है, गैंगस्टर भी और खुद को महान पेंटर समझने वाले आर्टिस्ट भी। वो अपनी पेंटिंग्स को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, चाहे बाकी लोग उन्हें समझ पाए या नहीं। अब बात करते हैं हम एक्टिंग की, तो अक्षय कुमार ने राजीव के रोल में जो नर्वस कॉमिक टाइमिंग दी है वो बहुत ही रियल लगती है दोस्तों। कैटरीना कैफ की सादगी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारी और नेचुरल लगती है, लेकिन असली जादू तो नाना पाटेकर और अनिल कपूर ने किया है। नाना पाटेकर का उदय शेट्टी एक ऐसा डॉन जो हर वक्त खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और अनिल कपूर का मजनू भाई वाला एक्ट एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, मतलब हर चीज इतनी यूनिक कि आप नजर ही नहीं हटा पाते। और उस वक्त जब ये फिल्म आई थी तब का एक्साइटमेंट की जब हम बात करें तो 2007 की ये फिल्म रिलीज हुई थी, लोग थिएटर में सिर्फ हंसने के लिए जाते थे। कॉमेडी का ये लेवल उस टाइम के लिए बहुत ही फ्रेश था। और इस फिल्म की एक और खास बात है दोस्तों, हर किरदार ओवर द टॉप है लेकिन फिर भी बिलीवेबल है। और सबसे बड़ी बात, कॉमिक सिचुएशन से आती है, जबरदस्ती नहीं आती। अब राजीव को धीरे धीरे पता चलता है कहानी में कि संजना का परिवार नॉर्मल नहीं है बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और जब उसे ये सच पता चलता है तो कुछ अलग अलग घटनाएं होती है और उसे बातचीत में धीरे धीरे शक होने लगता है, जिससे वो अंदर ही अंदर घबराने लगता है। अब एक तरफ प्यार और एक तरफ डर। राजीव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्या वो अपने अंकल को इस परिवार के बारे में सच बताएगा या फिर इस पूरे गैंगस्टर परिवार को सभ्य बनाकर पेश करेगा। और इस दुविधा में वो कई बार पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन संजना के लिए उसका लगाव उसे रोक देता है और यहीं से शुरू होती है असली कॉमेडी। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपके साथ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये पहला गाना फिल्म वेलकम से।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे वेलकम की, तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, कुछ बहुत सारे मजेदार मोड़ लेने लगती है। उदय शेट्टी और मजनू भाई को पता चलता है कि अगर संजना की शादी करानी है तो उन्हें अपनी इमेज बदलनी पड़ेगी, तो वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। अपना बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका और यहाँ तक कि अपना व्यवहार भी। अब सोचिए जरा, एक डॉन और एक गैंगस्टर सूट बूट पहनकर शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर सीन में उनकी पुरानी आदतें बाहर आ जाती है। कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कभी उनकी भाषा बदल जाती है और कभी कभी उनकी असली पहचान थोड़ी थोड़ी झलकने लगती है। और यहीं से पैदा होती है फिल्म की सबसे शानदार कॉमेडी। अब चलिए कहानी को हम थोड़ा सा पॉज देते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। अनीस बज्मी का डायरेक्शन यहाँ कमाल करता है। वो किरदारों को स्पेस देते हैं और हर सीन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि हंसी अपने आप आ जाए। और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ जब कोई शूटिंग होती है ना, तो टाइमिंग मैच करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कॉमेडी में एक सेकंड का फर्क भी सीन को बिल्कुल खराब कर सकता है, इसीलिए कई सीन बार बार शूट करने पड़े हैं। नाना पाटेकर ने कई जगह अपने डायलॉग्स खुद ही बना लिए इस फिल्म में और वही डायलॉग्स बाद में सबसे ज्यादा फेमस भी बन गए। अनिल कपूर ने मजनू भाई के लिए जो एक्सेंट पकड़ा था ना, वो भी सेट पर ही एक्सपेरिमेंट करते करते बन गया। और फिल्म का म्यूजिक की अगर हम बात करें तो फिल्म का म्यूजिक एकदम हल्का फुल्का, क्रंची और एंटरटेनिंग है। हर गाना कहानी के फ्लो के साथ चलता जाता है। और अगर हम बात करें इस फिल्म के सबसे पसंदीदा मूमेंट्स की ना, तो मजनू भाई की जो पेंटिंग है वो सबसे फनी मूमेंट भी है इस फिल्म का और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला भी। और उदय शेट्टी का वो डायलॉग, कंट्रोल उदय कंट्रोल। राजीव का डर हर सीन में एक नए पंच की तरह काम करता है। तो अब अगर हम कहानी पे आए तो राजीव के जो अंकल है, जब इस नई फैमिली के साथ मिलते हैं तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे क्लूज सामने आने लगते हैं। कभी किसी के व्यवहार से, कभी किसी गलती से, तो कभी अचानक हुई किसी घटना से सच्चाई की झलक मिलने लगती है। और झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ, और फिर से उसे बचाने के लिए एक और नया झूठ। तो इसी तरह कहानी आगे बढ़ती रहती है और स्थिति इतनी उलझ जाती है कि हर कोई एक्टिंग कर रहा होता है। कोई अपनी असली पहचान छुपा रहा है, तो कोई दूसरों की बातों को संभालने में लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। और इसी फिल्म में, इसी उलझन के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती रहती है।

तो दोस्तों अब हमारी ये कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। सच्चाई अब ज्यादा देर छुप नहीं पाती और राजीव के अंकल को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है, और जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ टूटने जैसा लगता है। राजीव के लिए ये एक बहुत ही कठिन पल होता है क्योंकि उसे अपने प्यार और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाना होता है। लेकिन ये वेलकम है मेरे दोस्त, यहाँ ड्रामा भी कॉमेडी के साथ आता है। और अगर हम ऑडियंस रिव्यू की बात करें इस फिल्म में, तो इस फिल्म को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि एक कल्ट कॉमेडी बन गई। आज भी टीवी पर आए तो लोग रिमोट नहीं बदलते। लगभग 30 से 35 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए, और उस दौर में ये बहुत ही बड़ी सफलता थी। और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है ना, ये आज भी इतने रिलेटेबल है कि मीम्स में आज भी डायलॉग जिंदा है, और कॉमेडी कभी इस फिल्म की पुरानी लगती ही नहीं। अब अगर हम इस फिल्म के बेस्ट पार्ट्स की बात करें तो एक तो मेरा पर्सनल फेवरेट डायलॉग है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, और उदय और मजनू की जोड़ी, ओए होए। राजीव की वो मासूमियत और हर सीन में अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट, यही इस फिल्म को सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट बनाती है। और फिल्म को कई सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला, और आज ये बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। और इस फिल्म के डायलॉग्स कंट्रोल उदय कंट्रोल वाला भी, और ये राजीव है, ये झूठ नहीं बोलता, आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब कहानी में क्लाइमैक्स आने वाला है, आखिरकार सच सामने आता है, गलतफहमियां दूर होती हैं। राजीव अपने अंकल को समझाने की कोशिश करता है, और उदय शेट्टी भी ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो अपनी बहन के लिए अच्छा ही चाहता है। धीरे धीरे हालात थोड़े नॉर्मल होने लगते हैं और रिश्तों में विश्वास वापस आता है, और फिर प्यार जीत जाता है। राजीव और संजना की शादी का रास्ता साफ हो जाता है, और उदय शेट्टी और मजनू भाई अपने ही अंदाज में दिल जीत लेते हैं। और यही तो है वेलकम, एक ऐसी फिल्म जो हर बार देखने पर आपको फिर से हंसाती है, और शायद यही है इसकी सबसे बड़ी जीत। तो चलिए आज की इस एक ही फिल्म से सेगमेंट के आखिरी गाने में हम सुनाते हैं आपको इस फिल्म का टाइटल ट्रैक, वेलकम।

दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज की जिन्हें आप बिल्कुल ही कम खर्चे में या बिल्कुल ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने गांव या छोटे शहरों में भी शुरू कर सकते हैं। और खास बात यह है कि मैं आज आपको सिर्फ आइडियाज नहीं दूंगी बल्कि शुरुआत कैसे करनी है ये भी बताने वाली हूँ। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं और छोटा छोटा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कुछ पैसे नहीं है। तो आपके पास सीखने या काम करने का अगर इरादा है तो सबसे पहला कदम ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ सीखिए जो आप कम बजट में सीख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग या एक्सेसरीज का काम, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। आप शुरुआत में बस बेसिक मोबाइल ठीक करना सीख लीजिए YouTube या किसी लोकल ट्रेनिंग से, और फिर धीरे धीरे एक छोटी सी टेबल लगाकर आप कवर, चार्जर, ईयरफोन जैसी चीज़ें बेचना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे पैमाने से कीजिए लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सरकारी काम समझने की रुचि रखते हैं, आपको समझ में आती हैं चीज़ें और डिजिटल सेवा सेंटर वगैरह आपको चलाना आता है, तो आप ऐसा ही कुछ शुरू कर सकते हैं। आप एक छोटा सा सेटअप शुरू कीजिए जहाँ से आप लोगों के फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। शुरुआत में आप आधार कार्ड अपडेट करना, फॉर्म फिल करना या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस डालना, ऐसे काम लोगों की मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे जब लोग आपको पहचानने लगे तो आप आपका काम आगे बढ़ा सकते हैं। इससे एक और आसान तरीका है पार्सल या ऑनलाइन डिलीवरी पॉइंट बनाना, और ये छोटे शहरों में बहुत ही कम होता है, तो आप ये ज़रूर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बड़े ब्रांड की या लोकल पार्टनरशिप या डिलीवरी सिस्टम से जुड़ना होता है। शुरुआत में आप सिर्फ एक छोटे कमरे या दुकान से लोगों के पार्सल्स रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ये काम और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया की बात करें ना, तो हम क्लोदिंग रेंटल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेंटल क्लोदिंग है वो बड़े शहरों में मिलती है, और छोटे शहर वाले लोगों को कपड़े अगर रेंट करने हो तो बड़े शहरों में आना पड़ता है। तो आप ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको एक साथ बहुत सारे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में 10-15 अच्छे कपड़े जैसे लहंगे, शेरवानी या सूट, जो भी आपके हिसाब से आप पसंद कर सकते हैं, और उनसे शुरू कीजिए। फिर उन्हें रेंट पर देना शुरू करें, खासकर शादी और त्यौहार के समय जो कि अभी चल रहा है, और धीरे धीरे जब प्रॉफिट आए तो कलेक्शन बढ़ाते जाइए। अब अगर आप हाथों के काम में अच्छे हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या बाइक मैकेनिक का काम सीख सकते हैं, और ये इजीली सीखा जा सकता है। पहले किसी लोकल शॉप या एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ 2-3 महीने का काम सीखिए, और वहाँ से आप बहुत ही अच्छे से काम करना सीख जाएंगे, और फिर छोटे छोटे रिपेयर के काम खुद ही शुरू कर लीजिए, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल कम लगेगा। अब अगर आप खेती से जुड़े हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खेती से जुड़े लोग एक आसान सी शुरुआत कर सकते हैं, एग्री इनपुट सपोर्ट दे सकते हैं या मिनी एडवाइजरी पॉइंट बना सकते हैं। आप शुरुआत में सिर्फ बीज, खाद और बेसिक जानकारी किसानों को देकर मदद कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप एक छोटा सा स्टॉक भी रख सकते हैं। और एक और सिंपल सा आइडिया ये है कि आप मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सेटअप भी नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन और बेसिक डिजिटल नॉलेज। आप शुरुआत में सिर्फ अपने आसपास के लोगों के छोटे काम करके शुरुआत कर सकते हैं। अब ये तो थे कई सारे आपके लिए आइडियाज जिनकी हेल्प से आपका छोटा सा स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ है, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम की शुरुआत में जो दो प्रश्न हमने आपसे पूछे थे, तो चलिए उन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। आज का पहला प्रश्न था कि GDP का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका उत्तर है GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आज का दूसरा प्रश्न था कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और दोस्तों उसका उत्तर है मार्स, यानी कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। उम्मीद है इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपने ढूंढ लिए होंगे और आपने सही ढूंढे होंगे। और ये भी आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो आज का कार्यक्रम कंडक्ट करने में, आपसे बातचीत करने में, और ख़ासकर आज की फिल्म के बारे में आपसे ढेर सारी बात करने में बहुत ही मज़ा आया। और साथ ही मैंने कोशिश की है कि मैं आपको
काम की जानकारी भी दूँ छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस आइडियाज के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम युवावाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

जब तक है जान, इस फिल्म का गीत आप सुनाई थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान के स्वर में। शत्रुघ्न गुलजार की थी

आप सुन रहे थे फिल्म तेरे नाम का एक गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल सुर में, शत्रुघ्न समीर की संगीत हिमेश रेशमिया का।

फिल्म जन्नत के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शब्द अंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
0: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
0: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
1: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देश दीप दास।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
0: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
1: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
0: जी।
1: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
0: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
1: जी, आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
0: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
1: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
0: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
1: जी।
0: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
1: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
0: बिल्कुल। फिर होता यह है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
1: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
0: जी जी जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
1: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
0: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
1: जी।
0: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
1: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
0: जी
1: समुद्र के पानी के खारा होने का।
0: बताइए।
1: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
0: जी,
1: जो पानी में नमक मिलाते हैं। यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है
0: जी। ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा, वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
1: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है
0: जी।
1: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है
0: जी। सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी

0: में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
0: जी
1: तो श्रोताओं, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
1: The Smart Monkey. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Recorded by Sangeet Kumar. Assistance in production, Jagabandhu Jana. Directed and produced by Ajit Horo. Dear listeners, if you want to give your feedback on our program, you are most welcome to contact us on our IVRS number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email address is audio@cieet.nic.in.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT न्यू दिल्ली इंडिया। अभी आपने सुना कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की

यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, इस गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बच्चों में हार्मोन्स से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग और उनका निदान। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकिता महेश्वरी से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप News on AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 7 मई 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का SCD कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 7 मई 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। और आप सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर से इस कार्यक्रम को FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप News on AIR पर भी। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं चंदन दास।

आप सुन रहे थे निदा फाजली का कलाम चंदन दास की आवाज़ में। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं सुंदरलाल मालवीय और साथी।

आप सुन रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के स्वर में ये मालवीय लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, आज कलाकार थे सुंदरलाल मालवीय और साथी ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउंग ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा। आप सुनिए प्रगतिशील युवा कृषक जितेंद्र पाटीदार ग्राम गोपुर जिला शाजापुर से आलू व लहसुन की खेती पर बातचीत। बातचीत करेंगे तुलसा दरगैया। रात्रि 8:00 हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर हम लेकर आएंगे दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 पर सुनिए चित्रगीत।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 सुनिए नाटक एक नाव के हम सफर। 10:30 लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज का गायन, राग है मारवा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर एक नजर। कल प्रातः 6:05 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर हम लेकर आएंगे खेती की बातें, आप सुनेंगे गर्मी में आगामी फसल का चुनाव व तैयारी। 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

सुबह 7:20 पर साहित्य की कार्यक्रम होगा। 7:35 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:00 लोक संगीत में कलाकार हैं मदनवाला सिंधु। 9:40 पर हम आपको सुनाएंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन, राग है भोपाल तोड़ी। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी हम लेकर आएंगे और 10:05 पर सुनिए आप श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

श्रोताओं आपको बता दें, कल सुबह 10:32 से 11:02 पर आप सुन सकते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसे आप सुनेंगे विविध भारती के FM 101.6 MHz पर, और साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बच्चों में हार्मोन्स से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग और उनका निदान, और आप प्रश्न पूछ सकते हैं स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकिता महेश्वरी से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम के बीच डिजिटल व्यापार, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में समझौते। चंपा सभ्यता के पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा भारत। पश्चिम बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रानी कमलापति स्टेशन से 1100 श्रद्धालुओं के साथ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। और मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में उद्यमियों से किया संवाद, निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद, डिजिटल भुगतान और संस्कृति पर्यटन समेत कई समझौतों में

0: समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, श्री मोदी ने कहा कि भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के मंदिरों का जीर्णोद्वार कर रहा है और अब उसकी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण भी करेगा।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का भी निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100% और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 70% तक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि करीब 95% सिलेंडर प्रमाणीकरण कोड के जरिए डिलीवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा 6,31,000 नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 49,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों से 1100 श्रद्धालु शामिल होंगे। ये विशेष रेलगाड़ी भोपाल और उज्जैन से तीर्थयात्रियों को लेकर सोमनाथ रवाना होगी, जहां श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बुरहानपुर के श्री परमानंद गोविंद जी वाला सभागृह में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यापारियों के हित में सरकार राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट होगी, जिससे उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा।
4: किसी भी इंडस्ट्री का MSME, लघु कुटीर उद्योग या हैवी इंडस्ट्री, बीते सालों की जो लंबी आमतौर पर इनकी सब्सिडी हुआ करती थी, अब उसको डे टू डे की तरफ ले आए। हमारी सरकार ने बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने उद्योगपतियों को अपने कमिटमेंट के आधार पर दी है। हमारा प्रयास है कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सभी बढ़ना चाहिए, जिसमें प्रदेश भी आगे बढ़ता, देश भी आगे बढ़ता।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एम्स भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट गतिविधियों के विस्तार पर चर्चा की। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत किडनी ट्रांसप्लांट पैकेज बढ़ाने, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट को शामिल करने का सुझाव रखा गया। श्री शुक्ल ने कहा कि ऑर्गन डोनर्स को गार्ड ऑफ ऑनर और उनके परिजनों को राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मानित कर दान की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ओबीसी युवाओं को सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत 45 दिन का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण देगी। इसका लाभ 4,000 युवाओं को मिलेगा। योजना के लिए 12वीं पास, प्रदेश के मूल निवासी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर युवा पात्र हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई शाम 6 बजे

हैं या अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं। प्रदेश में 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में नागरिकों को संपत्ति कर और जलकर के बकाया सरचार्ज पर 100% की छूट दी जाएगी। 50,000 रुपए तक के संपत्ति कर और 10,000 रुपए तक के जलकर के मामलों में सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा, जबकि इससे अधिक बकाया पर 25 से 75% तक की रियायत मिलेगी। आज सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर करीब 1.51 लाख रुपए और 1 किलो चांदी 9,000 रुपए उछलकर करीब 2,49,000 रुपए पर पहुंच गई। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू भी घोषित कर दिया है। 26 मई को धर्मशाला में क्वालिफायर होगा। 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जबकि 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिहार राज्य में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचकर मां बगलामुखी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रदेश में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन किया और लंबित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। मंडला में कलेक्टर ने जनगणना रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के भ्रमण के लिए रवाना किया। शिवपुरी में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में नामांतरण बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैतूल में कलेक्टर ने आमला स्थित एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। गुना में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में जिले के 15 खिलाड़ियों ने ग्वालियर संभाग टीम में जगह बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। आगरमालवा और मंदसौर में प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीहोर में पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर करीब 10 लाख रुपए के चोरी के वाहन बरामद किए। जबलपुर में नगर निगम ने ग्वारीघाट पर 3R यानी रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल सेंटर तैयार कर नवाचार की मिसाल पेश की। विदिशा के ग्राम कछवा में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का बाल विवाह समय रहते रोक दिया। शिवपुरी जिले के 340 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित 1325 सीटों में से प्रथम चरण में 1183 सीटों पर प्रवेश हो चुका है, जबकि बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बहन होन न सातेज अपना सगला भाई होन के भारती के राम राम। बहन होन बात करा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो यह एक ऐसी सरकारी योजना है जिमें प्राकृतिक आपदा जो अपना भाई होन के मालूम नहीं रहे कि कौन सी आपदा उनका

सामने आई के वो भी जावेगी, जैसे कि सूखो पड़नो, घनी बरसात होने से फसल के नुकसान हुई जानो, फसल में एक कीट पतंगा लागी जानो, ने साथे साथ आंधी से जो अपनी फसल होने वह आड़ी पड़ी जानो। इन सब से कई होवे है कि अपना जो किसान भाई उनके घनो नुकसान हुई जावे है, और अपनो जो नुकसान होवे है उनके कैसे भरपाई करा अपना किसान भाई हो इन विचार में रहे है। तो इका सारू जरूरी होवे कि अपना भाई होन या प्रधानमंत्री सरकार की जो योजना है बीमा योजना या करी के राखे, जिका से जो भी आपदा आवे, जो भी फसल के नुकसान होवे उनकी भरपाई उनकी होई सके। केवे नहीं कि आपदा कई के नहीं आवे, कद दरवाजो खटखटाई देवे पतो ही नहीं रहे, इका सारू अपना भाई होन के चाहिए कि भी अपनी फसल को बीमो करवाइने राखे, जिका से उनको जो भी नुकसान होवे उनकी भरपाई हुई सके। इना बीमा माए जो बीमा की किश्त आवे नहीं भी अलग अलग फसल पे अलग अलग होवे है, जैसे खरीफ की फसल अपनी कदी है तो उपे 2%, रबी की फसल सारू 1.5%, न सातेज नकदी फसल सारू 5% बीमा की किश्त आवे है। इना बीमा को उपदेश ही यो है कि अपना भाई हो उनके फसल माए होने वालों नुकसान से उनके वित्तीय सहायता दीने भाई हो उनकी आय के स्थिर करना है। इना बीमा के सगला किसान भाइयों ली सके है, वी जो बटाईदार होवे या वी जो किराएदार जो अधिसूचित फसल उगावे है वी भी इन योजना को लाभ ली सके है। इना बीमा माए बुवाई से लीने कटाई का बाद तक जो भी जोखिम होवे शामिल होवे, जैसे कि सूखो, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी, तो इमें हर तरह से अपना जो अपने जो बीमो करवाए हो उकी भरपाई हुई जावे है। इको आवेदन करने सारू अपना किसान भाई हों बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विभाग का माध्यम से आवेदन करी सके है। इमें जो दस्तावेज लागे भी आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, जमीन को खसरो, खतौनी नंबर, ने बुवाई को प्रमाण पत्र, इन्हीं बुवाई को प्रमाण पत्र सारू गांव का मुखिया या पटवारी को कार्ड होना चाहिए कि हाँ इन्होंने यह फसल लगाई है। भाई होन के इना बीमा माए इन्हीं बात को खास ध्यान रखना पड़ेगो कि कदी फसल किना कारण से खराब हुई है तो इकी सूचना 72 घंटा का पहला बीमा कंपनी या कृषि विभाग के देनो जरूरी होवे, तो ही बीमा को जो क्लेम हो वह अपना किसान भाई होन के मिल सके है। तो अपना भाई उनके अब देर नहीं करनी चाहिए, जिनने बीमा नहीं करवायो है उनके फसल को बीमो करवाई लेना चाहिए। ने बहन हुन अब सुनी लेवा बहन प्रीति भार्गव ने साथी बहन हुन को गायो यो लोकगीत।

0: बेन अभी अपन ने प्रीति भार्गव ने साथी बेनहुन को गायो यो लोकगीत सुनियो ने बेनहुन सूर्य नारायण घना तपीरिया है ने दोपहरिया माए तो घनीज गरम गरम लू का थपेड़ा लागे है। धरती माता पे पाँव रखनो असो लागे जैसे भट्टी माँ पाँव रखे दियो हो। ये गरम गरम लू का थपेड़ा से बचने सारू जरूरी होवे कि अपना भाई हो ने अपना जो नाना नानी होने वे दोपहरिया माए बाहर जाने से बचे। पण कदी कदी कहीं होवे कि बाहर जानो खेत में जानो घणो जरूरी हुई जावे तो उन्हीं वक्त अगर वे बाहर जा रहा है तो लू से बचने सारू जरूरी होवे कि वे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देवे। दिन भर में नरो पानी पीता रहे असो नहीं कि तीस लागे तो ज पानी पीणो थोड़ी थोड़ी देर में पीता ज रहनो है पानी। हल्का रंग का ने सूती कपड़ा ही पहना। घाम माए निकलने का पहला माथा के गमछा या टोपी से ढाकी लेवा। नारियल पानी छाछ पनो जो होवे वो पीता रहवा। खाना माए कांदा को उपयोग करा ने साथे साथ काकड़ी को उपयोग भी करा ने खीसा माए कांदो भी राखी लेवा जिससे कि लू लगना से अपन बची सका। ने खास करीने इन्हीं बात को भी ध्यान रखा कि बायर से एकदम ऐने ढसल ढसल पानी नहीं पीवा। पहला थोड़ा सुस्ते ही लेवा उका बाद ही पानी पीवा। भाई बहन हूँ कदी घणो माथो दुखी रियो है चक्कर आई रिया है हाथ पाँव घना दुखी रिया है शरीर गरम गरम हुई रियो है जी मत लई रियो है उल्टी जसो हुई ने उल्टी हुई रही है ये सगला लू लागने का लक्षण हुई सके है। कदी लू लागी गई है तो जिना मनक के लू लागी है उखे छाव ने ठंडी जगह पे ली जावा उखे वहाँ पे लिटाई देवा उका कपड़ा ढीला करी देवा या ऊपर का जो कपड़ा उन्होंने पहनी रखा है उखे निकाली देवा। शरीर में ठंडा पानी की पट्टी ना रखा एक कांदो फोड़ी ने उको रस हथेली ने पथेली पे लगावा। पानी पिलाता रहवा कदी इका से फर्क नहीं पड़ी रियो है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के दिखावा तो अपन इना लू से बची सका। हाँ ने बेन भयोन आप सुनी लेवा सोयाबीन में पोषक प्रबंधन किस प्रकार से करियो जावे एक बारा में जानकारी दे रिया है प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजपाल मीणा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। तो सुना यह वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजपाल मीणा प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ और आज हम वार्ता करेंगे सोयाबीन में पोषण प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो किसान भाइयों, कोई भी फसल हो उसका पोषण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके बिना हम फायदेमंद फसल का उत्पादन नहीं ले सकते। सोयाबीन मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है और इसके पोषण प्रबंधन के लिए जो उर्वरकों की मात्रा की अनुशंसा की गई है वो है 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाशियम और 20 किलोग्राम सल्फर। किसान भाइयों, इस मात्रा की आपूर्ति के लिए हमें 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से एनपीके 12-32-16 कॉम्प्लेक्स रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होगी। उसके साथ में 25 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट की आवश्यकता होगी। यदि कोई किसान भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति डीएपी खाद से करना चाहता है तो उसके लिए 140 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता होगी और 67 किलोग्राम म्यूरेटो पोटास और 25 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर प्रति हेक्टर की हिसाब से हम मिट्टी में मिलाएंगे। किसान भाइयों, ये मात्रा थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ये इसका निर्धारण होगा जब हम मिट्टी का परीक्षण अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पे जहाँ पर कृषि अधिकारी बैठते हैं वहाँ जाकर करवाएंगे तो जो मिट्टी परीक्षण के नतीजे आएंगे उन नतीजों के आधार पर कृषि विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आपको अपने खेत में कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या सल्फर डालना है। इसके अलावा अगर किसी और सूक्ष्म तत्व की अगर कमी है तो उसका ही पता चल जाएगा, वो भी हम मिट्टी में मिला सकते हैं और फायदेमंद फसल पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो फसल पोषण प्रबंधन है ये सिर्फ रासायनिक खादों से ही नहीं किया जा सकता, इसके साथ में हमें बहुत सारी और हमारे पास में विकल्प है, उनका ज़रूर उपयोग करना चाहिए और उनका उपयोग करके हमें रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जितना संभव हो कम करना चाहिए। वो कमी करके हम अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे और लंबे समय तक अच्छी मुनाफे वाली फसल उत्पादन लेते रहेंगे। अब ये कैसे कम किया जा सकता है? ये बहुत आसान तरीक़ों से कम किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है कि हम देसी खाद जो हमारे खेतों में हमारे फार्म पे ही उपलब्ध होती है, जैसे कि गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। ये करीब 10 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग में लानी चाहिए। थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा सा विचार है कि 10 टन प्रति हेक्टेयर अगर 2 साल में कम से कम एक बार भी खेत में चली जाती है तो वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उनकी भी आपूर्ति कर देती है। इसके अलावा हमारे पास में कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी फार्म की खाद, खलियां इत्यादि कई चीज़ें उपलब्ध होती है, उनको हम मिलाकर हमारी मृदा के जो स्वास्थ्य है उसको बहुत अच्छा बनाए रख सकते हैं और उर्वरकों की मात्रा में कमी की जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, देसी खाद जिसका एक और रूप है उसको हम हरी खाद बोलते हैं, तो जिस किसान भाई के पास में भी एक पानी की उपलब्धता है वो गर्मियों में ढेंचा, मूंग या सनई की फसल उगानी चाहिए खेत में, और जब वो करीब 45-50 दिन की हो जाए उस समय उसको मिट्टी में मिला देंगे तो वो सड़ गल कर अच्छी तरह से फसल का पोषण प्रदान करती है। इसके साथ में हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य उसको बनाए रखती है, जो मिट्टी की जो पानी की अवशोषण करने की क्षमता है उसको बनाए रखती है, उससे हमें बहुत फायदे होते हैं। इसके साथ ही वो खरपतवारों की संख्या में भी काफ़ी कमी कर देती है, क्योंकि उसके साथ खरपतवारों के बीज अंकुरित हो जाते हैं और जब हम उसको मिट्टी में मिलाते हैं हरी खाद को, उसके साथ खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो भी मिट्टी मिल जाते हैं। इसके बाद में जो बिंदु आता किसान भाइयों वो ये है कि क्योंकि हम सब जानते हैं सोयाबीन दलहनी फसल है और दलहनी फसलें नाइट्रोजन जो है तत्व है जो हमारी वायु में पाया जाता है उसको अपनी जड़ों में फिक्स करती है और उससे अपना पोषण स्वयं करती है, तो हमें बिजाई से पहले सोयाबीन के बीजों को राइजोबियम कल्चर, फास्फोरस घोलक जीवाणु, इनसे अवश्य उपचारित करना चाहिए, तो ये स्वयं अपना नाइट्रोजन फिक्स करेगी और अपना पोषण खुद करेगी। जो ये कल्चर है इनको विश्वसनीय स्रोत से खरीदना चाहिए ताकि इनकी गुणवत्ता को अश्योर किया जा सके। इसके बाद में किसान भाइयों, मोलिब्डेनम एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ कर देता है और फसल खुद अपना नाइट्रोजन फिक्स करती है, तो 2 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मोलिब्डेनम से बीजों को अवश्य उपचार करना चाहिए। इसके बाद में किसान भाइयों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो आपके फायदेमंद फसल उत्पादन में काफ़ी महत्व रखती है, वो है ये जो महीना चला हुआ मई का महीना चला हुआ है, इस महीने में काफ़ी तेज़ गर्मी भी पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें गहरी जुताइयाँ खेतों में कर देनी चाहिए। उससे कई फायदे होते हैं, जैसे कि बीमारियाँ फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में रहते हैं वो मर जाते हैं सूर्य की तेज किरणों से, कीट पतंगों के जो अंडे, लार्वी, सूंडी ये मिट्टी में सुषुप्त अवस्था में रहती है सूर्य की किरणों से वो मर जाती है, खरपतवारों की जो जड़ें और जो बीज हैं वो सूख जाते हैं वो मर जाते हैं, तो आने वाली फसल में जीवों का आक्रमण कम हो जाएगा, तो उससे बीमारियाँ कम आएगी, कीट पतंगे कम लगेंगे, कम खरपतवार होगा, इससे आपकी फसल में बहुत फ़ायदा होगा और एक फ़ायदेमंद फसल उत्पादन में ये आपके सहायक बनेंगे। धन्यवाद।
0: बेणुन अभी अपन ने सोयाबीन में पोषक प्रबंधन कसे करा एक बारा में जानकारी सुनी। जानकारी दे रिया था प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजपाल मीना, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। ने मंडी का भाव आ गया है तो अपना किसान भाई बहन उनके मंडी का भाव बताई देवा। सरसों जी की आवक री 11 किलो, भाव रहो 6405 से 6545। ने मॉडल भाव रहो 6505। मटर जी की आवक री 186 क्विंटल, भाव रहो 1785 से 4050 और मॉडल भाव रहो 3900। गऊँ जी की आवक री 4194, भाव रहो 1500 से 3076 और मॉडल भाव रहो 2240। मिर्ची जी की आवक री 152 क्विंटल, भाव रहो 11810 से 16010 और मॉडल भाव रहो 4290। चना जी की आवक री 187 क्विंटल, भाव रहो 4200 से 10500 ने मॉडल भाव रहो 5440। मक्का जी की आवक री 83 क्विंटल, भाव रहो 1670 से 1899 ने मॉडल भाव रहो 1725। सोयाबीन जी की आवक री 240 क्विंटल, भाव रहो 2790 से 6600 और मॉडल भाव रहो 6540। चना डालर जी की आवक री 5183 क्विंटल, भाव रहो 2500 से 9130 ने मॉडल भाव रहो 7300। मूंग जी की आवक री 42 क्विंटल, भाव रहो 4515 से 7900 ने मॉडल भाव रहो 7590 रुपया। तुअर जी की आवक री 18 क्विंटल, भाव रहो 6475 से 6640 ने मॉडल भाव रहो 6475 रुपया। राजमा जी की आवक री 74 क्विंटल, भाव रहो 4405 से 7500 ने मॉडल भाव रहो 4810 रुपया। और इमली जी की

0: आवक री 119 क्विंटल, भाव रहो 4,200 से 15,900 ने मॉडल भाव रहो 5,200। ये तो हो गया मंडी का भाव। ने अब सुनी लेवा या भेंट वार्ता जी को विषय है, जिका से बात करी रही है तुलसाबेन, और ये है ग्राम गोपीपुर जिला शाजापुर से प्रगतिशील युवा कृषक भाई जितेंद्र पाटीदार। तो सुना या भेंट वार्ता।
1: किसान भाई नोनी राम राम। आज हमारा साथ है प्रगतिशील किसान भाई जितेंद्र पाटीदार, जो कि ग्राम गोपीपुर जिला साजापुर से छे। तो जितेंद्र भाई आपको कार्यक्रम में स्वागत छे। राम राम।
2: ये राम राम। राम राम। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
1: जितेंद्र भाई, जैसे कि हमारा किसान भाई जो खेती करे न अच्छो लाभ भी कमावे, तो आप किस प्रकार से खेती करो न कहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हुए? पर सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके पास जमीन कितनी छे भाई?
2: जमीन मेरे पास लगभग 5 हेक्टेयर के लगभग है।
1: अच्छा, तो अभी आपने खरीफ में काई बोये थो काम?
2: खरीफ में तो सोयाबीन की खेती होती है मेरे यहाँ।
1: अच्छा,
2: और रबी में जो है वो आलू और लहसुन।
1: अच्छा, आलू और लहसुन के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? आपका बीज वगैरह कहाँ से लाओ जाओ?
2: आलू का बीज तो कंपनी से बीज आता है।
1: हाँ हाँ।
2: और इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आजकल चालू हो गई है।
1: अच्छा,
2: इसमें अपने को किसी कंपनी से बीज लेके और उससे तैयार माल भी उसी कंपनी को देना होता है।
1: अच्छा, मतलब जहाँ से बीज खरीदो माल वहीं दे आप?
2: हाँ, वहीं देते हैं अपन।
1: अच्छा अच्छा।
2: उसमें रेट का फिक्स हो जाता है जिस दिन बीज लेते हैं उसी दिन।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसी दिन अगर अपने को रेट ठीक लग रहा है तो उनके साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है, जो भी फसल उत्पादित होती है वो सीधा उन्हीं को दे देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, इसके अलावा बाकी तो आलू की खेती हमारे यहाँ काफी टाइम से हो रही है। मैं खुद ही पिछले करीब 15 साल से कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
2: तो इसमें साल मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए वैरायटियाँ चेंज होती गई। बाकी आलू की खेती हमारे यहाँ काफी टाइम पहले से हो रही है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ जी। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आलू की जो खेती है वो पूरी मेरे यहाँ ड्रिप से ही होती है।
1: अच्छा, और ये खाद वगैरह कौन सा डालो आप आलू की फसल में?
2: आलू के खेत में जो बेसल डोज होता है वो डीएपी करीब 1.5 बोरी 1 बीघे में।
1: हाँ हाँ।
2: और पोटाश 25 किलो 1 बीघे में।
1: अच्छा,
2: ये बेसल डोज हो जाता है। फिर उसके फसल 1 महीने की उम्र में उसमें यूरिया करीब 25 किलो बीघा और सल्फर 3 किलो बीघा।
1: अच्छा।
2: हाँ, इस हिसाब से देते हैं।
1: और ये जैविक खाद वगैरह भी डालो आप, केचुआ की खाद वगैरह या हरी खाद?
2: जैविक खाद तो मेरे यहाँ नहीं है। हरी खाद कभी कभी हम फसल को ब्रेक देके हरी खाद जरूर लगा लेते हैं।
1: हाँ, चारा की फसल।
2: हाँ हाँ
1: हाँ। लहसुन का बारे में भी मतलब आपने को कि आप लहसुन भी लगाओ, तो लहसुन का बारे में भी हमारे किसान भाई ने बताओ।
2: लहसुन की खेती भी हमारे यहाँ होती है। लहसुन में भी जो नई नई वेराइटियाँ हैं, जैसे कि अभी G2 वेराइटी थी, एक सुपर शंकर है, कार्टर गोला है, ये सब वेराइटियाँ अपन लगाते हैं।
1: अच्छा,
2: तो ये भी ड्रिप से ही लगाते हैं अपन।
1: और एक बीज वगैरह कहाँ से ले जाओ?
2: इसका बीज तो ये मंदसौर से लेके आया था।
1: अच्छा।
2: हाँ, मंदसौर मंडी से।
1: अच्छा अच्छा। तो कितो लहसुन लगाया खेत में?
2: हमारा खेत में इस बार हमारे पास करीब 5 बीघा की लहसुन।
1: अच्छा अच्छा। तो कितो उत्पादन हुआ आपका
2: इस बार? अपना उत्पादन रहा करीब 17 क्विंटल 1 बीघे में।
1: अच्छा, मतलब अच्छा उत्पादन रहे हो।
2: हाँ, बढ़िया।
1: तो फिर वो लहसुन का कहीं बाजार में बेचता होगा कि ये भी व्यापारी ने बेचता होगा डायरेक्ट?
2: नहीं, अभी तो जैसे लहसुन जो निकली है अपनी।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसको हमने काटा भी नहीं है उसके मूल पौधे से।
1: हाँ हाँ।
2: उसको उसी के रूप में उखाड़ के केवल ऐसा का ऐसा उसका पूला बना के और उसको गोडाउन के अंदर ऐसे ही रख देते हैं।
1: अच्छा।
2: फिर जब बारिश 1 महीने बारिश के हो जाएंगे,
1: हाँ हाँ,
2: मतलब लगभग जुलाई अगस्त महीने में इसको काट के और फिर उस टाइम इसको मंडी में बेचते हैं।
1: तो जब आपने कहो कि आपने लहसुन का गोदाम में रखे हो, तो फिर वहाँ खराब नहीं होता कहीं लहसुन?
2: हाँ, ये अगर बगैर काटे अपन गोदाम में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगी, जनवरी महीने तक टिक जाएगी।
1: अच्छा, तो बिना काटे रखो जब लहसुन का?
2: बगैर काटे। हाँ, बगैर काटे।
1: और जैसा आपने बताया कि खरीफ में आपने सोयाबीन बोया था, सोयाबीन में कितनी कई उपज प्राप्त हुई आपका?
2: सोयाबीन में भी मेरे पास ये JS की 2303 वेरायटी थी।
1: हाँ हाँ।
2: और JS की 2433 वेरायटी थी। तो ये दोनों का उत्पादन लगभग अपना बीघे में 4 क्विंटल का रकबर रहा।
1: हाँ हाँ।
2: 4-4.5 क्विंटल बीघा।
1: अच्छा, और अभी रबी में कहाँ की फसल लगाई थी आपने?
2: रबी में आलू लहसुन और थोड़ा सा गेहूँ। थोड़ा
1: अच्छा, अच्छा गेहूँ थोड़ा ही लगा पूरा, मतलब ज्यादा नहीं लगता गेहूँ?
2: हाँ, गेहूँ ज्यादा नहीं लगा, गेहूँ थोड़ा बहुत।
1: अच्छा, मतलब वो घर में खाना पूर्ति।

0: अलग होता रहेगा।
1: हाँ, और थोड़ा बहुत मंडी में बेच देता बस, ये
0: अच्छा, तो
1: अलग है।
0: अभी आपके पास पानी की कई व्यवस्था है?
1: पानी की व्यवस्था भी ऐसी है हमारे यहाँ की, जैसे तो मेरे पास करीब 2-3 कुएं हैं, पर
0: हाँ,
1: उनमें पानी का लेवल इतना ज्यादा रहता नहीं है, तो पानी की पूर्ति के लिए मैंने पॉलिथीन का पॉन्ड बनाया हुआ है करीब 2.5 करोड़ लीटर का। तो
0: अच्छा
1: उसमें हम बारिश में, जब बारिश के टाइम पे जब कुओं में पानी फुल होता है, तो उस 2.5 करोड़ लीटर के टैंक को हम कुएं से भर लेते हैं।
0: अच्छा
1: वो भरा रहता है, जब इधर रबी की फसल में सिंचाई करते हैं और कुओं का पानी खत्म हो जाता है, तो
0: हाँ,
1: फिर हम उस टैंक का पानी यूज कर लेते हैं।
0: अच्छा, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होएगा आपका पास?
1: हाँ, ट्यूबवेल नहीं है इधर।
0: अच्छा, तो अभी कोई सी फसल नहीं लगाई अपना इस समय गर्मी में?
1: हाँ, गर्मी में हम फसल कोई सी भी नहीं लगाते,
0: अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है कैसे?
1: पानी की व्यवस्था नहीं ना।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहे
1: हाँ,
0: आपने।
1: नहीं,
0: सब्जी भाजी भी कोई से लगाओ जो आपके अपनी लगा होता?
1: सब्जी भाजी भी कोई चीज नहीं।
0: अच्छा, आप हमारा दूसरा किसान भाई ना का कई कहना चाहोगे, आप आलू और लहसुन की फसल लगाओ, तो आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? अब इतना साल से आलू और लहसुन की फसल लग ही रहा है, तो अच्छा उत्पादन भी ले रहा, तो एक ही जानकारी आपका कहाँ से मिली?
1: एक तो जो हमारे यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है शाजापुर में,
0: अच्छा
1: वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा भी समय समय पे हमें प्रशिक्षण और भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, तो
0: हाँ,
1: तकनीकी ज्ञान हमें वहां से काफी मिलता रहता है। उसके अलावा मैं भी पर्सनली जहाँ जिस फसल की खेती जिन प्रदेशों में बहुतायत में होती है, जैसे आलू की खेती गुजरात में बहुत
0: हाँ,
1: अच्छे स्तर पे होती है,
0: अच्छा
1: तो मैं गुजरात हर साल 3-4-5 दिन का टूर जाता हूँ, वहाँ किसानों से मिलता हूँ, उनके जो प्रयोग वो लोग कर रहे हैं, जो नई नई वेराइटी है वो यूज कर रहे हैं,
0: हाँ
1: उसका वहां से फीडबैक लेके फिर उनको अपने यहाँ अपन उसको प्रयोग में लेते हैं। तो
0: अच्छा
1: ये मेन तो ये कि जब घूमने जाते हैं, दूसरे किसानों से मिलने जाते हैं,
0: हाँ,
1: तो उसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है।
0: नहीं बिल्कुल नहीं, कि वो किस तरह से खेती कर रहा है, उनका अनुभव भी
1: हाँ,
0: अपन लेवा, फिर ओका अनुसार अपन भी अपना खेती में प्रयोग करा।
1: प्रयोग कर, बिल्कुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आलू की मशीन की भी मैं बात करूं, तो आलू की खुदाई में जो अपने मध्य प्रदेश में जो है, इससे गुजरात और यूपी में बहुत एडवांस मशीनें चलती हैं, डिगर करके चलता है, तो
0: अच्छा
1: वो भी मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं ही लेके आया था,
0: हाँ
1: मैं दिल्ली से लेके आया था उसको। पर
0: हाँ हाँ
1: जब दूसरे किसानों ने देखा और उसको हार्वेस्टिंग के टाइम में जो सुविधा उसकी वजह से मिली, तो
0: हाँ
1: अब मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे डिगर का यूज होने लग गया अब
0: अच्छा, तो
1: आलू की खेती में।
0: ओका द्वारा का ही करो जाओ, मशीन का द्वारा? हाँ
1: पहले क्या होता था कि जब आलू खोदते थे अपन, तो
0: हाँ
1: ट्रैक्टर से करीब 2 या 3 बार ट्रैक्टर को घुमाना पड़ता था आलू के खेत,
0: 3 बार अच्छा
1: 3 बार ट्रैक्टर भी घुमाने पड़ते थे, 3 बार लेबर भी घुमाना पड़ते थे, तब
0: हाँ
1: जाके सारा आलू बाहर आता था। जो
0: अच्छा
1: ये मशीन आई है, ये एक ही बार में सारा आलू बाहर निकाल देती।
0: अच्छा मतलब
1: तो
0: एक ही बार में कर दे, तो बहुत महंगी होएगा मशीन तो?
1: नहीं, कोई बहुत महंगी नहीं, करीब 1.25-1.5 लाख रुपए की मशीन आती है।
0: अच्छा, तो आप खुद खरीद ली होएगा अपने मशीन?
1: हाँ, हमने खुद ही खरीदी, तो
0: अच्छा
1: उससे एक ही बार में आपका ट्रैक्टर से एक ही बार में काम खत्म हो जाता है, लेबर को भी एक खेत में एक बार से दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम
0: अच्छा मतलब काम भी, समय की भी बचत हो ना, काम भी जल्दी हो जाए।
1: भी जल्दी हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और लहसुन का बारे में भी ऐसा कही छे कि ओकासी मशीन से निकालो कि हाथों से निकालो लहसुन?
1: नहीं, मशीन को लेके तो अभी, लहसुन को लेके तो ऐसी स्पेसिफिक मशीन अभी है नहीं कुछ भी, बाकी
0: अच्छा
1: उसका ये है कि अगर अपन उसको ड्रिप से करें
0: हाँ
1: तो लहसुन की हार्वेस्टिंग बड़ी इजी हो जाती है, उसमें लेबर आधी लगती है।
0: हाँ अच्छा
1: हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती और उस ड्रिप की वजह से जमीन बिल्कुल मुलायम रहती है, तो जैसे अपन लहसुन को निकालते हैं तो वो तुरंत हाथ में आ जाती है,
0: अच्छा
1: तो जो लहसुन की मतलब उसके पौधे से कली जो टूटती है, तो
0: हाँ
1: ड्रिप की लहसुन में वो समस्या नहीं आती,
0: हाँ अच्छा,
1: क्वालिटी भी अच्छी बनती है, शाइनिंग भी अच्छी आती है, प्रोडक्शन भी
0: वो
1: अच्छा
0: अच्छी
1: आता है।
0: कढ़ाई ना भी अच्छी बड़ी बड़ी होती होगा ना?
1: हाँ, कली भी अच्छी बड़ी बनती।
0: अच्छा, तो जैसे आपने लहसुन को कहो कि लहसुन का आपने गोदाम में रखी दियो, जब अच्छो भाव मिलेगा तब बेचोगा, तो आलू को भी ऐसा कोई भंडारण करो जाती तुरंत बेची?
1: नहीं, आलू का भंडारण करते हैं ना, क्योंकि पर आलू क्या है कि गोदाम, अपने गोदाम में तो रख नहीं सकते, उसको कोल्ड स्टोर में ही रखना पड़ता है,
0: अच्छा, नहीं तो खराब होने लगी जाए जो?
1: नहीं तो खराब होने लग जाता है वो, इसमें फिर वेट लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो वो कुछ जो कॉन्टेक्ट फार्मिंग का आलू रहता है वो तो हम कंपनी को सीजन में ही हाथों हाथ दे देते हैं,
0: अच्छा
1: और जो कॉन्टेक्ट फार्मिंग का नहीं रहता है उसको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लेते हैं, फिर
0: अच्छा,
1: भाव के हिसाब से उसको बेचते हैं।
0: हाँ जब भी उनको भाव अच्छा होता है कुछ समय बेच ही देता होगा।
1: जी, बिल्कुल।
0: अच्छा, पशु वगैरह भी होएगा आपका पास?
1: हाँ, पशु है मेरे पास, ज्यादा तो नहीं है, केवल घर की दूध की पूर्ति इतनी ही है। हाँ
0: हाँ, तो घर की दूध की पूर्ति हो जाते हुए इतना होएगा?
1: हाँ हाँ हाँ पशुपालन में ज्यादा नहीं है अपना
0: भाई आप अपना दूसरा किसान भाई ने कई कहना चाहोगा जो अपना ये कार्यक्रम सुनी रहा है, कार्यक्रम का माध्यम से आप दूसरा किसान भाई ने कई संदेश देना चाहोगा।
1: मेरे किसान भाइयों के लिए, अगर स्पेसिफिक मैं आलू की फसल के बारे में अगर उनको कोई सुझाव देना चाहूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि आलू की फसल में यंत्रीकरण का हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतनी हमारे लिए खेती आसान भी होगी और फायदेमंद भी होगी। दूसरा भाव, आजकल आज के परिदृश्य में भावों को लेकर जो अनिश्चितता है
0: हाँ
1: उससे बचने के लिए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर जाना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक हमारे लिए एक तरह से इंश्योर्ड एग्रीकल्चर वाला पैटर्न हमारे लिए वो होता है जिससे हम भाव के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। तो हमें इस तरफ जाना चाहिए और हमें किसानों के यहाँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमसे कुछ एडवांस प्रैक्टिस में जिन लोगों की है खेती करने की, हमें उनके यहाँ एक बार जाके जरूर देखना चाहिए, हमें उससे बहुत फायदा मिलेगा।
0: बिल्कुल
1: और लहसुन की खेती के बारे में मैं किसानों को राय दूंगा कि हमें ये परंपरागत जो बीज हैं हमारे पुराने, इनको छोड़ना पड़ेगा और नए बीजों की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि नए बीज ही उत्पादन में हमें सफलता दिला सकते हैं। पुराने बीजों में जैसे जैसे बीज पुराने होते हैं, गवर्नमेंट का भी, शासन का और कृषि विभाग का भी एक समय समय पर कहना पड़ता है कि पुराने बीजों को अब छोड़ के नए बीज की तरफ हम जाएंगे तो वो खेती हमारे लिए थोड़ा सा
0: हाँ
1: लाभ का धंधा बन जाएगी। बस यही कहना चाहूंगा किसान।
0: बिल्कुल। तो जितेन भाई आपने हमारा किसान भाई ने आलू ने लहसुन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, ना हमारा जो भी किसान भाई ये कार्यक्रम सुनी रहा है तो इका माध्यम से अच्छी उनका जानकारी भी लगी, ना वो भी अपना खेत में नया नया प्रयोग करेगा, ना जानकारी देने के लिए भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी अपन ने युवा कृषक जितेन पाटीदार से तुलसा की बातचीत सुनी ने बेनुन आप बनावांगा पुदीना ने केरी को शरबत, इखे बनाने सारू अपना के लगेगा 8 से 10 खट्टी वाली केरी, पुदीनो, हरी मिर्ची, धनियो, शक्कर, कालो नमक, जीरो, काली मिर्ची, सादो नमक, 1-2 नींबू को रस, अदरक। तो सबसे पहला केरी का जो फोतरा ना है उनके छीली ने उखे कुकर में बाफने सारू रखी देवांगा। 4 से 5 सीटी लेने का बाद उखे ठंडो होने देवांगा। आप कई करेंगा धनिया और पुदीना की पत्ती ना तोड़ी ने उनके अच्छे से धोई लेवांगा, ने मिक्सर में पुदीनो, धनियो, एक हरी मिर्ची को, हरी मिर्ची, एक टुकड़ो अदरक को, जीरो, नमक, कालो, सादो नमक, काली मिर्ची सब नाकी ने पीसी लेवांगा। आप कुकर में जो अपन ने बफी हुई केरी है उनके निकाली ने उनकी गुटली अलग करी ने गुदो गुदो माए शक्कर नाकी ने ओखे भी पीसी लेवांगा। ने अब इन सबके आपस में मिलाई ने कांच की भरनी में भरी ने राखी देवांगा। अब जब भी शरबत पीने की इच्छा हुए तो थोड़ो सो पानी ओ में थोड़ो सो गूदो नहाकी ने एक गिलास में अपन ऊपर से ठंडो पानी नहाके देंगा, चाहो तो बर्फ का टुकड़ा भी नहाकी सका हाँ, ने अब इखे अपन पी सका हाँ। इको स्वाद तो मजेदार होवेगो और साथे साथ गर्मी में यो घणो फायदो भी करेगो। ने अब सुनी लेवा बेन सरिता को गायो यो लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रोग्राम भोपाल केंद्र से होगा।
1: इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया, माइक्रो एलईडी के लिए बहुत प्रयास करके साउथ कोरिया का कोलैबोरेशन करके ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए, जिसमें की पहली माइक्रो एलईडी का फैब इंडिया में लगेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा।
1: अशोक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये जो फैसला है, इस फैसले को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
3: एज इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन एंड सेमी, हम इन 2 परियोजनाओं को अप्रूवल को भारत के सेमीकंडक्टर यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जिससे तेजी से विकसित हो रहा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा और देश के वैश्विक टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लक्ष्य में नई गति मिलेगी। ये जो 2 प्रोजेक्ट कल अप्रूव किए, एक असेंबली एंड टेस्ट ऑफ चिप्स का है और दूसरा डिस्प्ले रिलेटेड है। और सेमीकंडक्टर तो आज डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव है, जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में उसका उपयोग होता है। इसके तहत ये बड़ी आधुनिक तकनीक है और इस मंजूरियों के साथ में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी 12 परियोजनाओं को और प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है और यह दर्शाता है कि भारत एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: अशोक जी, अब तक जो हमारी देश की उन्नति अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम देखें, बहुत अधिक समय नहीं हुआ हमें इस शुरुआत को किए हुए, लेकिन कम समय में ही काफी उन्नति की, आपके नजरिए से अब तक की इस प्रगति को किस रूप से आप देखते हैं?
3: मैं कहूंगा कि सेमीकंडक्टर की प्रगति हमारी बड़ी उल्लेखनीय है, और जो कि बाकी कई देशों में इस स्पीड में काम नहीं हुआ। हमारे भी कुछ साल के कार्यकाल में ही 12 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन सेटअप चालू हो गया, 2 प्रोजेक्ट सभी मास प्रोडक्शन या कमर्शियल प्रोडक्शन में हो गए, 2 और प्रोजेक्ट इस साल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, बल्कि क्लियर एग्जीक्यूशन और आउटकम है। तो जो ISM हम बोलते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये सारे जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, इसको काफी सहायता मिल रही है गवर्नमेंट से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये कंपनियां भी काफी उत्सुक हैं जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करें और इसके जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाएगा और वैल्यू एडिशन बढ़ेगा।
1: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे ECLGS भी कह रहे हैं, जो MSME सेक्टर को बिना अतिरिक्त कोलेट्रल के ऋण देने के लिए शुरू की गई। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा है।
2: इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमारे जो MSMEs और एविएशन सेक्टर को जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम प्रूव हुई है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। बेसिकली ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक तरीके से, और ये मॉडल अगर आप देखें तो कोविड के समय से ये मॉडल स्थापित हुआ है। और इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉरल हैजार्ड नहीं रहता। जो ECLGS 5 लाया गया है, ये इन सबसे बड़ा स्कीम है, क्योंकि यही टाइम है जब लोग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। टोटल सपोर्ट इसमें 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा।
1: शिशिर जी, इस तरह का जो कदम है, ये हमारे MSME, GDP और रोजगार में किस तरह से प्रभावी होगा, किस तरह से लाभ पहुंचाएगा?
4: देखिए, ये जो ECLGS है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके पहले संस्करण की बात अगर हम करें, जो कि कोविड के समय में हुआ था, और उस समय इसका मकसद ये था कि जो हमारे MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो GDP की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, उनके लिए जो पूंजी की जरूरतें है उसको हम कैसे फौरी तौर पर पूरी कर सके, और वो भी आसान शर्तों पर। तो इसके 4 संस्करण आए 2020 से लेकर के अब तक। अब जब पश्चिम एशिया का जो संकट आया, इसके बाद हमारे उद्योग जगत को काफी परेशानी हुई, खासतौर पे जो कार्यशील पूंजी, हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2,55,000 करोड़ रुपए की जो ऋण सुविधा है, उसकी गारंटी देने के लिए ये योजना लाई गई है। अब इस योजना में 5,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है केवल और केवल एयरलाइंस सेक्टर के लिए, और उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि चूंकि एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो ज्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि उनके लिए तेल जो है, जो कि उनके परिचालन का लगभग 40-45% योगदान करता है, उसकी लागत काफी बढ़ी है। तो अब ये जो 2,55,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है, ये 8 या 9 मई जिस दिन से नोटिफिकेशन इश्यू होगा उसके बाद से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जितने भी कर्ज सैंक्शन होंगे यानी कि मंजूर होंगे वो इस योजना में शामिल होंगे। याद रखिए कि ये वन टाइम स्कीम है, यानी कि एक बार ही आप इसमें फायदा ले सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे एमएसएमई, नॉन एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर के लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए ब्याज की दर क्या होगी। तो जो एमएसएमई और नॉन एमएसएमई हैं, उनके लिए बैंकों की ओर से मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दर 9% की अधिकतम सीमा तय की गई है। एनबीएफसी से यदि वो कर्ज लेते हैं तो उनके लिए अधिकतम सीमा 13% की है। और मान लीजिए कुछ जो उद्योग हैं जिसके लिए ब्याज दर की एक व्यवस्था लागू की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ईबीबीएलआर। हमारे श्रोताओं के लिए समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आज के दिन में आप और हम जैसे एक व्यक्तिगत तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो हमें रेपो रेट आधारित ब्याज दर पे मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये एमएसएमई के लिए अनिवार्य है, नॉन एमएसएमई के लिए अनिवार्य नहीं है। तो उनके लिए भी ब्याज की दर की अलग सीमा तय की गई है जो कि आपके एमसीएलआर से 0.75% तक हो सकता है। तो ये ब्याज दर की बात
1: है, कम या हो सकता है या ज्यादा हो सकता है?
4: देखिए 9% अगर है तो वो काफी बेहतर स्थिति है अगर आप एमएसएमई की बात करिएगा, क्योंकि कई जगहों पर जो ब्याज की दर है खासतौर पर वर्किंग कैपिटल में जो उससे ज्यादा भी हो जाता है। तो ये एक संतुलित है और इससे एक फायदा ये होगा कि आपके लिए कर्ज जो चुकाने की परेशानी जो है वो होगी नहीं। और ऐसे भी पहला भी जो पहले चार जो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के देखे हैं उसमें एनपीए बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये इस स्कीम की रूपरेखा है। तो एक पहला ये कि ब्याज की दर 9%, 13%। दूसरा ये कि 31 मार्च 2027 तक जो कर्ज मंजूर किए जाएंगे। और तीसरा ये कि एमएसएमई और नॉन एमएसएमई के लिए कर्ज चुकाने के लिए 5 साल का समय होगा, एयरलाइंस को 7 साल का समय।
1: इसमें ये भी देखा जा सकता है कि जैसे सरकार तो नजर रखती है हर एक चीज पर, तो सरकार ने ये भी देखा कि जब हमें एनपी जैसा आपने बताया कि कम होने की बात जहां पर की जा रही है, तो छोटे व्यवसायियों को अधिक आकर्षित करने के लिए एमएसएमई से जोड़ने के लिए कदम उठाया गया।
4: ये जो छोटे व्यापारी हैं इनके लिए दोहरी मार है। पहली तरफ तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या कि जो बड़े उद्योग को ये माल देते हैं वहां से इनको पैसा पाने में समय लगता है, और अभी के समय में जब बड़े उद्योग भी परेशानी में है तो उनके लिए और दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का काम चलता रहे, उनके लिए कार्यशील पूंजी जुटाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन बड़े उद्योगों की भी जो है वो सुध ली गई है, क्योंकि जो नॉन एमएसएमई की हमने बात की वो बड़े उद्योगों के लिए, तो उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। एक और बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये कर्ज उन्हीं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड साफ हो, यानी कि जिनका कर्ज जो है चुकाने का जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर रहा है, मतलब क्लीन स्लेट कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज की सीमा जो है वो 100 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए और एयरलाइन सेक्टर के लिए 1500 करोड़ रुपए की है।
1: और आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गन्ने के बारे में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है इसके बारे में क्या जानकारी दी है।
2: 2012-13 में अगर हम देखें तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है कैबिनेट ने, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। करीब करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% अधिक देने का जो मिशन रहता है उसके कंपैरिजन में ये करीब 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल इंडिया वेटेड कॉस्ट, करीब 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों को इस पूरे प्रोग्राम में मिलेगा।
1: शिशिर जी, कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 में चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करते हुए इसे 365 रुपए प्रति क्विंटल किया है, तो ये लगभग 10.25% की मूल वसूली दर पर आधारित भी है। और वैष्णव जी ने यह भी कहा कि इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5,00,000 श्रमिकों को लाभ मिलेगा। सभी के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं इस फैसले को?
4: देखिए, गन्ना इकलौता कृषि उत्पाद है जिसके लिए एक अलग व्यवस्था अपनाई गई है। बाकी के लिए आपको पता है 21-22 जो हमारी फसलें हैं उनके लिए हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात करते हैं, जबकि यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का है। और इसमें एक और सुविधा ये दी जाती है कि इसके ऊपर अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो बोनस का ऐलान कर सकती हैं, जो कि चीनी मिलें जो होती हैं उनको देना होता है। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, चीनी मिल को इसका भुगतान करना है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी के समय में जब चीनी का उत्पादन ठीक ठाक चल रहा है वहां पर और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इस तरह के फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 365 रुपए का किया गया है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो 2014 में 220 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी था, जो कि अब 365 हो गया, और पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो वो 355 रुपए का जो शुगर सीजन होता है उसमें रखा गया था। इसमें आप समझिए कि किसानों को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बेहतरी की बात होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। और जब हमारे देश में 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, उनके हाथ में अगर अतिरिक्त पैसे आते हैं, संसाधन आते हैं, तो इससे मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो आप अगर शुरुआत करेंगे कहेंगे कि गन्ने का एफआरपी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर इसका अंत देखेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसका किस तरीके से फायदा।
1: शिशिर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो कपास का जो क्षेत्र है उस पे भी लगातार सरकार का मतलब एक रुझान रहता है कि उसको भी हम लगातार देखते रहें, बाधाओं को दूर करना, घटती वृद्धि, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर किया जाए। तो इसीलिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के आप क्या दूरगामी लक्ष्य देखते हैं और इसका क्या परिणाम होगा?
4: देखिए, हमारे देश में इस समय लगभग 32 लाख कपास के पैदा करने वाले हमारे किसान हैं, और इनके लिए कई तरह की जो वैल्यू एडेड या कई तरह के जिसको कहते हैं ना यूनिक जो कपास होते हैं, अपने आप में विशिष्टता वाले कपास होते हैं, उनके पैदावार को कैसे बढ़ावा देना। तो ये जो कपास क्रांति की जो बात की जा रही है, ये केवल और केवल पैदावार बढ़ाने की बात नहीं, इसमें शोध को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसमें बाजार को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। तो इसमें ये है कि अगर आप देखेंगे तो 5F जो सरकार ने जो बात कही है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, यानी कि आप खेत से विदेश, यानी कि आप किस तरीके से दुनिया के बाजार में आप और मजबूती से आ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक पारंपरिक तौर पर कपास का एक जो सिले सिलाए कपड़े हैं उनका एक निर्यातक देश रहा है। अब वो निर्यात में और मूल्यवर्धन हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, जहां पर आपको कई देशों से अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, चाहे आप वियतनाम की बात करें, चाहे आप अपने पड़ोस में बांग्लादेश की बात करें, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस कपास क्रांति का जो है वो महत्व है।
1: तो शिशिर जी, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, जिस तरह से हमने ये देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा, और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वर्तमान में 33, इसे बढ़ा करके 37 करना इसका मुख्य निर्णय है। तो ये जो फैसला लिया जा रहा है, संख्या में वृद्धि की जा रही है न्यायाधीशों की, तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकुशलता को और अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए इस तरह के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं?
5: जो आज प्रेजेंट डेट पर सेंशन डिस्टेंस है वो है 34 की, जिसको बढ़ाकर 38 करने की बात कही जा रही है। 37 जजेस प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब आपको समस्या की गंभीरता जो हमारी जुडिशरी आज फेस कर रही है वो ये है कि पूरे देश में अगर आप देखें, करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं, और नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे देश में आज भी केवल 22 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि हम पाते हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर ये 150 से 200 तक ये संख्या है पर मिलियन पॉपुलेशन। अप्रोक्सिमेटली करीब 92,000 केसेज एज ऑन टूडे सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। आज की डेट में जो अवेलेबल जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, ऑल्दो सेशन स्ट्रेंथ आपकी 34 है, लेकिन 32 जजेस आज की डेट में काम कर रहे हैं, और 32 जजेस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हर बेंच में 2 जज होते हैं, तो इफेक्टिवली आपकी 16th, और अगर हम 34 माने तो 17 बेंचेस काम कर रही हैं, और 17 बेंचेस के सामने अगर आज 2,500 केसेस लगे हैं, डेटा ही आपको ये बताने में सक्षम है कि हमारे जजेस ओवरबर्डन हैं। और इस चीज को देखते हुए अगर 4 की संख्या बढ़ाई जा रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है।
1: आशीष जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में,
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
0: इस समय अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कि सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। बहुत खूबसूरत है पूरी कायनात, फिर भी तेरे ख्याल से खूबसूरत कुछ भी नहीं। खूबसूरती मेरी शायरी में नहीं, तेरी मोहब्बत में है, जो झलकती है मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ में।

फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं है जो फिर संवर जाएगी। थाम लो हाथ उसका जो प्यार दे तुमको, ये जिंदगी ठहरेगी नहीं जो गुजर जाएगी।

दिल के सागर में लहरें उठाया ना करो, ख्वाब बनकर नींद चुराया ना करो। बहुत याद करता है मेरा दिल तुम्हें, ख्वाबों में आकर यूं ना तड़पाया करो।

जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, रात होते ही आंखों में उतर जाता है। मैं उसकी याद से निकलूं तो कहाँ जाऊं, वो मेरी सोच की हर दहलीज पे नजर आता है।

तेरे बिना यह ज़िंदगी अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर खुशी भी दूरी सी लगती है। तू साथ है तो सब कुछ आसान लगता है, तेरे बिना हर रास्ता वीरान लगता है। जीकर देखा भी तेरे बिन, पर तेरे बिना जीना नामुमकिन सा लगता है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
4: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
5: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
4: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाड़ियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और

0: में बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
1: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिन्दुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमरीका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
6: Culture, connectivity aur capacity building ke saath saath security, sustainability aur supply chain resilience हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
5: The Prime Minister said to keep the shared heritage alive, India is restoring the Mai Son and Nhan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization.
6: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
5: President Tho Lam said Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs, P. Kumaran, said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. He said Mr. Modi and Mr. Lam held wide-ranging discussions and reviewed the entire gamut of bilateral relations, exchanging views on regional and global issues of mutual interest.
7: Prime Minister Modi and President Tho Lam acknowledged the growing threats of terrorism, transnational crime, money laundering and online scams. President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of terrorism and counter-terror cooperation, and Prime Minister thanked Vietnam for their strong support on the Pahalgam attack. There was convergence of views on several regional and global issues of interest to both sides, particularly in the Indo-Pacific, and the importance of closer cooperation to promote peace, stability and prosperity in the region and beyond.
5: Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public health care facilities from 2027. Both the leaders also reaffirmed that defense and security cooperation is a key pillar of the India and Vietnam Comprehensive Strategic Partnership. Our correspondent reports India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030.
8: Prime Minister Narendra Modi and President Tho Lam held wide-ranging discussions this afternoon in a warm and cordial atmosphere. They reviewed the entire gamut of bilateral relations and exchanged views on regional and global issues of mutual interest. Acknowledging the evolving global geopolitical and economic landscape, the leaders underscored the growing strategic convergence between India and Vietnam to promote international order based on international law, grounded in peace, stability, cooperation and prosperity in the region and beyond. Both leaders reaffirmed the importance of maintaining peace, stability, security and freedom of navigation and overflight in the South China Sea while pursuing the peaceful resolution of disputes in accordance with international law without resorting to threat or use of force. They decided that both sides will facilitate market access, including for agricultural products. They welcomed the decision to grant market access for Indian grapes and Vietnamese durians. They also agreed to expedite market access for Indian pomegranates and Vietnamese pomelos. The leaders agreed that the ongoing review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement, ETIGA, should be concluded at the earliest. Suparna Saikya, Akashani News, Delhi.
5: Union Ministers Rajnath Singh and Nirmala Sitharaman met their Vietnamese counterparts in New Delhi today. In a social media post, Mr. Singh said India cherishes the long-standing ties with Vietnam. He added that the talks with the Deputy Prime Minister and Defence Minister of Vietnam, General Phan Van Giang, focused on adding more vigour to the defence cooperation between India and Vietnam. Mr. Singh added that he looks forward to further deepening strategic partnership. In a social media post, Ms. Sitharaman appreciated Vietnam's strong macroeconomic management and ongoing institutional reforms reflected in its improved credit outlook and rising competitiveness, enhancing resilience and integration into global value chains. Mr. Thuan also appreciated India's strong macroeconomic leadership and expressed keen interest in learning from India's experience, particularly tax reforms, development of MSMEs and the role of public investment in driving growth. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the News at 9. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party. TVK has approached other parties also as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Meanwhile, Congress, having five MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support today. The party left its long-time ally, the DMK. We have more from our correspondent.
9: It was a day of political heat in the state, even as there was waiting for confirmation from various political circles and the first step towards formation of the new government. The single largest party, Tamilaga Vetri Kalagam, had 108 assembly seats and has added 5 seats with Congress in the fold. TVK has also invited BCK and the left party CPI and CPM. The AIADMK also had a meeting today evening under the leadership of party's General Secretary Edappadi Palaniswami. Speaking to the media after the meeting, KP Munusamy, the Deputy General Secretary of the party, dismissed that there was discontent inside the party on the issue of supporting TVK. He categorically stated that the party will not support TVK. The governor has dismissed the 16th assembly today, which has cleared the way for the formation of a new government. The TVK chief has to present the support letter of parties to form a majority and a new government. He has already sought 2 weeks' time to prove it. The wait and the search for support continues in the formation of a new government. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
5: The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground in Kolkata. Our correspondent reports, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government.
10: Pochishe Boishakh in the Bengali calendar is an auspicious day as it marks the birth anniversary of Kovi Guru Rabindranath Thakur. The new chief minister and the cabinet will take the oath on this day, which falls on Saturday, May 9. The program will be organized at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and chief ministers of other BJP-ruled states are expected to be present on the occasion. The swearing-in ceremony will take place in the morning. For security arrangements and other related matters, high-level administrative meetings are being held. Kollan Laha reporting from Kolkata.
5: In Assam, Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma today tendered his resignation to Governor Lakshman Prasad Acharya at the Lok Bhavan in Guwahati following the completion of the assembly election process. The resignation has paved the way for the formation of a new government in the state after the declaration of results. Speaking to media later, Dr. Sharma said the governor has asked the outgoing Council of Ministers to continue as a caretaker government until a new government is formed. In Bihar, the cabinet led by Chief Minister Samrat Chaudhary will be expanded tomorrow. BJP State President Sanjay Saraogi informed that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, along with several senior leaders and members of the cabinet, will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna. Senior leaders of the NDA will also be present on the occasion. The oath-taking ceremony will begin at 12:10 p.m. The U.S. and Iran are close to a preliminary agreement that could bring an end to the conflict in the Gulf. Sources familiar with the talks have said both sides are working on a one-page, 14-point memorandum of understanding. The proposed deal includes Iran agreeing to pause nuclear enrichment, while the United States would ease sanctions and release billions of dollars in frozen Iranian funds. Both sides are also expected to relax restrictions on movement through the Strait of Hormuz. The shift in tone comes after President Donald Trump announced a pause in Project Freedom, the U.S.-led naval escort mission in the Strait of Hormuz, citing great progress in negotiations.
11: Diplomatic activity surged simultaneously. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi met his Chinese counterpart in Beijing, where China declared the U.S.-Israel war on Iran illegitimate and called for a comprehensive ceasefire. Iran, for its part, publicly stated it is seeking a comprehensive agreement with the United States, its clearest articulation yet of its negotiating position. Tehran is currently evaluating a 14-point U.S. proposal, with Washington expecting Iranian responses on several key points within the next 48 hours. House. The memorandum is being negotiated between U.S. Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner and several Iranian officials through mediators. Iran's Revolutionary Guard Corps indicated that the strait could reopen for transit once threats subside. Markets responded sharply to reports of a possible deal. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
5: The government has informed that domestic LPG distribution across the country is normal and no dry out has been reported at any LPG distributors. During the interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, informed that the government is making all efforts to ensure 100% supply of domestic LPG to the consumers for cooking and up to 70% to consumers of commercial cylinders. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said all Indian seafarers continue to remain safe in the region with no incidents involving Indian-flagged vessels reported in the past 48 hours. The dedicated special control room in the Ministry of External Affairs is also operational to respond to queries from Indian nationals and their families. The Central Bureau of Investigation, or CBI, has busted a network involved in trafficking Indian nationals to Southeast Asia for cybercrime-related activities under the guise of overseas jobs. Searches were conducted at 9 locations across multiple cities, including Mumbai, Delhi, Lucknow and places in Gonda and Saharanpur districts of Uttar Pradesh. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has formed a special task force called Cybersuraksha.ai to tackle rising cybersecurity risks linked to artificial intelligence. The move comes amid concerns that advanced AI tools such as Claude Mythos can rapidly identify and potentially exploit system vulnerabilities at scale. India's young boxers have ensured 27 medals in the Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent, Uzbekistan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of a BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. That is all in the news at 9. Good night.
12: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अनुरोध का गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म ममता में आशा भोसले और मोहम्मद रफी को।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना निदा फाजली की, संगीत उषा खन्ना का। इस गीत के साथ ही चित्रगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों, तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोधगया की पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन्हेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक, आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं, इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोधगया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
2: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
1: जी,
2: तो थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले दो साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे, तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें, उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
1: जी बिल्कुल। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है? थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाएं।
2: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा दिया, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडिया वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए भारत ने INS कृपाल उनको भेंट में दिया और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
1: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
0: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमो रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमी कंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत जरूरत है, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया है जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है। चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है। हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज हैं उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
1: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
1: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटीका है, इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
2: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा। हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए, 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है $120 बिलियन है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है। सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है। और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद $30 बिलियन तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है, इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीगा में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके। लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए, इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से हैं जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, जो वियतनाम है ना, उसका जीडीपी पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कैम्बोडिया हो, तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है। और उसके देखिए क्या एफटीएज है यूरोप के साथ और जापान के साथ, और अब वो सीपीटीपीपी में भी शामिल है। तो वियतनाम एफटीए से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस। और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में, काफी मजबूत है, और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, दवाइयां जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ती है। पहले तो चावल अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ गई है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ गई है। जो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है, और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल। प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब $16 बिलियन को पार कर गया है, और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो $25 बिलियन का है। ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
0: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध है, उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान एफटीए नहीं साइन हुआ था, उसके पहले से ही काफी मजबूत थे। उसकी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशंस जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अलग पायदान पे चल रहा था। भारत आसियान एफटीए का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीगा से या भारत आसियान एफटीए से बहुत फायदा उठा रहे हैं, और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं, उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या ईवी व्हीकल्स हो, वियतनाम ईवी व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे ईवी व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे, तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीगा के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज्यादा हैं बनिस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश आते जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर फिशरीज एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीगा का जो री इवेल्युएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा, और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पर उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
3: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
0: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीजों को समझने में और अपनी खरीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना यूपीआई सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहां कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन भारतीय रुपए के मुकाबले भी काफी वो कमजोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और खासतौर पर बोधगया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहां जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफी आसान हो गया है और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफी सुगम होगा और काफी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
1: और आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानि पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
1: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसॉन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसॉन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
1: जी।
2: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहते। यही अब आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस हैं, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइंस, वो भारत बहुत आ रही है और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट्स भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है। वियतनाम के छोटे शहरों में भारत के टियर टू शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए, तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करें और बिजनेस बढ़ाए। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
1: प्रोफेसर मिश्रा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
0: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था तब भारत ने होचिमिन का साथ दिया, होचिमिन 1959 में भारत आए और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें जिसमें सामरिक तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं और अब हम ने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पर स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है उससे वियतनाम फायदा उठा सके क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में, चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं है, वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या है, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटर ऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस है, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को समझें कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है, और साथ में इंटरऑपरेबिलिटी जरूरी है कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ एमओयू में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए। तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये एमओयूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
2: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर हैं। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम आईटीगा के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे एफटीज हैं उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
1: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोध गया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
4: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं नाटक एक नाव के हम सफर। कलाकार हैं कुमारी प्रभा, श्रद्धा साइमन, उमेश कुलकर्णी और विजय राय।

0: मत रोको मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ।
1: भाभी ये क्या हो गया आपको? जब बस भैया की बात छेड़ने की देर थी।
0: देखो तुम मुझे मत कहा करो भाभी, मैं पापी हूँ। मैंने तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ को खाया है। मैं कलंक हूँ और जात पर कलंक हुआ।
1: ओ भाभी, जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम यही प्रलाप लेकर बैठ जाती हो। जिस हादसे को बीते आज एक वर्ष हो चुका हो, उसे बार बार याद करने से क्या मतलब है?
0: एक वर्ष नहीं, तुम्हारे लिए होगा एक वर्ष। मेरे लिए तो जैसे कल ही की बात है। हाँ, यही जुलाई का महीना था, यही तारीख और यही बारिश, एक दो यही तो दिन थे बारिश के। हाँ, अमर होटल से खाना खाकर लौट रहे थे।

0: मैं कहती हूँ मोटरसाइकिल धीरे चलाओ ना प्लीज, सुनते नहीं हो
1: बिल्कुल। अरे धीरे, आज तो मैं उड़ जाना चाहता हूँ डार्लिंग, छुट्टी का दिन है और शहर से दूर तुम्हारा साथ।
0: रुको ना धीरे प्लीज। देखो यदि ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे ना तो नई गाड़ी का सत्यानाश करते देर नहीं लगेगी आपको।
1: अरे अरे लोग तो इससे भी तेज गाड़ी चलाते हैं।
0: रुको ना,
1: अभी तुमने देखी कहाँ है स्पीड इसकी?
0: देखो ब्रेक फेल ना हो जाए कहीं, मुझे डर लग रहा है। सुनो तो देखो गाड़ी धीरे चलाओ ना, नहीं तो मैं देखिए शोर मचाऊंगी। हाँ बिल्कुल,
1: तो लो मचाओ शोर, मैं तो स्पीड और बढ़ाता हूँ।
0: अरे मेरी ताली उड़ी जा रही है, कितनी मिस्टर हूँ। देखो देखो कहीं दुर्घटना ना हो जाए। ओह सुनो भी।
1: हाँ बोलो।
0: देखो कम करो पहले।
1: हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो बोलो।
0: जरा अपना कान इधर करो।
1: हाँ हाँ बोलो।
0: आपको एक बात बताना तो भूल ही गई मैं।
1: क्या है बोलो।
0: पता है कल मैं डॉक्टर के पास गई थी।
1: अच्छा डॉक्टर के पास क्यों गई थी तुम? डॉक्टर के पास
0: जानते हो तुम? पता है तुम बाप बनने वाले हो।
1: अरे अरे क्या कहा डैडी? अरे सच कह रही हूँ ना तुम? सच कह रही हो तुम?
0: हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आप गाड़ी धीरे करो ना।
1: तुमने तो मेरी खुशी दोगुनी कर दी है। लो गाड़ी धीमे कर दी बस। मेरी प्यारी मंजू तुम माँ बनना सीख गई हो, आओ आज तुम्हें मैं इस मौके पर गाड़ी चलाना सिखा दूँ। सीखोगी ना?
0: नहीं मुझे नहीं सीखना बिकना तुम्हारा ये गाड़ी चलाना।
1: अरे सुनो तो।
0: और देखो तो इस फिसलन भरे रोड पर तो कभी नहीं सीखूंगी मैं।
1: अरे सुनो तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ओहो मंजू तुम इतनी बुजदिल मत बनो। देखो यहाँ मैं उतरता हूँ गाड़ी से, है अब तुम बैठो गाड़ी पर, बैठो मैं पीछे बैठ रहा हूँ।
0: डर लगता है।
1: देखो अब
0: आसपास कितने वाहन आ जा रहे हैं।
1: ओहो
0: तुम ये हो गया तो
1: तुम बैठो। ये देखो ये इसको है ये ब्रेक, ये ब्रेक संभालो और ये है एक्सेलरेटर, इसको संभालो और अब धीरे धीरे आगे बढ़ो।
0: तुम नहीं मानोगे।
1: हाँ हाँ शाबाश, जाने दो, स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ शाबाश शाबाश मंजू, गाड़ी में ब्रेक लगाओ। अरे ब्रेक ब्रेक, स्पीड नहीं पकड़ी, ब्रेक मंजू, ब्रेक लगाओ ब्रेक।

0: कुछ ध्वनित हो रहा है और उस मनहूस रात में मैंने खो दिया मेरा पति और मेरा अजन्मा बच्चा।
1: भाभी भाभी, सबके खोने का जितना दुख आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी है भाभी, अपने भाई के खोने का। पर क्या करें, विधि का विधान है, कौन मिटा पाया है इसे आज तक।
0: बस उनकी यादों के सहारे जीने का एक ही तो बहाना रह गया है मेरे पास।
1: जब भी मैं आपके पास आती हूँ भाभी, आपकी यह दशा देखकर तो मेरी छाती फट पड़ती है। आखिर कब तक इन यादों का बहाना लेकर अकेली जिंदगी बिताती रहोगी भाभी?
0: यही पश्चाताप है मेरा, यही सजा है मेरी कि एक विधवा का जीवन जीते हुए मैं अपने जीवन की आहुति दे दूं।
1: सारा दोष अपने सिर पर मढ़ो भाभी, अब छोड़ो भी इन बातों को, क्या रखा इन पुरानी बातों में, क्यों नहीं एक नई जिंदगी शुरू करती हो भाभी?
0: दूसरी शादी की? देखो यही बात तुमने पिछली बार भी कही थी। यदि यही सब कहने यहां आती हो तो मत आया करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये सब अब मेरी जिंदगी में संभव नहीं है।
1: ओहो भाभी, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और इस तरह की बातें, समय के विपरीत ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती भाभी। मैं तो आती ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता। फिर इस परिवार में मेरे सिवाय अब तुम्हारा है ही कौन? थोड़ा तो बुद्धिमानी से काम लो भाभी। इस पहाड़ से जिंदगी में अमर की आत्मा हर कदम पे तुम्हें सुखी देखना चाहती है। इस तरह तो तुम उसकी आत्मा को और भी दुखी कर रही हो।
0: देखो रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें जल्दी उठकर गाड़ी से जाना भी तो है।
1: वो तो सब ठीक है, पर मैं यूं ही नहीं चली जाऊंगी, आपसे एक वादा लेके जाऊंगी भाभी।
0: सारी बातों के लिए अभी अपना देखो बिल्कुल मन नहीं बना पाई हूँ, तुम समझती क्यों नहीं?
1: दिनेश व्यापार में उलझे हुए थे इसलिए नहीं आ पाए। अब मैं तो तुम्हें समझा बुझा कर बिल्कुल हार गई हूँ, अब उन्हीं को भेजूंगी, शायद कुछ बात बने।
0: देखो बहुत बोल चुकी तुम, अब तो तुम्हारा खाना भी बच गया होगा, चलो सो जाओ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, तैयारी करना है।

0: देखो छुट्टी मिल जाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती रागिनी, पर
1: कोई बात नहीं भाभी, अपना ख्याल रखना, देखो हालचाल लिखते रहना और खुश रहना भाभी।
2: किसके हालचाल की बात हो रही है रागिनी बहन?
1: ओ रे मोहन भैया आओ आओ।
2: तुम मुझे कह रही हो आओ आओ हैं और खुद बिना मिले चली जा रही हो।
1: अब क्या करूं, तुम्हारे जीजाजी ने परमिशन ही नहीं दिया 2 दिन से ज्यादा यहाँ रहने का। अच्छा बताओ तो 2 दिन क्यों नहीं आए तुम?
2: अरे मुझे क्या खबर थी, शनिवार को मंजू दफ्तर में आई नहीं, कल रविवार को घर के काम में ऐसा बिजी हो गया कि बस क्या कहूँ मैं। मैं तो देखने आया था कि मंजू ठीक तो है।
1: हाँ ठीक कह रहे हो, मशीनी जिंदगी जी रही है। वो तो भैया के करीबी दोस्त होने से तुम पर भरोसा है, वरना यहाँ नौकरी करने देते भैया वो?
0: हाँ, देखो बातों ही बातों में गाड़ी का समय बीता जा रहा है।
1: अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा मोहन भैया कभी छुट्टी लेकर बच्चों के साथ आना ना नागदा, और फिर मुन्ना भी तो आप सबको बहुत याद करता है।
2: हाँ हाँ भाई जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तो टाइम है, चलो जब तक तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ मंजू, मैं रागिनी को स्टेशन छोड़ आता हूँ।
0: हाँ,
2: ठीक
0: हाँ, रहेगा। अच्छा रागिनी गुड बाय।
1: अच्छा गुड बाय।
0: हाँ
1: हाँ।

0: मंजू, अभी तक तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं चलना है क्या?
1: क्या करूं, आज मूड ठीक नहीं है।
0: कहीं रागिनी की बातों से तुम्हारा मन तो नहीं उखड़ गया?
1: तो रास्ते में उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना?
0: और बता दिया तो क्या गलत किया? उम्र और अनुभव में तुमसे छोटी है, पर बातें ऐसी समझदारी की करती है कि बस।
1: सुनो, अगर यही मुसीबत उस पर आती ना, तो सारी की सारी समझदारी धरी रह जाती। वो क्या जाने किसी को भुला पाना कितना कठिन होता है।
0: बात तो ऐसे कर रही हो जैसे इस किस्म की मुसीबत अकेले तुम पर ही टूटी हो।
1: हाँ हाँ, मुझे पर टूटी है। मेरा बस चले तो कमबख्त वाहनों का चलना ही बंद कर दूं। हाँ
0: देखो मंजू, अपनी गलती का दोष दूसरे के सिर मरना हम खूब जानते हैं। अब कल से अगर खुदा ने खास्ता अमर बिजली के करंट से मर जाता तो क्या तुम बिजली का प्रचलन मिटा देती? अरे पगली, इस इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में हर आविष्कार से खतरा है, पर उसके बचाव के उपाय भी हैं। जब कभी हमें बस असावधानी होती है ना, तो नुकसान तो उठाना ही पड़ता है, और फिर मौत तो महज बहाना तराशती है।
1: अब ये लेक्चरबाजी तुम बंद करोगे भी या नहीं? ऑफिस जाना है, तैयारी करनी है।
0: तुम, मैंने कब रोका है? मैं तो तुम्हारे अंदर की धूल को साफ कर रहा था। बुरा न मानो तो एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। है मंजू, तुम बुरा तो नहीं मानोगी?
1: क्या कहना चाहते हो?
0: देखो देखो मंजू, अच्छा लगे तो ठीक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
1: मोहन, क्या कह रहे हो तुम? मैं और तुमसे शादी? मेरे पति के दोस्त होकर मेरे प्रति ऐसे विचार? छी, धिक्कार है तुम पर।
0: देखो मंजू, ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करते हुए और जहाँ की निकटता ने हम दोनों को करीब ला दिया है, शायद अमर की आत्मा को भी।
1: नाम मत लो अपनी नीच जबान पर से मेरे पति का। दफा हो जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ऑफिस की नौकरी और ये तुम्हारी मतलबी सहानुभूति।
0: मंजू, देखो मंजू, इतना गर्म होने से कोई मतलब नहीं है। जरा ठंडे दिमाग और सहानुभूति से सोचो कि तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह जरूर होगी।
1: हाँ, जगह थी, है नहीं, समझे? अच्छा हुआ जो तुमने अपनी औकात बता दी। हे भगवान, ये सब सुनने के पहले मेरे कान के पर्दे क्यों न फट गए? मैं मर क्यों नहीं गई? मैं अमर, सुन रहे हो तुम? ये तुम मुझे किस नरक में छोड़ गए अमर?
0: मंजू, क्यों दुखी करती हो अपने आप को इतना? देखो कर।
1: छी, मत लगाओ अपने गंदे हाथ मुझ पर। दो दो बच्चों के बाप होकर भी अपने अंदर ऐसी कुत्सित भावना, छी, लानत है तुम पर।
0: मंजू, शायद शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। नहीं नहीं, मुझे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
1: जो कहना था वो कह चुके। वो रहा दरवाजा, चले जाओ यहां से।
0: ठीक है मंजू, मैं जा रहा हूं। मंजू,
1: सुबह सुबह कल का कुछ बाकी रह गया क्या?
0: नहीं मंजू, ना तो दफ्तर जा पाया और ना ही सो पाया। तुम्हारा मन दुखाया है ना, उसे की माफी मांगने आया हूं। आवेश में न जाने क्या क्या कह गया मैं।
1: जो कहना था वो कह चुके, मुझे इसका मलाल नहीं।
0: लेकिन मुझे है। कल तुमने शायद ठीक ही कहा था, हाँ मंजू, कुसुम के बाद तुम दूसरी औरत हो जिसने मेरे बारे में ऐसा कहा।
1: कुसुम कौन है ये?
0: है नहीं, थी मेरी मेरी पत्नी। अब इस दुनिया से कूच कर गई।
1: कूच कर गई, मगर कैसे?
0: मंजू, तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। अगर जानना चाहो तो थोड़ा बहुत बताऊं?
1: हाँ बताओ ना।
0: देखो मंजू, दो फूल से बच्चों के बाद हमारी जिंदगी की गाड़ी बड़े ही सुकून से चल रही थी, कि अचानक एक भूचाल आ गया और सब कुछ खत्म कर गया। हाँ, मुझे याद है उस दिन बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं ऑफिस। कुसुम गैस पर खाना बना रही थी कि अचानक गैस की टंकी फट गई और उसकी गैस और आग से

0: मैं नहीं जानती थी हसमुख चेहरे के पीछे आप ही गमों का सागर समेटे हुए हैं।
1: बस जैसे तैसे बनावटी खुशी का आवरण ओढ़े अपने बिन माँ के बच्चों के साथ जिंदगी के बचे हुए दिन गुजार रहा हूं मंजू जी, मगर आज आज बात ही कुछ ऐसी निकली, क्या आंसू चला गए।
0: सुनो, मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपका मन दुखाया है, मुझे माफ कर दो ना मोहन बाबू।
1: नहीं मंजू, माफी काहे की, मैं भी भावुक हो गया था।
0: देखिए, तबीयत और मौसम के बदलते स्वभाव को देखकर लगता है हमें आज ऑफिस जाना कैंसिल कर देना चाहिए।
1: हाँ मंजू, इसे अभी इतनी सारी बातें हो गई, अब तो मेरा भी मूड नहीं है। अच्छा तो मैं घर चलता हूँ।
0: सुनो ना, पानी के आसार दिख रहे हैं, ऐतराज ना हो तो रुक जाओ, मैं चाय बना देती हूँ।
1: रुक जाऊँ? देखो तुम्हें आपत्ति ना हो तो मुझे क्या हर्ज है। अच्छा मैं जरा हाथ मुंह धोआता हूँ।
0: हाँ, नैपकिन उधर टंगा है।
1: अच्छा,
0: मैं तब तक चाय तैयार करती हूँ। तैयार हो गए आप? लीजिए चाय।
1: अरे चाय ले आई, ला। मंजू देखो बाहर बारिश हो रही है, मौसम कितना ठंडा हो चला है, देखो बदन से तो जैसे कभी छूटती है।
0: हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है।
1: आओ मंजू, ये मेरे पास बैठ जाओ।
0: सुनो,
1: मेरे पास आ,
0: मुझे डर लग रहा है मोहन बाबू, मुझे डर लग रहा है,
1: मुझे ठंड लग रही है। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: नहीं, मेरे स्वामी, ये मुझसे क्या हो गया? पवित्रता की लक्ष्मण रेखा मिट गई। मैं औरत से उल्टा हो गई। मुझे अब इस संसार में जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, घास लेट डालकर इस पापी शरीर को आग में झोंक दूंगी।
1: मंजू, मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो? अरे मंजू, होश में आओ, होश में आओ। मंजू मैं कहता हूँ, होश में आओ, होश में आओ। क्या कर रही थी तुम?
0: क्यों रोका मुझे तुमने? क्यों रोका?
1: मंजू संभालो अपने आप को, जानती हो क्या करने जा रही थी तुम अभी? देखो मंजू, गलती हम दोनों से हुई है, सजा भी साथ में भुगतेंगे हम लोग।
0: तो क्या तुम जीवन लीला ठीक रहेगा?
1: नहीं नहीं मंजू, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी?
0: समाज इसकी इजाजत नहीं देता।
1: नहीं मंजू नहीं, समाज बदल चुका है। तूफान को अपने सीने में दफन करके जरा खुले मैदान में आओ मंजू, जमाना बाहें फैलाए खड़ा है।

0: 잠시만 좀.
1: समझी, एक बात बताओ।
0: हाँ, पूछो।
1: कहीं तुम मुझे इस जीवन यात्रा में धोखा तो नहीं दोगे ना?
0: मंजू, कैसी बातें करती हो? देखो, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। फिर एक बात जान लो।
1: हाँ।
0: मैं अमर नहीं हूं।
1: तो क्या तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है?
0: हाँ, और गैस भी नहीं। तुम्हें इस बाहरी चमक दमक से हटकर देहाती साधनों से खाना बनाना पड़ेगा। हाँ,
1: सच? तो मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है।
0: अच्छा, इतना अधिक विश्वास है?
1: इसीलिए भी कि हम दोनों ही चोट खाए हुए हैं, एक ही नाव के राही हैं।
0: हाँ मंजू, हमारी किस्मत, हमारी तकदीर शायद ईश्वर ने एक ही समय में तैयार की थी।
1: सुनो मोहन, अब इस फैसले से मैं अपने आप को पहले से हल्का महसूस कर रही हूँ।
0: और रागिनी भी है ना, देखो रागिनी भी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेगी। तो मैं उसको चिट्ठी लिख दूं?
1: हाँ।
0: ए, किधर खो गई? मैं कुछ बोल रहा हूं।
1: कुछ नहीं, अमर की तस्वीर देख रही थी।
0: क्यों, अनुमति ले रही हो? देखो देखो अमर को, तस्वीर में उसका मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है ना?
1: हाँ, शायद अमर भी खुश है, यही चाहते हैं।
0: अरे ये तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी? जरा व्यवस्थित करो अपने आप को, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? जानती हो, अब तुम दो बच्चों की माँ भी हो, थोड़ी मर्यादा भी सीख लो।
1: और ममता भी है ना? मगर मोहन, क्या वे बच्चे मुझे माँ मानेंगे क्या?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं जानता हूँ तुम में सौतेली माँ के कोई गुण नहीं है, है ना? और हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया।
1: कौन सी?
0: यही कि मैं तुम्हें अब और नए बच्चे का सुख नहीं दे सकूंगा, समझी?
1: क्या बात कर रहे हो तुम, दो दो बच्चों के बाद मुझे क्या फौज खड़ी करनी है? प्लीज मोहन, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो ना।
0: अच्छा, इतना उतावलापन है? चलो चलते हैं बच्चों के पास।

अभी आप सुन रहे थे नाटक एक नाव की हम सफर। भाग लेने वाले कलाकार थे कुमारी प्रभा, शारदा साइमन, उमेश कुलकर्णी और विजय रॉय। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी इंदौर से आइए आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित जसराज का गायन राग है मारवा। हारमोनियम पर अप्पाचाल गांवकर, तबले पर केदार पंडित संगीत कर रहे हैं।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन राग था मरवा। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अप्पा जलगांवकर और तबले पर केदार पंडित। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। खुशी पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप,
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही यह सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public healthcare facilities from 2027. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bouva in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations today will further deepen and diversify India-Suriname ties. In his statement to the press after the Joint Commission meeting, Dr. Jaishankar said the talks also touched on global multilateral issues. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. TVK has approached other parties also as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Meanwhile, Congress, having five MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support today. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. The government has debunked an image circulating on social media claiming that Union Home Minister Amit Shah has said that West Bengal will become a dry state from September 30. The fact-check unit of the Press Information Bureau informed that the image is fake and digitally edited. PIB has further stated that no such announcement or statement has been made by the Home Minister. The Ministry of Health and Family Welfare has highlighted a remarkable case of multi-organ donation at Command Hospital, Chandi Mandir in Haryana, where the family of a brainstem dead woman saved four lives through organ donation. The Health Ministry said that the 41-year-old woman, wife of a serving Indian Army colonel, was declared brainstem dead on the 2nd of May following a severe brain hemorrhage. In a courageous decision amid personal grief, her husband and two daughters consented to donate her organs, including the heart, kidneys, liver and pancreas, enabling life-saving transplants for four critically ill patients, including a 14-year-old boy. India's young boxers have ensured 27 medals in the Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent, Uzbekistan. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad tonight. Put into bat first, Sunrisers Hyderabad posted 235 for 4 in stipulated 20 overs with the help of Henrik Klaassen's 69 runs off 43 balls and Ishan Kishan's 55 off 32. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि की 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर इसी मीटर पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।